सुप्रभात। 103.7 मेगाहर्ट्ज पर यह है आकाशवाणी FM शिमला। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की दूसरी तिथि, तदनुसार 23 मई सन 2026। इस समय प्रातः के 5:58 और 40 सेकंड हुए हैं और अब हमारी आज की प्रसारण सभा आरंभ होती है।

0: आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अब आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। श्री मोदी इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये रोजगार मेला देश में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। रोजगार मेला प्रधानमंत्री मोदी की रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भारत और साइप्रस के बीच आतंकरोधी नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और अनुसंधान तथा सांस्कृतिक

0: सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते हुए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडुलाइडिस के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। उन्होंने कहा कि साइप्रस के साथ रक्षा सहयोग भी बढ़ा है।
1: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
0: दोनों नेताओं ने आतंकवाद से निपटने के लिए बहुपक्षीय प्रयासों को मजबूत करने और संयुक्त राष्ट्र के ढांचे के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक समझौता को शीघ्र अंतिम रूप देने और अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने आतंकवाद के प्रति अपनी शून्य सहिष्णुता के दृष्टिकोण को भी दोहराया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 4 दिन की भारत यात्रा पर आज कोलकाता पहुंचेंगे। ये उनकी पहली भारत यात्रा है। श्री रूबियो नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट करेंगे। श्री रूबियो विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर से बातचीत भी करेंगे। उनका अमरीकी दूतावास में होने वाले अमरीकी स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने का कार्यक्रम है। श्री रूबियो मंगलवार को नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी भी शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि क्वाड बैठक में स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत के दृष्टिकोण के अनुरूप जारी पहलू की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में इन्वेस्टमेंट कंपनी इंस्टीट्यूट ऑफ द अमेरिका के एशिया और ग्लोबल एनालिटिक्स के प्रबंध निदेशक मैथ्यू मोहले कैंप से मुलाकात की और भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में निवेश के अवसरों पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि चर्चा का मुख्य केंद्र प्रौद्योगिकी, अवसंरचना, इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल व्यवस्था सहित उच्च विकास वाले क्षेत्रों में अमरीकी संस्थागत निवेश को मजबूत करना, साथ ही विनिर्माण, नवाचार और रोजगार जन को बढ़ावा देना था। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि पूरे देश में पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता है और आपूर्ति स्थिर बनी हुई है। सोशल मीडिया पोस्ट में मंत्रालय ने नागरिकों को घबराहट में खरीदारी न करने और केवल आवश्यकता के अनुसार ईंधन खरीदने की सलाह दी है। मंत्रालय ने कहा कि कुछ खुदरा दुकानों पर अस्थायी दबाव को तेल विपणन कंपनियों द्वारा निरंतर आपूर्ति निगरानी और समन्वित वितरण प्रयासों के माध्यम से दूर किया जा रहा है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में पुणे से एक और महिला को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान मनीषा हवलदार के रूप में हुई है, जिन्हें राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए द्वारा विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया था। अब इस मामले में 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ओडिशा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से कम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 1 का सफल परीक्षण किया गया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि परीक्षण सभी प्रचालनगत और तकनीकी मानकों पर सटीक उतरा। ये सफल परीक्षण भारत की रणनीतिक रक्षा तैयारियों में एक अन्य मील का पत्थर है, जो देश की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। लेबनान में संयुक्त राष्ट्र प्रांतिरक्षा मिशन में कार्यरत भारतीय सेना के अधिकारी मेजर अभिलाषा बराक को 2025 के संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार के लिए चुना गया है। मेजर बराक वर्तमान में लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में महिला सहभागिता दल की कमांडर के रूप में भारतीय बटालियन में कार्यरत हैं। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रन से हरा दिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 255 रन बनाए। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला शाम 7:30 बजे पंजाब किंग्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by Nina Arakel. Prime Minister Narendra Modi will distribute more than 51,000 appointment letters to newly recruited youth in various government departments and organizations at the 19th Rozgar Mela through video conferencing today. Mr. Modi will also address the gathering on the occasion. Our correspondent reports that the Rozgar Mela is a key initiative reflecting the Prime Minister's commitment to giving top priority to employment generation and turning

भक्ति का मूल मंत्र है कर्म की पवित्रता और प्रभु में सच्ची भक्ति। FM शिमला पर आप सुन रहे हैं भक्तिमय कार्यक्रम हिमांजलि।

इसी भक्ति प्रस्तुति के साथ कार्यक्रम हेमांजलि में आज बस इतना ही। 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप ट्यून इन हैं आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ। आइए अब सुनते हैं मानस गान।

अभी आप सुन रहे थे तुलसीदास कृत श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ। गायक कलाकार थे लता मंगेशकर, अनुराधा पौड़वाल और साथी संगीत रचना सतीश भाटिया की। 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप ट्यून इन हैं आकाशवाणी FM शिमला के साथ। आइए अब सुनते हैं देशगान।

0: कमर सिंह और साथियों की आवाज़ों में अभी आप सुन रहे थे देशकान 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। आप ट्यून इन है आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ और अब वक्त हो चला है एफएम न्यूज़ हेडलाइंस का।
1: नमस्कार, एफएम न्यूज़ हेडलाइंस के साथ मैं पूनम भारद्वाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये रोजगार मेला देश के 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। लोक निर्माण व शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बेंगलुरु में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया से भेंट की। इस दौरान उन्होंने कर्नाटक व हिमाचल प्रदेश में क्रियान्वित की जा रही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं व विकासात्मक गतिविधियों पर विस्तृत चर्चा की। विक्रमादित्य सिंह ने कर्नाटक में सड़क निर्माण और इन्हें पक्का करने की नई तकनीक के बारे में जानकारी ली ताकि इसे हिमाचल में भी उपयोग में लाया जा सके। प्रदेश भाजपा ने राज्य सरकार द्वारा आचार संहिता के दौरान आयोजित की गई मंत्रिमंडल की बैठक पर गंभीर सवाल उठाते हुए इसे लोकतांत्रिक मर्यादाओं और चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन बताया है। राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन ने कहा कि पूरे प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के चलते आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू है, ऐसे में मंत्रिमंडल की बैठक बुलाना अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। उन्होंने मंत्रिमंडल की बैठक के निर्णय की समीक्षा कर चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक लिए गए फैसलों के क्रियान्वयन और प्रकाशन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने की चुनाव आयोग से मांग की है। प्रदेश में 26, 28 और 30 मई को 3 चरणों में होने वाले पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए प्रत्याशी लोगों से अपने अपने पक्ष में समर्थन मांग रहे हैं। इन चुनावों को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के लिए प्रशासन व पुलिस विभाग ने सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए हैं। प्रदेश के सीमावर्ती जिला सिरमौर में पुलिस विभाग अलर्ट मोड पर है और तीनों राज्यों के साथ लगते इस जिले में बाहरी राज्यों से शराब तस्करी की संभावनाओं पर पुलिस कड़ी नजर रख रही है। पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि झूठी गारंटियों के सहारे सत्ता में आई कांग्रेस सरकार के पास एक भी उपलब्धि बताने के लिए नहीं है। मंडी से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि व्यवस्था परिवर्तन का खोखला नारा देने वाले इस सरकार की जन विरोधी नीतियों और गलत फैसलों से समाज का हर वर्ग त्रस्त है। इस अंक में इतना ही, नमस्कार।
2: सूचना, मनोरंजन, शिक्षा और विविध रंगों से परिपूर्ण पिटारा आकाशवाणी शिमला।

0: मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्ज और डीटीएच पर आकाशवाणी शिमला एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर एफएम शिमला।
1: और अब आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इनमें विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में नवनियुक्त युवा शामिल हैं। श्री मोदी इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये रोजगार मेला देश में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। रोजगार मेला प्रधानमंत्री मोदी की रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ने आतंकवाद से निपटने के लिए बहुपक्षीय प्रयासों को मजबूत करने और संयुक्त राष्ट्र ढांचे में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन को शीघ्र अंतिम रूप देने तथा अपनाने का आह्वान किया है। दोनों

0: नेताओं ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति को दोहराते हुए दोहरे मापदंड, राज्य प्रायोजित आतंकवाद और किसी भी परिस्थिति में आतंकवादी कृत्यों के औचित्य को अस्वीकार कर दिया। नई दिल्ली में कल दोनों नेताओं के बीच हुई वार्ता के बाद दोनों देशों ने संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ द्वारा नामित सभी आतंकियों और आतंकी संगठनों के खिलाफ मजबूत और समन्वित कार्रवाई का आग्रह किया। दोनों नेताओं ने उग्रवाद, कट्टरता, आतंकवाद का वित्त पोषण और धन शोधन का मुकाबला करने के लिए अधिक सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने आतंकी गतिविधियों के लिए नई और उभरती प्रौद्योगिकियों का दुरुपयोग रोकने तथा आतंकियों की भर्ती से निपटने का भी आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि साइप्रस के साथ भारत के रक्षा सहयोग में वृद्धि हुई है।
1: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 4 दिन की भारत यात्रा पर आज कोलकाता पहुंचेंगे। ये उनकी पहली भारत यात्रा है। श्री रूबियो नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट करेंगे। श्री रूबियो विदेश मंत्री एस जयशंकर से बातचीत भी करेंगे। श्री रूबियो मंगलवार को नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सु मोतेगी भी शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि क्वाड बैठक में स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत के दृष्टिकोण के अनुरूप जारी पहलों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गैबार्ड ने इस्तीफा दे दिया है। सुश्री गैबार्ड ने कहा कि वे 30 जून से अपने पद से हट जाएंगी। राष्ट्रपति ट्रंप ने सुश्री गैबार्ड की प्रशंसा करते हुए कहा कि प्रशासन को उनकी कमी महसूस होगी। सुश्री गैबार्ड के बाद राष्ट्रीय खुफिया प्रधान उपनिदेशक आरुण लुकास कार्यवाहक निदेशक के रूप में कार्यभार संभालेंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता है। मंत्रालय ने नागरिकों को घबराहट में खरीदारी न करने और केवल आवश्यकता के अनुसार ईंधन खरीदने की सलाह दी। मंत्रालय ने कहा कि जिम्मेदारी के साथ उपयोग और जनता का सहयोग ईंधन की सुचारू उपलब्धता सुनिश्चित करने में सहायक होगा। लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा मिशन में कार्यरत भारतीय सेना के अधिकारी मेजर अभिलाषा बराक को वर्ष 2025 के संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार के लिए चुना गया है। मेजर बराक भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट भी हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को रिकॉर्ड 2,86,000 करोड़ रुपए का अधिशेष हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। ये रिजर्व बैंक के अब तक के सबसे अधिक लाभांश में से एक है। यह निर्णय कल मुंबई में राज्यपाल संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की बैठक में लिया गया। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 55 रन से हरा दिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 255 रन बनाए। जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु 20 ओवर में 4 विकेट पर 200 रन ही बना सके। ईशान किशन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आपने ट्यून किया है एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर और अब एफएम शिमला पर ये वक्त है चिंतन का।

सत का अर्थ है परमात्मा। उस परमात्मा को जानने वाले जो महापुरुष हैं उनको सत्पुरुष कहते हैं, और उस परमात्मा की प्राप्ति का जो उपाय है उसे सतमार्ग कहा जाता है। सत शब्द का कहां कहां प्रयोग होता है इसका निरूपण करते हुए स्वयं भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, ओम तत्सदिति निर्देशो ब्राह्मण स्त्री विदः समृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहितः पुरा। ओम तत् सत, ऐसे ये तीन प्रकार का सच्चिदानंद

धन ब्रह्मा का नाम कहा गया है। उसी से सृष्टि के आदि काल में ब्राह्मण और वेद तथा यज्ञादि रचे गए हैं। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, सद्भावे साधु भावे च सदीत येत प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थ युज्यते। अर्थात सत, इस प्रकार ये परमात्मा का नाम सत्य भाव में और श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है, तथा हे पार्थ, उत्तम कर्म में भी सत शब्द का प्रयोग किया जाता है। यज्ञ तप और दान में जो निष्ठा है वो भी सत है। सत इस प्रकार कही जाती है और उस परमात्मा के लिए किया हुआ कर्म निश्चय पूर्वक सत है। इससे ये निष्कर्ष निकला कि सत शब्द एक तो परमात्मा का वाचक है, दूसरे सत्ता का, तीसरे श्रेष्ठ यानी साधु भाव का अर्थात हृदय के क्षमा और दया आदि के उत्तम गुणों का, चौथे उत्तम आचरणों का, पांचवें उत्तम कर्मों में जो स्थिति है उसका, और छठे भगवदर्थ निष्काम कर्म का वाचक है। छहों में से किसी की भी कथा वर्णन जिसमें हो वो सत्कथा है। सबसे बढ़कर एकमात्र भगवान है, इसलिए हम लोगों को भगवान की प्राप्ति जिस प्रकार शीघ्र अतिशीघ्र हो वही चेष्टा करनी चाहिए। भगवान की प्राप्ति का सर्वोत्तम उपाय है भगवान के वचनों का पालन करना। श्री भगवान और उनके वचनों की महिमा अपार है। उनका पार शेष, महेश, गणेश और दिनेश आदि भी नहीं पा सके। यदि उनका पार पा जाए तब तो उन्हें अपार कैसे कहा जा सकता है। श्री रस खान जी ने क्या ही सुंदर कहा है, शेष महेश गणेश दिनेश सुरेशहु जाही निरंतर गावें, जाही अनादि अनंत अखंड अच्छेद अभेद सुबेद बतावें, नारद से सुख व्यास रटे पचिहारे तौ पुनि पार न पावे, ताही अहिर की छोहरियां छछिया भरी छाछ पे नाच न जावे। श्रद्धा का तात्पर्य है भगवान, महात्मा, शास्त्र और परलोक में आदर पूर्वक प्रत्यक्ष की भांति विश्वास। ये विश्वास होता है अंतःकरण की शुद्धि से। अंतःकरण की शुद्धि होती है साधन से और साधन होता है विश्वास से। इस प्रकार ये सभी परस्पर एक दूसरे के सहायक हैं। इसलिए ईश्वर और महात्मा पुरुषों के वचनों पर परम श्रद्धा और विश्वास करके हम लोगों को तत्परता के साथ साधन में लग जाना चाहिए। इसके लिए हमें सर्वप्रथम ये निश्चय करना होगा कि हमारा ये कार्य इस मनुष्य शरीर में ही हो सकता है। जो मनुष्य शरीर प्राणियों के लिए बहुत ही दुर्लभ है वो हमें वर्तमान में अनायास ही प्राप्त है। ऐसे अवसर को हमें अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। मृत्यु का कोई भरोसा नहीं, न मालूम कब आकर प्राप्त हो जाए। अतः हमें पहले से ही सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि वर्तमान में जो हमारी अंतःकरण की पवित्रता, श्रद्धा, निष्ठा, स्थिति है वही उस समय काम आ सकती है। इसलिए हमें अपनी स्थिति ऊंचे से ऊंचे स्तर की शीघ्र अतिशीघ्र बना लेनी चाहिए। भक्ति, ज्ञान, योग आदि जितने भी परमात्मा की प्राप्ति के साधन हैं उनसे अंतःकरण की शुद्धि होती है और अंतःकरण के अनुसार ही श्रद्धा होती है।

अभी आप सुन रहे थे चिंतन, वाचक थे डॉक्टर हुकम शर्मा, 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप ट्यून इन है आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ। और आज इस फ्रीक्वेंसी पर आप कौन से प्रोग्राम्स किस समय सुन पाएंगे, इस बारे में अब आपको जानकारी दे दें।

अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 7:15 पर आप सुनेंगे जानकारी और मनोरंजन का पिटारा प्रोग्राम गुड मॉर्निंग शिमला। FM न्यूज हेडलाइंस के साथ खुद को अपडेट कीजिए सुबह 7:57 पर, 8:30 पर और 9:57 पर।

समाचार प्रभात रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या, प्रातः 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज और रात 9 बजे न्यूज एट 9 हिंदी में समाचार का वक्त रहेगा दोपहर 12 बजे, दिन में 1 बजे, 2:15 और रात 11 बजे। अंग्रेजी में समाचार आप सुन पाएंगे दोपहर 12:05 पर, दिन में 1:05 पर, शाम 7:05 पर और रात्रि 11:05 पर। आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे सुबह 9:20 पर 11 बजे, दिन में 3 बजे, शाम 6 बजे और रात 7:45 पर।

संगीत की मधुर स्वर लहरियों का आनंद लीजिए एफएम शिमला के साथ सुबह 8:45 पर, प्रातः 10:00, दोपहर 12:10 पर, दिन में 1:10 पर सुनिए म्यूजिक मस्ती प्रोग्राम, शाम 4:00 एंजॉय कीजिए फिल्म म्यूजिक और रात 8:30 पर और रात 9:30 पर।

हिमाचल प्रदेश की सुंदर पर्यटन नगरी की सैर पर चलिएगा हमारे साथ। सुबह 9:30 पर कार्यक्रम रहेगा कुदरत के रंग।

पुराने फिल्मी गीतों का आनंद लीजिए सुबह 11:05 पर, दिन में 3:10 पर सुनिए ओल्ड हिट्स, रात 8 बजे भूले बिसरे गीत और रात 10:30 पर सदाबहार नगमे। संगीत के विविध रंगों से सजा सब रंग कार्यक्रम पेश किया जाएगा दिन में 2 बजे। यंग लिसनर्स के लिए प्रोग्राम युववाणी लेकर हाजिर होंगे दिन में 3:30 पर।

बॉलीवुड की एंटरटेनिंग फिल्में, उनसे जुड़े किस्से, कहानियां और गानों का आनंद लीजिए एक फिल्म से प्रोग्राम में रात 9:15 पर। एफएम शिमला पर गजलों की रुमानी महफिल सजेगी रात 10:00।

0: पहाड़ी लोक संगीत आप सुन सकते हैं सुबह 8:32 पर, 11:30 पर, दिन में 2:30 पर और शाम 4:20 से आप सुन पाएंगे विभिन्न हिमाचली बोलियों के कार्यक्रम। तो ये है एफएम शिमला के आज के खास प्रोग्राम्स, जिन्हें एंजॉय करने के लिए आपको ट्यून इन रहना है एफएम शिमला के साथ 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुनते रहिए और मुस्कुराते रहिए।
1: सुबह हो या शाम, आपके घर आंगन में महकती एक आवाज 103.7 मेगाहर्ट्ज़ एफएम शिमला। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 103.7 मेगाहर्ट्ज़ एफएम शिमला।
0: आपने ट्यून किया है एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर और ये वक्त है गुड मॉर्निंग शिमला प्रोग्राम का।

इतिहास के पन्नों से वर्तमान की सुर्खियों तक, हिल्स क्वीन के आकर्षण से मौसम के मिजाज तक, यहाँ बातें भी होती हैं ढेर सारी, गाने और तराने भी हैं बेशुमार। आपकी जानी पहचानी फ्रीक्वेंसी FM शिमला 103।

0: इस दुनिया में ना सुकून के मायने हर किसी के लिए अलग हो सकते हैं। किसी को सुकून मिलता है मंदिर मस्जिद में, तो किसी को माँ की आवाज़ में। कोई भीड़ में भी खुश रहता है तो कोई अकेलेपन में खुद को ढूंढ लेता है। कोई अपनों के साथ बैठकर मुस्कुरा लेता है तो कोई खामोशी में पूरी दुनिया जी लेता है। गौर करें तो सुकून कोई जगह नहीं है दोस्तों, एक एहसास है जो हर दिल अपने तरीके से महसूस करता है। इसीलिए अपनी लाइफ की इस हसल बसल में ना अपनी कोशिशें भले ही जारी रखिए, लेकिन अपने लिए कुछ सुकून भरे पल जीने की भी तैयारी रखिए। इसी पॉजिटिव मैसेज के साथ FM शिमला पर बातों का यह सिलसिला शुरू होता है। ये है प्रोग्राम गुड मॉर्निंग शिमला, मैं हूँ आपके साथ स्वाति डोगरा।
1: हिमाचल के युवाओं, अब सिर्फ सोशल मीडिया पर ओपिनियन देने का नहीं, वोट देने का भी वक्त आ गया है।
2: इस पंचायत इलेक्शन में 50 लाख से ज्यादा वोटर्स अपने मत का अधिकार इस्तेमाल करेंगे और हजारों फर्स्ट टाइम वोटर्स भी बनेंगे इस बदलाव का हिस्सा। 26 मई, 28 मई और 30 मई, याद रखिए ये तारीखें।
1: आपकी एक वोट आपके गाँव की सोच, विकास और लीडरशिप को तय करेगी। तो निकलिए घर से और बनिए जिम्मेदार नागरिक। पंचायत चुनाव 2026, वोट जरूर करें।

0: आकाशवाणी के साथ जुड़िए और अपने उत्पाद और सर्विसेज यानी सेवाओं से जुड़े अपने कारोबार के बारे में सस्ते दामों पर विज्ञापनों के माध्यम से प्रचार प्रसार कर अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें।
1: शुभवाणी, लाभवाणी, जनजन की वाणी, ये है आकाशवाणी।
0: नियम और शर्तें लागू।
2: आप जुड़े हैं एफएम शिमला के साथ, सुन रहे हैं कार्यक्रम गुड मॉर्निंग शिमला। इतिहास से वर्तमान का सफर तय करती तारीखें कई महत्वपूर्ण घटनाओं की साक्षी बनती है। तो आइए अब बात करते हैं कार्यक्रम में 23 मई से जुड़े कुछ ऐतिहासिक तथ्यों के बारे में। सबसे पहले भारतीय इतिहास पर नजर डालें तो पता चलता है कि साल 2008 में भारत ने सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण किया। बात करें ईयर 1984 की तो उस वर्ष में बछेंद्री पाल दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला बनी। 23 मई 1984 को दोपहर 1:07 पर अपनी टीम के सदस्यों के साथ वो माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुंची थी और इतिहास रचा। बछेंद्री पाल ने जब इस चढ़ाई की शुरुआत की थी तो उनके साथ 5 अन्य महिलाएं भी शामिल थी, लेकिन इस एक्सपीडिशन समिट को पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला वो बनी।

0: हिमाचल में फिर से सज गया है लोकतंत्र का महापर्व, पंचायत चुनाव 2026।
1: 26, 28 और 30 मई को तीन चरणों में होने जा रहे हैं पंचायत इलेक्शंस, जहां आपकी एक वोट तय करेगी आपके गांव का कल।
0: सड़क, पानी, सफाई, रोजगार और गांव के विकास से जुड़े फैसलों में आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है।
1: इस बार बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए और चुनिएगा ईमानदार, योग्य और जिम्मेदार प्रतिनिधि। हिमाचल पंचायत इलेक्शंस 2026, मजबूत पंचायत, मजबूत हिमाचल।
2: जुड़े हैं आप FM शिमला के साथ 103.7 मेगाहर्ट्ज पर, सुन रहे हैं कार्यक्रम गुड मॉर्निंग शिमला। हर दिन नए कीर्तिमान स्थापित कर रही भारत की बेटियां आज हर क्षेत्र में इतिहास रच रही हैं और भारत का गौरव बढ़ा रही हैं। मशहूर भारतीय पर्वतारोही बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला थी और इसके साथ ही उत्तराखंड में जन्मी बछेंद्री पाल अपने गांव से स्नातक करने वाली और बाद में संस्कृत और बीएड में डिग्री हासिल करने वाली भी पहली महिला थी। साल 1993 में उन्होंने केवल महिलाओं के इंडो नेपाली एवरेस्ट अभियान का नेतृत्व भी किया, जिसने कई वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए। पद्मश्री से सम्मानित बछेंद्री पाल आज भी युवाओं और महिलाओं को पर्वतारोहण और साहसिक खेलों के लिए प्रशिक्षित कर रही हैं। माउंट एवरेस्ट की बात हुई है तो आइए सुनते हैं इस शिखर की चढ़ाई पर बनी ऊंचाई फिल्म का ये गाना। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुड मॉर्निंग शिमला FM शिमला पर, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
3: कुछ कुम झुम झुम कुछ कुम झुम झुम

0: प्रदेश के सशक्त प्रचार प्रसार माध्यम आकाशवाणी पर आप अपने कारोबार में ला सकते हैं बढ़ोतरी।
1: यदि आप जुड़े हैं किसी स्टार्टअप या मेक इन इंडिया या किसी पंजीकृत सेल्फ हेल्प ग्रुप से, तो आप आकाशवाणी पर सस्ते दामों में विज्ञापनों के माध्यम से अपनी मेहनत को जन जन तक पहुँचाकर अपने सपने साकार कर सकते हैं। शुभवाणी लाभवाणी जन जन की वाणी, ये है आकाशवाणी।
0: नियम और शर्तें लागू।
2: गुड मॉर्निंग शिमला प्रोग्राम आप सुन रहे हैं एफएम शिमला पर, और हिस्ट्री ऑफ द डे की हम बात कर रहे थे कार्यक्रम में। पहले भारतीय इतिहास की हमने बात की और अब विश्व इतिहास की बात करें तो पता चलता है कि 1592 में ऑस्ट्रिया की वियना सिटी में जियोर्डानो ब्रूनो नाम के इटालियन दार्शनिक, गणितज्ञ और खगोलविद को महज इसलिए गिरफ्तार किया गया था कि उन्होंने दुनिया के सामने सबसे पहले ये बात कही थी कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, ना कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। उनकी इस थ्योरी को उस वक्त धर्म विरोधी समझा गया था, हालांकि समय के साथ इस सिद्धांत की पुष्टि भी हो गई थी। इतिहास की यह घटना यही सिखाती है कि जब भी दुनिया में किसी ने कुछ नया और कुछ अलग करने की कोशिश की है तो ज़माने ने उसका पहले विरोध ही किया है, लेकिन अपने सिद्धांतों और इरादों पर भरोसा रखने वाले इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में अपना नाम दर्ज करवा ही लेते हैं। ईयर 1879 की बात करें तो उस वर्ष में रूसी लेखक इवान तुर्गेनेव को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने नागरिक कानून में डॉक्टरेट की उपाधि दी। वो दुनिया के ऐसे पहले लेखक थे जिन्हें ये सम्मान दिया गया था। तो ये थे आज की तारीख से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल फैक्ट्स। और क्या है आज की तारीख से कुछ खास बातें जो हम आपके साथ शेयर करेंगे, ये जानने के लिए यूं ही ट्यून इन रहिए हमारे साथ एफएम शिमला के साथ 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: गांव की पहचान होती है उसकी मजबूत पंचायत से, और पंचायत मजबूत बनती है आपके एक वोट से।
1: क्योंकि ईमानदारी और बिना किसी के प्रभाव में आए दिए गए आपके वोट ही तय होते हैं गांव और बनती है सड़क, पानी, स्वच्छता और रोजगार संबंधी नीतियाँ।
0: इसीलिए 26 मई, 28 मई और 30 मई को होने वाले पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर अपनी भागीदारी निभाएं।
1: अपने परिवार और गांव वालों को भी जागरूक बनाएं और 100% मतदान के संकल्प को हासिल करने का लक्ष्य बनाएं।
0: राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी।
2: गुड मॉर्निंग शिमला प्रोग्राम आप सुन रहे हैं एफएम शिमला पर, और अब कार्यक्रम में बात करते हैं उन फेमस इंडियंस की जिनका आज बर्थडे है। उन मशहूर भारतीय हस्तियों में शामिल है जयपुर की तीसरी महारानी, मशहूर पॉलिटिशियन और फैशनिस्टा महारानी गायत्री देवी। बॉलीवुड सेलेब्स की बात करें जिनका आज बर्थडे है, उनमें शामिल है फेमस कॉमेडियन, एक्टर और सिंगर सुगंधा मिश्रा और टीवी पर्सनालिटी और एक्टर समीर कोचर। और आज अगर हमारे किसी श्रोता साथी का जन्मदिन है या फिर आप शादी की सालगिरह सेलिब्रेट कर रहे हैं तो आप सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अगर आज की ये जो तारीख है 23 मई की तारीख आपकी लाइफ में कुछ हैप्पी मोमेंट्स लेकर आई है या आपने बहुत अच्छा कुछ अभी अचीव किया है जिसे आप सेलिब्रेट कर रहे हैं आज, तो आप सभी को हमारी तरफ से हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस।

आज 23 मई है और आज पूरे विश्व में वर्ल्ड टर्टल डे मनाया जाता है। अमेरिकन कछुआ बचाव संगठन द्वारा जंगली और कैद दोनों जगहों पर कछुओं की दुर्दशा को उजागर करने के लिए साल 2000 से ये दिन मनाने की शुरुआत की गई थी। ये कवचधारी जीव दुनिया के हर कोने में पाए जाते हैं और इकोसिस्टम का संतुलन बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। ये पृथ्वी इनका भी घर है और इसीलिए इनकी सुरक्षा और रखरखाव के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए 23 मई का दिन वर्ल्ड टर्टल डे के रूप में मनाया जाता है। तो ये थी आज की तारीख से जुड़ी कुछ खास बातें।

के लिए, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सुनते रहें एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। गुड मॉर्निंग शिमला प्रोग्राम में आज बस इतना ही, लेकिन प्ले कर रही हूँ आप सभी के लिए प्रोग्राम का ये आखिरी गाना। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

ये गाने आप एंजॉय कर रहे हैं FM शिमला पर 103.7 मेगाहर्ट्ज पर. ये है प्रोग्राम गुड मॉर्निंग शिमला. हिल्स क्वीन शिमला अपने हिस्टोरिक बिल्डिंग्स, हेरिटेज वॉक्स, रिज और मॉल रोड की चहल पहल और सुहाने मौसम के लिए अलग पहचान रखती है. और मौसम के मूड की अगर हम बात करें ना, तो पिछले कुछ दिनों इस खूबसूरत शहर को भी तेज़ गर्मी का सामना करना पड़ा, लेकिन पिछले कल जो यहाँ थोड़ी बहुत ही सही जो बारिश हुई है उसकी वजह से गर्मी में बहुत राहत मिली है गर्मी से. और मौसम विभाग के अनुसार 25 मई तक एक बार फिर से बारिश होने के चांसेस हैं और 26 मई से मौसम फिर से साफ रहेगा. यानी 25 मई के बाद गर्मी फिर से बढ़ सकती है. तो इस बढ़ती कम होती गर्मी के बीच अपना ख्याल रखें, हाइड्रेटेड रहें, और बाहर अगर आप जा रहे हैं ना तेज़ गर्मी में तो अम्ब्रेला ज़रूर यूज़ करें. और मौसम अपडेट्स

0: इसी गाने के साथ गुड मॉर्निंग शिमला प्रोग्राम में आज बस इतना ही। आप सुन रहे हैं FM शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर, और इस फ्रीक्वेंसी पर अगर आप आनंद लेना चाहते हैं पुराने फिल्मी गीतों का, तो आपको हम बता दें सुबह 11:05 पर आप सुन सकते हैं प्रोग्राम पुरानी फिल्मों से, दिन में 3:10 पर सुनिए ओल्ड हिट्स, रात 8 भूले बिसरे गीत, और रात 10:30 पर सदाबहार नगमे। इन प्रोग्राम्स को एंजॉय करने के लिए यूं ही ट्यून इन रहिए एफएम शिमला के साथ 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुनते रहिए और मुस्कुराते रहिए। और अब एफएम शिमला पर वक्त हो चला है एफएम न्यूज हेडलाइंस का।
1: नमस्कार, एफएम न्यूज हेडलाइंस

0: के साथ मैं पूनम भारद्वाज। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता है और आपूर्ति स्थिर बनी हुई है। सोशल मीडिया पोस्ट में मंत्रालय ने नागरिकों को घबराहट में खरीदारी न करने और केवल वास्तविक आवश्यकता के अनुसार ईंधन खरीदने की सलाह दी। मंत्रालय ने कहा कि कुछ खुदरा दुकानों पर अस्थायी दबाव को तेल विपणन कंपनियों द्वारा निरंतर आपूर्ति निगरानी और समन्वित वितरण प्रयासों के माध्यम से दूर किया जा रहा है। मंत्रालय ने आगे कहा कि जिम्मेदारी के साथ उपयोग और जनता का सहयोग मौजूदा उच्च मांग के दौर के सभी के लिए ईंधन की सुचारू उपलब्धता सुनिश्चित करने में सहायक होगा। कल नगर परिषद रोहडू में हुआ मतदान 77.31% रहा। चुनाव में 3,151 मतदाताओं में से 2,436 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ और कोई अप्रिय घटना सामने नहीं आई। इस मतदान की विशेषता ये रही कि सुरक्षाकर्मी सहित मतदान दल के सभी सदस्य महिलाएं थीं। आयोग द्वारा सभी चुनाव परिणाम घोषित किए जा चुके हैं। इंदिरा गांधी राज्य खेल परिसर में आज से 2 दिवसीय हिमाचल प्रदेश स्टेट ओपन रस्सा कशी प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। इसमें 10 जिलों के करीब 250 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिता में जूनियर, सब जूनियर और सीनियर वर्ग के मुकाबले खेले जाएंगे। प्रदेश में इस बार जनगणना का काम डिजिटल तकनीक से किया जाएगा। इसमें लोगों को खुद अपनी गिनती करने और जानकारी भरने का मौका भी मिलेगा। शिमला स्थित जनगणना कार्य निदेशालय के अनुसार प्रदेश में जनगणना 2027 का प्रथम चरण यानी मकान सूचीकरण व मकानों की गणना 16 जून से 15 जुलाई 2026 तक संचालित किया जाएगा। इसके अलावा 1 जून से 15 जून तक स्वगणना का कार्य किया जाएगा। इसमें आम लोग ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपनी और अपने परिवार की जानकारी दर्ज करवा सकते हैं। राजधानी शिमला में अवैध कब्जों और बदलती जनसंख्यिकी को लेकर हिंदू संघर्ष समिति ने राज्यपाल कविंद्र गुप्ता को ज्ञापन सौंपा। समिति ने आरोप लगाया कि शहर में तहबाजारी माफिया सक्रिय है और एक विशेष वर्ग द्वारा सुनियोजित तरीके से स्थायी कब्जे किए जा रहे हैं। समिति के संयोजक विजय शर्मा ने हिमाचल के लोगों को तहबाजारी में प्राथमिकता देने और अवैध कब्जों पर सख्त कार्रवाई की राज्यपाल से मांग की है। इस अंक में इतना ही, नमस्कार।
1: सूचना, मनोरंजन, शिक्षा और विविध रंगों से परिपूर्ण पिटारा आकाशवाणी शिमला।

0: मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्ज और डीटीएच पर आकाशवाणी शिमला एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर एफएम शिमला।
1: और अब आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज।
2: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
3: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
2: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
4: हर घर सूर्य घर।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को 2,86,000 करोड़ रुपए के अधिशेष हस्तांतरण को मंजूरी दी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो भारत की 4 दिन की यात्रा पर कोलकाता पहुंचे, आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया। भारतीय सेना के अधिकारी मेजर अभिलाषा बराक को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। और आईपीएल क्रिकेट में मेजबान सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 55 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इनमें विभिन्न

0: सरकारी विभागों और संगठनों में नव चयनित युवा शामिल हैं। श्री मोदी इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये रोजगार मेला देश में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि रोजगार मेला प्रधानमंत्री मोदी की रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता दर्शाता है।
1: यह रोजगार मेला रोजगार सृजन के प्रति प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह रोजगार मेला युवाओं को सशक्त बनाने और राष्ट्र निर्माण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उन्हें सार्थक अवसर प्रदान कर रहा है। देश भर में अब तक आयोजित 18 रोजगार मेलों के माध्यम से 12 लाख नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं। यह 19वां रोजगार मेला देश भर में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। इसमें देश के सभी हिस्सों से चयनित नव नियुक्त उम्मीदवार केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और भागों में नियुक्त होंगे, जिसमें रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और उच्च शिक्षा विभाग सहित अन्य विभाग शामिल हैं। यह रोजगार मेला देश के विकास में युवाओं की भागीदारी को मजबूत करने की दिशा में एक और बड़ा कदम है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ने आतंकवाद से निपटने के लिए बहुपक्षीय प्रयासों को मजबूत करने और संयुक्त राष्ट्र ढांचे में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन को शीघ्र अंतिम रूप देने का आह्वान किया है। दोनों नेताओं ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति को दोहराते हुए दोहरे मापदंड, राज्य प्रायोजित आतंकवाद और किसी भी परिस्थिति में आतंकवादी कृत्यों के औचित्य को अस्वीकार कर दिया। नई दिल्ली में कल दोनों नेताओं के बीच हुई वार्ता के बाद दोनों देशों ने संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ द्वारा नामित सभी आतंकियों और आतंकी संगठनों के खिलाफ मजबूत और समन्वित कार्रवाई का आग्रह किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि साइप्रस के साथ भारत के रक्षा सहयोग में वृद्धि हुई है।
2: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारत और साइप्रस के बीच सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत और साइप्रस की मित्रता साझा मूल्यों और एकजुटता पर आधारित है।
3: 1962 में हमारे राजनयिक संबंधों की स्थापित के बाद से ही भारत और साइप्रस एक दूसरे के साथ खड़े हुए हैं। हमारी जांचीपुर की मित्रता आपसे सम्मान, साझा मूल्य, विश्वास और एकजुटता पर आधारित है। आने वाले वर्षों में भारत साइप्रस के साथ अपने व्यापक सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके मार्गदर्शन और नेतृत्व के साथ हमारी मित्रता निरंतर सुदृढ़ होती जाएगी।
0: राष्ट्रपति मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के सम्मान में राजकीय भोज का आयोजन किया। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को रिकॉर्ड 2,86,000 करोड़ रुपए का अधिशेष हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। ये रिजर्व बैंक के अब तक के सबसे अधिक लाभांश में से एक है। यह निर्णय कल मुंबई में रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की 623वीं बैठक में लिया गया। बैंक ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान उसकी सकल आय पिछले वर्ष की तुलना में 26.42% बढ़ी। बैंक का व्यय 27.6% बढ़ा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता है और आपूर्ति स्थिर बनी हुई है। सोशल मीडिया पोस्ट में मंत्रालय ने नागरिकों को घबराहट में खरीदारी न करने और केवल आवश्यकता के अनुसार ईंधन खरीदने की सलाह दी। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज 91 पैसे प्रति लीटर तक की वृद्धि हुई। पिछले 10 दिन में तेल के मूल्यों में ये तीसरी वृद्धि है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87 पैसे बढ़कर 99.51 रुपए प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल के मूल्य 91 पैसे बढ़कर 92.49 रुपए प्रति लीटर हो गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @YARNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल

0: के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 4 दिन की भारत यात्रा पर कोलकाता पहुंच गए हैं। श्री रूबियो की पहली भारत यात्रा है। ये यात्रा अमेरिका और भारत के बीच आपसी संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका मुख्य उद्देश्य व्यापार, रक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और हिंद प्रशांत रणनीति में सहयोग का विस्तार करना है। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोड ने हवाई अड्डे पर श्री रूबियो का स्वागत किया। श्री रूबियो आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट करेंगे। श्री रूबियो विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी बातचीत करेंगे। उनका अमरीकी दूतावास में होने वाले अमरीकी स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने का भी कार्यक्रम है। श्री रूबियो मंगलवार को नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी भी शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि क्वाड बैठक में स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के दृष्टिकोण के अनुरूप जारी पहलों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। बैठक में आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। भारतीय सेना के अधिकारी मेजर अभिलाषा बराक को वर्ष 2025 के संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मेजर अभिलाषा बराक लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा मिशन में कार्यरत हैं।
3: मेजर अभिलाषा बराक वर्तमान में लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में महिला सहभागिता दल की कमांडर के रूप में भारतीय बटालियन में कार्यरत हैं। मेजर बराक भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट भी हैं। मेजर बराक ये पुरस्कार प्राप्त करने वाली तीसरी भारतीय शांति रक्षक बन गई हैं। इससे पहले मेजर सुमन गवानी को 2019 में और मेजर राधिका सेन को 2023 में ये पुरस्कार मिला था। वर्ष 2016 में स्थापित ये पुरस्कार प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में तैनात बलों के कमांडरों और मिशन प्रमुखों के नामांकनों में से चुना जाता है। भारत संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में सैनिकों और पुलिस कर्मियों का सबसे बड़ा योगदान देने वाले देशों में शामिल है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
2: भारत तिब्बत सीमा पुलिस की महिला दल ने एवरेस्ट शिखर पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। यह उनका पहला अभियान था। 14 सदस्यीय दल में 11 महिला पर्वतारोही और 3 तकनीकी तथा सहायक कर्मचारी शामिल थे। एक रिपोर्ट।
4: इस दल ने 21 मई को नेपाल की ओर से दक्षिण कोल मार्ग से विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की। अभियान को 19 अप्रैल को बल के मुख्यालय से रवाना किया गया था। स्वच्छ हिमालय ग्लेशियर बचाओ अभियान के अंतर्गत दल ने पर्यावरण जागरूकता गतिविधियां भी चलाईं और एवरेस्ट क्षेत्र से गैर बायोडिग्रेडेबल कचरा एकत्र किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस सफलता पर दल को बधाई दी है। श्री शाह ने कहा कि दुर्गम भूभाग और कठोर परिस्थितियों में यह उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करके टीम ने बल के आदर्श वाक्य राष्ट्र सर्वोपरि को कायम रखा है। इस उपलब्धि के साथ बल ने अब तक 232 पर्वतारोहण अभियान पूरे कर लिए हैं। इनमें एवरेस्ट पर 5 सफल चढ़ाई शामिल हैं। बल ने एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, लोहत्से, धौलागिरी और मनालसू सहित दुनिया की 8,000 मीटर से अधिक ऊंची 6 चोटियों पर भी चढ़ाई की है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
2: मध्य प्रदेश सरकार ने समान नागरिक संहिता UCC की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कल सचिवालय में वेबसाइट ucc.mp.gov.in का शुभारंभ किया। इस पोर्टल के माध्यम से नागरिक, राजनीतिक दल और सामाजिक संगठन प्रस्तावित यूसीसी पर अपने विचार और सुझाव साझा कर सकते हैं। प्रतिक्रिया देने की अंतिम तिथि इस वर्ष 15 जून है। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 55 रन से हरा दिया। हैदराबाद में कल टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर 255 रन बनाए। जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु की टीम निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर केवल 200 रन ही बना सकी। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 5 दिन में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में भी लू की चेतावनी जारी की है। आकाशवाणी समाचार के विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म की अगली कड़ी में हम प्रसिद्ध वायलिन वादिका एन राजम से बातचीत करेंगे।

0: के उन्हें प्रतिष्ठित पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। ये कार्यक्रम आज सुबह 9:10 पर आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इसे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
1: धन्यवाद कनकलता। आरक्षण को लेकर सर्वोच्च न्यायालय का बयान अनेक अखबारों की पहली सुर्खी है। अमर उजाला ने न्यायालय के हवाले से लिखा है, माता पिता में से कोई भी आईएएस अफसर तो बच्चों को आरक्षण क्यों। राजस्थान पत्रिका की ऐसी ही सुर्खी है, जनसत्ता लिखता है, मलाईदार तबके के आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने उठाया सवाल। नीट पेपर लीक केस में एक और शिक्षिका की गिरफ्तारी हिंदुस्तान के पहले पृष्ठ पर है। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, तीसरी मनीषा फिजिक्स की एक्सपर्ट हुई गिरफ्तार। दैनिक भास्कर लिखता है, अब तक 11 गिरफ्तार, इनमें से 7 आरोपी महाराष्ट्र के। दैनिक जागरण ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बयान दिया है, नीट यूजी की दोबारा होने वाली परीक्षा को कराएंगे शत प्रतिशत त्रुटि रहित। नवभारत टाइम्स ने त्विषा शर्मा मामले में लिखा है, पोस्टमार्टम फिर होगा, त्विषा का 10 दिन से फरार पति हिरासत में। दैनिक ट्रिब्यून ने कुश्ती महासंघ द्वारा पहलवान विनेश फोगाट को घरेलू प्रतियोगिताओं में भाग लेने के अयोग्य घोषित करने पर हाईकोर्ट की कड़ी फटकार की खबर देते हुए लिखा है, प्रतिशोध की भावना से काम ना करें WFI। लोकसत्ता की हेडलाइन है, आसमानी आग में झुलसा देश, पारा 47 डिग्री के पार। जनसत्ता संपादकीय में लिखता है, इस बात पर भी गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए कि आखिर मैदानों के साथ अब पहाड़ भी क्यों तपने लगे हैं। मौसम विज्ञानियों का मानना है कि पहाड़ी क्षेत्रों में वनों की अंधाधुंध कटाई, अवैज्ञानिक तरीके से खनन और पर्यटक वाहनों के बढ़ते दबाव से स्थानीय मौसम चक्र में बदलाव हो रहा है। ऐसे में अगर अब भी हम नहीं संभले तो निकट भविष्य में इसका परिणाम भयावह हो सकता है। एनसीईआरटी की 8वीं की किताब में न्यायपालिका पर विवादित चैप्टर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 3 शिक्षाविदों को ब्लैकलिस्ट से हटाया, दैनिक भास्कर में है।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को 2,86,000 करोड़ रुपए के अधिशेष हस्तांतरण को मंजूरी दी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो भारत की 4 दिन की यात्रा पर कोलकाता पहुंचे, आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया। और आईपीएल क्रिकेट में मेजबान सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 55 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सुनील वर्मा। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi to distribute over 51,000 appointment letters to new recruits in various government departments today. RBI approves record surplus transfer of 2.86 lakh crore rupees to central government for financial year 2025-26. US Secretary of State Marco Rubio arrives in Kolkata on his maiden 4-day visit to India to call on Prime Minister Modi in New Delhi this afternoon. IMD issues red alert for severe heat wave over East Madhya Pradesh, East Uttar Pradesh and Vidarbh today. Indian Army Officer Major Abhilasha Barak honoured with prestigious UN Military Gender Advocate of the Year Award 2025. And in IPL cricket, hosts Sunrisers Hyderabad beat Royal Challengers Bengaluru by 55 runs. Prime Minister Narendra Modi will distribute more than 51,000 appointment letters to newly recruited youth in various government departments and organizations at the 19th Rozgar Mela through video conferencing today. Mr. Modi will also address the gathering on the occasion. Our correspondent reports that the Rozgar Mela is a key initiative reflecting the Prime Minister's commitment to giving top priority to employment generation and turning this vision into reality.
3: Rozgar Mela is a step towards fulfillment of the Prime Minister's commitment to accord highest priority to employment generation. The Rozgar Mela is playing a significant role in providing meaningful opportunity

0: 8 degrees there. The biggest worry is that Notapa has not even begun yet. Notapa starts on May 25th and lasts for 9 days. The Met Department says the heat will remain at its peak till May 31st. Abhinav Goyal, Akashvani, Bhopal.
1: In IPL cricket, Sunrisers Hyderabad, SRH, defeated Royal Challengers Bengaluru, RCB, by 55 runs in Hyderabad last night, chasing a massive target of 256 runs set by SRH. RCB could manage to score 200 runs for 4 wickets in 20 overs. Rajat Patidar was the top scorer with 56 runs. For Hyderabad, Ishan Malinga claimed 2 wickets. Earlier opting to bat first, SRH posted 255 for 4 in their stipulated 20 overs. Ishan Kishan was the top scorer with unbeaten 79 runs and so he was named player of the match. Today, Lucknow Super Giants will take on Punjab Kings in Lucknow at 7:30 this evening. And now, for a look at today's newspapers, it's over to Nina Arakal.
2: Thank you, Sunil. The Asian Age leads with the headline, India Cyprus Inc. six-packs boost trade security ties. The Reserve Bank of India Central Board has approved a record surplus transfer of 2.86 lakh crore rupees to the government for financial year 26, reports the Economic Times. In its editorial piece titled "She Putin Meet, a New Axis in the Making," the Pioneer argues that the recent summit between Xi Jinping and Vladimir Putin signals a deepening China-Russia alignment with potentially major consequences for the global order. The piece suggests that Beijing and Moscow are moving beyond symbolism and toward a more coordinated challenge to American influence. It concludes that the emergence of such an axis may become one of the defining geopolitical development of our time. And finally, in a bold push to boost biodiversity and climate resilience, the Andhra Pradesh Forest Department has launched preparations to produce 25 million seed balls in June during the monsoon season, writes the Statesman. And with that, it's back to you, Sunil.
1: Thank you, Nina. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to distribute over 51,000 appointment letters to new recruits in various government departments today. RBI approves record surplus transfer of 2.86 lakh crore rupees to central government for financial year 2025-26. US Secretary of State Marco Rubio arrives in Kolkata on his maiden four-day visit to India to call on Prime Minister Modi in New Delhi this afternoon. IMD issues red alert for severe heat wave over East Madhya Pradesh, East Uttar Pradesh and Vidarbha today. Indian Army Officer Major Abhilasha Barak honored with prestigious UN Military Gender Advocate of the Year Award 2025. And in IPL cricket, host Sunrisers Hyderabad beat Royal Challengers Bengaluru by 55 runs. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
3: ये है आकाशवाणी FM शिमला 103.7 MHz पर और अब आप सुनेंगे FM न्यूज हेडलाइंस.
4: नमस्कार, एफएम न्यूज हेडलाइंस के साथ मैं पूनम भारद्वाज. प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव को लेकर राज्य चुनाव आयोग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं. चुनाव ड्यूटी पर तैनात पोलिंग पार्टियों को 24 और 25 मई को संबंधित मतदान केंद्रों के लिए रवाना किया जाएगा. दूर दराज और दुर्गम क्षेत्रों में स्थित मतदान केंद्रों के लिए पोलिंग पार्टियों को कल ही रवाना किया जाएगा ताकि समय पर वहां पहुंचकर सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा सकें. राज्य में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव 3 चरणों में आयोजित किए जा रहे हैं. पहले चरण का चुनाव 26 मई, दूसरा 28 मई और तीसरा एवं अंतिम चरण का चुनाव 30 मई को संपन्न होगा. पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कल शिमला में हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक को लेकर गंभीर सवाल खड़े करते हुए चुनाव आयोग से तत्काल और कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है. जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि पंचायत चुनाव में अब कुछ दिन ही शेष बचे हैं, ऐसे में वोटरों को लुभाने के लिए सुक्खू सरकार ने सारी सीमाएं लांघते हुए खुलेआम आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया है. उन्होंने चेतावनी दी कि लोकतांत्रिक व्यवस्था और नियमों को ताक पर रखकर आनन-फानन में ली गई इन झूठी घोषणाओं पर भारतीय जनता पार्टी अब चुप नहीं बैठेगी. राजधानी शिमला में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल से प्रभावित हुई सफाई व्यवस्था को और अधिक व्यवस्थित व प्रभावी बनाने के लिए नगर निगम शहर में क्लस्टर सिस्टम लागू करने जा रहा है. इसके तहत निगम पूरे शहर को 4 क्लस्टरों में बांटेगा और सफाई व्यवस्था का जिम्मा निजी एजेंसियों को सौंपेगा. निगम प्रशासन का मानना है कि ऐसा करने से सफाई कार्य में जवाबदेही तय होगी. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने कहा है कि बढ़ती महंगाई के

0: कारण लोगों को जनजीवन करना मुश्किल हो रहा है। उन्होंने कहा कि देश में औद्योगिक विकास पर विपरीत असर पड़ रहा है, जिसके चलते बेरोजगारी भी बढ़ रही है। विनय कुमार ने कहा कि देश में बढ़ते तेल व एलपीजी के मूल्यों ने देश को गंभीर संकट में खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा कि इस बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेस प्रदेश की लोगों के साथ खड़ी है। जैव विविधता दिवस के उपलक्ष्य पर प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर जैव विविधता के संरक्षण को लेकर कई जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में सिरमौर जिले के नाहन स्थित पीएम श्री कन्या पाठशाला में हिमजनक मंच संस्था और ज्ञान विज्ञान समिति ने विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया। इस दौरान विद्यार्थियों ने नारा लेखन, पेंटिंग और सामूहिक चर्चा जैसी प्रतिस्पर्धाओं में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस अंक में इतना ही, नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे एफएम न्यूज हेडलाइंस 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। आप ट्यून इन है एफएम शिमला के साथ और कुछ ही देर में आप सुनेंगे लोक संगीत। यूं ही ट्यून इन रहिए हमारे साथ एफएम शिमला पर।
2: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
1: ये वक्त है लोक संगीत कार्यक्रम का और कार्यक्रम का शुभारंभ हम कर रहे हैं इस लोक भजन के साथ, आवाज जयप्रकाश शर्मा और साथियों की।

शिमला के समीप सुंदर पहाड़ी पर भव्य मंदिर है माँ तारा देवी का। चंडीगढ़ शिमला नेशनल हाईवे पर शोघी के समीप तारा देवी स्टेशन से माँ के मंदिर के लिए एक रास्ता जाता है। माँ तारा देवी भगवती का ही एक रूप है और स्थानीय लोगों की गहरी आस्था जुड़ी है माँ तारा देवी से। और आज इस भव्य मंदिर में विशाल जागरण का आयोजन भी किया जा रहा है। आपको मौका मिले तो भक्ति और श्रद्धा के इस समागम का हिस्सा जरूर बनिएगा। आप जुड़े हैं एफएम शिमला के साथ 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। लोक संगीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं और अब कार्यक्रम में अगला लोकगीत नीलम पाठक की आवाज़ में।

0: शुभ वाणी, लाभ वाणी, जन जन की वाणी, ये है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी पर आप अपने जिले की, अपनी बोली में अपने व्यवसाय कारोबार के बारे में विज्ञापनों के माध्यम से सस्ते दामों पर प्रचार प्रसार करवा सकते हैं।
0: जी हाँ, आकाशवाणी शिमला पर शाम 4:20 से 7:05 तक प्रसारित होने वाले विभिन्न बोलियों के कार्यक्रमों में विज्ञापनों के प्रसारण हेतु आकाशवाणी शिमला से संपर्क करें।
1: नियम और शर्तें लागू।

0: इसी लोकगीत के साथ अभी के लिए लोक संगीत कार्यक्रम में बस इतना ही।
1: सुबह हो या शाम, आपके घर आंगन में महकती एक आवाज 103.7 मेगाहर्ट्ज़ FM शिमला। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 103.7 मेगाहर्ट्ज़ FM शिमला।
0: और FM शिमला पर ये म्यूजिकल एंटरटेनमेंट यूं ही जारी रहेगा। कुछ बढ़िया बढ़िया से गाने एंजॉय कीजिए हमारे साथ, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: यदि आप अपनी लेटेस्ट ज्वेलरी या कपड़ों के डिजाइन या कपड़ों के व्यवसाय को जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आकाशवाणी से सस्ते दामों पर विज्ञापनों के माध्यम से अपना प्रचार प्रसार कर लाभ उठा सकते हैं।
1: शुभवाणी लाभवाणी जन जन की वाणी, ये है आकाशवाणी।
0: नियम और शर्तें लागू।

0: सुबह हो या शाम, आपके घर आंगन में महकती एक आवाज 103.7 मेगाहर्ट्ज़ FM शिमला। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 103.7 मेगाहर्ट्ज़ FM शिमला।
1: आपने ट्यून किया है एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। और अब आपको बता दें आकाशवाणी के प्राइमरी चैनल से आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों के बारे में।

शास्त्रीय संगीत पर आधारित सुरबेला कार्यक्रम में आज सुबह 9:30 पर आप सुनेंगे सविता सहगल द्वारा गाया राग भटियार। गीतों की रिमझिम बुहारों का आनंद लीजिए सुबह 10:00। फिल्म संगीत आप सुन सकते हैं सुबह 11:30 पर, दोपहर 12:10 पर, दिन में 2:45 पर और रात 8:15 पर।

महिला सम्मेलन कार्यक्रम का वक्त रहेगा दोपहर 12:20। किसान बागवान सुनेंगे दिन में 2 बजे सुनहरी किरणें और रात 7:10 पर कृषि जगत कार्यक्रम। कुछ नए पुराने फिल्मी गीतों का आनंद लीजिए। दिन में 1:10 पर कार्यक्रम रहेगा सैनिकों के लिए। जिले की चिट्ठी के साथ हाजिर होंगे दिन में 3:05 पर। सुगम संगीत कार्यक्रम आप सुनेंगे रात 8:30 पर, जिसमें आज के कलाकार होंगे वंश भारद्वाज। रात 9:15 पर सुनिएगा कार्यक्रम हिमदर्शन।

आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे रात 9:30 पर राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका विज्ञान भारती और रात 10 बजे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम।

लोक संगीत आप सुन सकते हैं सुबह 11:05 पर, दिन में 2:30 पर और रात 8 बजे धारा गीत कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे सरिता चौहान, हीरा लाल भारती और प्रोमिला ठाकुर के गाए लोकगीत। शाम 4:20 पर चंब्याली कार्यक्रम के साथ आरंभ होंगे विभिन्न हिमाचली बोलियों के कार्यक्रम। 4:50 पर आप सुनेंगे मंडयाली कार्यक्रम। 5:20 पर पंगवाली कार्यक्रम। 6:06 पर कांगड़ी कार्यक्रम और 6:35 पर महासुवी कार्यक्रम। तो ये है आकाशवाणी के प्राइमरी चैनल से आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रम। इस समय आप सुन रहे हैं FM शिमला 103.7 MHz पर।

0: कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा करें।
1: ये आकाशवाणी शिमला है। 9:20 होने को हैं। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे, जिन्हें आकाशवाणी के धर्मशाला हमीरपुर केंद्रों के साथ ही FM शिमला पर भी सुना जा सकता है। प्रादेशिक समाचार DTH सेवा पर भी सुने जा सकते हैं।
2: हिमाचल में फिर से सज गया है लोकतंत्र का महापर्व, पंचायत चुनाव 2026।
3: 26, 28 और 30 मई को 3 चरणों में होने जा रहे हैं पंचायत इलेक्शंस, जहां आपकी एक वोट तय करेगी आपके गांव का कल।
2: सड़क, पानी, सफाई, रोजगार और गांव के विकास से जुड़े फैसलों में आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है।
3: इस बार बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए और चुनिएगा ईमानदार, योग्य और जिम्मेदार प्रतिनिधि। हिमाचल पंचायत इलेक्शंस 2026, मजबूत पंचायत, मजबूत हिमाचल।

नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक युवाओं को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। प्रदेश में 3 चरणों में होने वाले पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव को लेकर तैयारियां पूरी। पोलिंग पार्टियां 24 व 25 मई को मतदान केंद्रों के लिए होंगी रवाना। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का आरोप, राज्य सरकार ने कैबिनेट बैठक बुलाकर आदर्श चुनाव आचार संहिता का किया उल्लंघन, चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग। पेट्रोल व डीजल की कीमतों में 91 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि, 10 दिन में तीसरी बार बढ़ी तेल की कीमतें। और प्रदेश में लहसुन की अच्छी पैदावार, बेहतर दाम मिलने पर किसान खुश। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये रोजगार मेला देश में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। देश के सभी हिस्सों से चयनित ये युवा रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग सहित भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में कार्यभार संभालेंगे। ये रोजगार मेला प्रधानमंत्री मोदी की रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। प्रदेश में 3 चरणों में हो रहे पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों को लेकर राज्य चुनाव आयोग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। चुनाव के पहले चरण में 26 मई, दूसरे चरण में 28 मई और तीसरे व अंतिम चरण में 30 मई को वोट डाले जाएंगे। इन तीनों चरणों में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के विभिन्न पदों के लिए मतदान कराया जाएगा। चुनाव आयोग ने पूरे प्रदेश में कुल 21,000

0: 678 मतदान केंद्र स्थापित किए हैं। इन मतदान केंद्रों पर मतदाताओं के लिए सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए हैं। चुनाव ड्यूटी पर तैनात पोलिंग पार्टियों को 24 व 25 मई को संबंधित मतदान केंद्रों के लिए रवाना किया जाएगा। चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न करवाने के लिए प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। चुनाव ड्यूटी में करीब 35,000 कर्मचारियों की तैनाती की गई है, जो 3 चरणों में होने वाले मतदान को सफलतापूर्वक संपन्न करवाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के बीच लागू आदर्श चुनाव आचार संहिता के दौरान सरकार द्वारा करवाई गई मंत्रिमंडल की बैठक को आचार संहिता का उल्लंघन बताया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि पंचायत चुनाव को अब कुछ दिन बचे हैं, ऐसे में मतदाताओं को लुभाने के लिए सुखो सरकार ने कैबिनेट बैठक में कई लोक लुभावन फैसले लिए हैं। जयराम ठाकुर ने इस संदर्भ में चुनाव आयोग से तत्काल और कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है।
1: पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के बीच में मुख्यमंत्री जी कैबिनेट की बैठक करते हैं और कैबिनेट में फैसले लिए गए कि महिलाओं को 1500 रुपए दिए जाए। उसके बाद मेडिकल कॉलेजेस में जो प्रोफेसर है उनकी रिटायरमेंट की एज को बढ़ाने का फैसला लिया, और फैसले जो मानदेय बढ़ाने के लिए, चाहे वो आंगनबाड़ी वर्कर है, चाहे वो मल्टीटास्क वर्कर है, चाहे वो अलग विभाग में काम करने वाले कर्मचारियों के संदर्भ में कुछ फैसले लिए गए थे, उनको भी अभी अनाउंस किया। पूरी तरह से चुनाव आचार संहिता का खुलेआम उल्लंघन हुआ है। चुनाव को प्रभावित करने के लिए जो प्रयत्न किया गया है, इस संदर्भ में हिमाचल प्रदेश चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए।
0: केंद्रीय आयुष मंत्रालय का देशव्यापी योग 365 अभियान लोगों की दैनिक दिनचर्या व जीवन शैली का अभिन्न अंग बन गया है। 13 मार्च से शुरू हुआ ये अभियान 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर संपन्न होगा। ऊना जिला में योग 365 अभियान को गति दी जा रही है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे ऊना जिला संवाददाता।
2: भारत सरकार के योग 365 अभियान के अंतर्गत ऊना में जिला प्रशासन और आयुष विभाग द्वारा योग के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है। 13 मार्च से शुरू 100 दिनों तक चलने वाले इस अभियान में गांव स्तर पर सामाजिक संगठनों, नुक्कड़ नाटकों और आयुष विभाग के अधिकारी व कर्मचारियों द्वारा लोगों को नियमित योग अभ्यास से सेहतमंद रहने और जीवन शैली से जुड़े रोगों के अलावा गैर संक्रमित रोगों से बचाव बारे जानकारी दी जा रही है। इसके अलावा लोगों को आयुष मंत्रालय की अनूठी पहल निःशुल्क ऑनलाइन योग प्रशिक्षण सत्रों के साथ जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें मोरारजी देसाई योग संस्थान द्वारा हर रोज प्रसारित की जाने वाली लाइव योग कक्षाओं से लोगों को जोड़ने बारे भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। आकाशवाणी के लिए ऊना से राजेश शर्मा।
0: ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्सेंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज 91 पैसे प्रति लीटर तक की वृद्धि हुई है। पिछले 10 दिन में तेल के मूल्यों में तीसरी बार वृद्धि हुई है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87 पैसे बढ़कर 99.51 रुपये प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल के मूल्य 91 पैसे बढ़कर 92.49 रुपये प्रति लीटर हो गए हैं। 15 मई को 3 रुपये प्रति लीटर और 19 मई को 90 पैसे की वृद्धि के बाद ईंधन की कीमतों में ये तीसरी बार संशोधन है। हाल ही के दिनों में कीमतों में लगभग 5 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि हुई है। ये वृद्धि ईरान संघर्ष और हुमोर्ज में व्यवधान के बाद वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल के बीच हुई है। प्रदेश में मई माह में एलपीजी की डिजिटल बुकिंग बढ़कर 94% हो गई है, जबकि फरवरी माह तक ये बुकिंग 85% थी। इसके अलावा डिजिटल बुकिंग करने से फर्जी बुकिंग और डुप्लीकेशन भी कम हुई है। कालाबाजारी और हेराफेरी को रोकने के लिए तेल विपणन कंपनियां डिजिटल प्रमाणीकरण कोड को और बेहतर बनाने पर काम कर रही हैं, और वर्तमान में हिमाचल में इन कंपनियों ने 94% प्रमाणीकरण का लक्ष्य हासिल कर लिया है। प्रदेश में इस बार लहसुन की अच्छी पैदावार हुई है और फसल के बेहतर दाम मिलने से किसान खुश हैं। सोलन की सब्जी मंडी में बड़ी संख्या में किसान इन दिनों लहसुन बेचने के लिए पहुंच रहे हैं। किसानों का कहना है कि इस बार उन्हें पिछले वर्ष के मुकाबले लहसुन का अच्छा मूल्य मिलने से फायदा हुआ है।
3: मैं जयसिंह ठाकुर बेरगांव से, मेरा लहसुन पिछले साल 100 रुपये था, इस बार 145 रुपये बिका।
4: सुरेंद्र कुमार और मेरा गांव जो है विधाड़ है, पिछले साल के मुताबिक जो इस बार जो है किसानों को अच्छा रेट मिल रहा है, तो बहुत अच्छा जो है फसल इस बार है और थोड़ा सा अच्छा रेट भी मिल रहा है हमको।

0: हम राकेश कुमार, मैं कुनहार से आया हूं और इस बार पिछले साल से लहसुन के रेट बहुत बढ़िया मिला है जिम्मेदारों को और जिम्मेदार बहुत खुश है इस बार।
1: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि एक दिन और बढ़ाकर कल 24 मई तक कर दी है। CBSE ने यह निर्णय वेबसाइट पर अत्यधिक आवेदन और तकनीकी व्यवधान के बाद लिया है, जिससे वेबसाइट बाधित हो रही थी। बोर्ड ने बताया कि विद्यार्थियों को उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी मिलने के बाद पुनर्मूल्यांकन का आवेदन करने के लिए 2 दिन का समय मिलेगा। अब एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर। आज लगभग सभी समाचार पत्रों ने कल हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए निर्णयों से जुड़ी खबरों को जगह दी है। अमर उजाला व दिव्य हिमाचल की एक जैसी सुर्खी है, 2 लाख से कम आय वाली महिलाओं को ही मिलेंगे 1500, 2215 पद भरेंगे। पंजाब केसरी का शीर्षक है, हिमाचल में अब 24 घंटे खुली रहेंगी दुकानें, इंस्पेक्टरी राज से मिलेगी मुक्ति। जबकि दैनिक भास्कर के शब्द हैं, टूरिस्ट सीजन में 24 घंटे खुली रहेंगी दुकानें, 2500 पद भरने की मंजूरी। हिमाचल दस्तक लिखता है, विभिन्न विभागों में 1829 नए पद भरने को मंत्रिमंडल की मंजूरी। दैनिक जागरण की सुर्खी है, रेरा की मंजूरियों ने बढ़ाई सरकार की चिंता, धारा 118 के उल्लंघन पर घिर रहे अधिकारी। मौसम पर दैनिक भास्कर की सुर्खी है, उबला देश, हिमाचल में राहत की बौछारें, 25 मई तक बारिश के आसार। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विभिन्न सरकारी विभागों व संगठनों में 51,000 से अधिक युवाओं को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। प्रदेश में 3 चरणों में होने वाले पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव को लेकर तैयारियां पूरी। पोलिंग पार्टियां 24 व 25 मई को मतदान केंद्रों के लिए होंगी रवाना। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का आरोप, राज्य सरकार ने कैबिनेट बैठक बुलाकर आदर्श चुनाव आचार संहिता का किया उल्लंघन, चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग। पेट्रोल व डीजल की कीमतों में 91 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि, 10 दिन में तीसरी बार बढ़ी तेल की कीमतें। और प्रदेश में लहसुन की अच्छी पैदावार, बेहतर दाम मिलने पर किसान खुश। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।
2: प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के शिमला, धर्मशाला, हमीरपुर केंद्रों के साथ साथ FM शिमला पर भी एक साथ रिले किए गए। आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है, कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।
3: 103.7 MHz पर आप ट्यून इन हैं आकाशवाणी FM शिमला के साथ।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: और अब FM शिमला पर ये वक्त है कुदरत के रंग प्रोग्राम का।

ऐसा कहते हैं कि यात्रा हमारे जीवन का ना एक महत्वपूर्ण तत्व होता है। अगर आप अपने जीवन को भरपूर जीना चाहते हैं तो आपको यात्राएं जरूर करनी चाहिए। नई जगह पर जाकर नई नई चीज़ों और प्राकृतिक नज़ारों को देखना आपको रोमांच और आनंद से भर देता है। सैर सपाटा करने वालों का दृष्टिकोण भी बहुत खुला हुआ और विशाल होता है, और साथ ही ऐसे लोग जो लंबी यात्राओं पर, ट्रैकिंग पर या फिर घूमने के लिए जाते हैं वो काफ़ी खुश भी रहते हैं। इसलिए दूर दूर से सैलानी अपने ट्रैवल एक्सपीरियंस को रोमांचक बनाने के लिए चले आते हैं घूमने के लिए पहाड़ी क्षेत्र हिमाचल प्रदेश। और पहाड़ी क्षेत्रों के बारे में ये कहा जाता है कि सबसे कठिन चट्टानों और पहाड़ियों के बाद ही सबसे अद्भुत और सुंदर दृश्य देखने को मिलते हैं। और गौर करें ना तो ये कथन वाकई में सत्य है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के जितने भी हाईएस्ट माउंटेन एरियाज़ हैं वहाँ की खूबसूरती एक अलग ही लेवल की है, जिसे देखने और अनुभव करने के लिए यात्री लंबे लंबे ट्रैक करते हैं। तो आज इस प्रोग्राम में ना हम आपको बताएंगे हिमाचल प्रदेश के सबसे ज़्यादा पॉपुलर और इजी ट्रैकिंग रूट्स में से एक के बारे में। ये एक ऐसा खूबसूरत ट्रैक है

जहाँ पर जब आप जाते हैं तो आपको ऐसा प्रतीत होता है कि आप शायद कहीं जन्नत में हैं, इतने खूबसूरत नज़ारे आपको देखने को मिलते हैं। तो जी, इस ट्रैकिंग रूट के बारे में मैं आपको बताऊंगी डिटेल में इस प्रोग्राम में। आप यूं ही ट्यून इन रहिए हमारे साथ, और आज के इस प्रोग्राम में आपकी रेडियो गाइड बनकर मैं रहूंगी आपके साथ, स्वाति डोगरा। सुनते रहिए FM शिमला, मुस्कुराते रहिए।

अगर आप देखना चाहते हैं प्राकृतिक सौंदर्य से लबरेज पर्यटन स्थल, या फिर जाना चाहते हैं उन जगहों पर जहां पर बहुत ज़्यादा क्राउड नहीं होता है, तो चले आइए चूड़धार की यात्रा करने सिरमौर। और इस ट्रैकिंग रूट पर आपको ऐसे ऐसे सुंदर नज़ारे देखने को मिलेंगे जिन्हें देखकर आपको एक पल के लिए ऐसा लगेगा कि आप शायद कहीं जन्नत में है। जैसा हम इमेजिन कर सकते हैं ना कि हेवन कैसा हो सकता है, बस कुछ वैसा ही एक्सपीरियंस आपको होगा जब आप इस ट्रैकिंग रूट पर आएंगे। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिला के तहत शिवालिक पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी चूड़धार हिमाचल वासियों और उत्तराखंड के लोगों के आराध्य देव शिरगुल महाराज की तपोभूमि है। ऊंची चोटी पर विद्यमान भगवान शिव को समर्पित चूड़धार की चोटी पर शिरगुल महाराज का देवस्थान है, जिसमें स्थानीय लोगों की परम आस्था जुड़ी हुई है। शिरगुल महाराज या चूड़ेश्वर महाराज के नाम से विख्यात चूड़धार के देवस्थान की यात्रा लंबी 18 किलोमीटर की चढ़ाई के बाद पूरी होती है, और इस ट्रैक के दौरान प्रकृति अपने विभिन्न रंगों से आपको सराबोर कर देती है, और जिन अद्भुत नज़ारों को आपकी आंखें छूती हैं वो डेफिनेटली आपको ब्रेथ टेकिंग एक्सपीरियंस देता है। तो जी, आज चूड़धार ट्रैक के बारे में कुछ बातें होंगी इस प्रोग्राम में। आप यूं ही सुनते रहिए FM शिमला, ये है कार्यक्रम कुदरत के रंग।

हिमालय की ऊंची चोटियों में भगवान शिव का निवास स्थान है और उन्हीं चोटियों में से एक है चूड़धार। चूड़धार की चोटी को चूड़ चांदनी भी कहते हैं स्थानीय लोग, जिसका अर्थ है चांदनी में चमकता हीरे सा पहाड़। और वाकई बर्फ के चादर ओढ़े चूड़धार की चोटी चांदनी रातों में हीरे सी दमकती प्रतीत होती है। ये स्थान काफ़ी ठंडा रहता है, लेकिन मई से नवंबर तक इस जगह की यात्रा की जा सकती है, या तब तक जब तक इस चोटी पर या फिर इसकी घाटियों में बर्फ़ है तब तक यहाँ की यात्रा करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। एक बार बर्फ़ पिघलनी शुरू हो जाती है तो आप इस ट्रैकिंग रूट पर जा सकते हैं। जो ट्रैकिंग का शौकीन रखने वाले लोग हैं वो चूड़धार का जो ट्रैक है उन सब में काफ़ी पॉपुलर है। ये ट्रैक आसान भी है क्योंकि इस मार्ग में ना जटिल रास्ते नहीं हैं। हालांकि घने जंगलों के बीच से ऊपर चोटी तक जाने के लिए कुछ पगडंडी नुमा और कुछ खुले बड़े रास्ते ज़रूर बने हैं, जिन्हें वो लोग भी आसानी से पार कर लेते हैं जो पहली बार इस स्थान की यात्रा करने आते हैं। 18 किलोमीटर की चढ़ाई, 18 किलोमीटर की उतराई, यानी लगभग 36 किलोमीटर की रहती है चूड़धार चोटी की यात्रा। नौराधार स्टेशन से चूड़धार के लिए पैदल यात्रा शुरू की जा सकती है। 7 से 8 घंटे की इस पैदल यात्रा का मार्ग सुंदर अभयारण्य, घने जंगल और चारागाह से होकर गुजरता है, जो ऐसे दृश्य प्रस्तुत करता है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। और यात्रा का आखिर का एक घंटा जिस प्राकृतिक सौंदर्य को दर्शाता है उसे देखकर आपको आत्मिक शांति का अनुभव होता है। और हिमाचल के इन टेढ़े मेढ़े रास्तों से, इन रास्तों को पार करते करते आप कब अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं आपको इसका पता भी नहीं चलता है, क्योंकि जो सफ़र है वो ही इतना यादगार होता है। खैर, कार्यक्रम में कुछ और बातें भी होंगी आज चूड़धार ट्रैक के बारे में। आप सुनते रहिए FM शिमला।

ये गाने आप सुन रहे हैं एफएम शिमला पर। कार्यक्रम है ये कुदरत के रंग और आज कार्यक्रम में बात हो रही है चूड़धार ट्रैकिंग रूट की। ब्रिटिश सर्वेक्षक जनरल और प्रसिद्ध खगोल विज्ञानी जॉर्ज एवरेस्ट ने 1834 के दौरान हिमालय पर्वतों के आसपास की कई चोटियों के आंकड़े जमा किए थे और उसी दौरान वो चूड़धार की चोटी तक भी पहुंचे। उनके द्वारा लिखी किताब द ग्रेट आर्क में भी चूड़धार का जिक्र होता है, जिसमें उन्होंने इस चोटी को द ग्रेट चूड़ के नाम से संबोधित किया है। जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर ही हिमालय की ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट का नाम रखा गया है। अगर आप दिल्ली चंडीगढ़ की तरफ से चूड़धार आ रहे हैं ना, तो आप नाहन होते हुए श्री रेणुका जी से नोहराधार पहुँचेंगे। इसके अलावा सोलन राजगढ़ होते हुए भी आप नोहराधार पहुँच सकते हैं और शिमला से चौपाल होते हुए भी आप नोहराधार पहुँच सकते हैं और चूड़धार की आध्यात्मिक लेकिन रोमांचक यात्रा शुरू कर सकते हैं। चूड़धार में आप ट्रैकिंग तो कर ही सकते हैं और अब चूड़धार में जो है उसकी तलहटी में करीब 8500 फीट की ऊंचाई पर विंटर सीजन में वहां पर स्कीइंग भी कराई जाती है और एक बार जब वहां पर बर्फ अगर काफ़ी ज़्यादा है तो आप काफ़ी अच्छे तरह से वहाँ पर स्कीइंग का आनंद ले सकते हैं। नोहराधार में ठहरने के लिए गेस्ट हाउसेज अवेलेबल हैं, कुछ होम स्टेज भी हैं और छोटे होटल हैं और कुछ कैंपिंग साइट्स भी हैं जहाँ पर यंगस्टर्स बॉनफायर कर सकते हैं, कैंपिंग कर सकते हैं। दोस्तों आपको हम ये बता दें कि ये जो चूड़धार है ना, ये एक पर्यटन स्थल होने से कहीं ज़्यादा एक हिमाचल प्रदेश की पवित्र भूमि है जहाँ पर देवता शिरगुल महाराज का पवित्र स्थान है। तो जब भी आप इस स्थान पर घूमने जाए या फिर इस चोटी की ट्रैकिंग पर निकले तो इस बात का ख़ास तौर पर ध्यान रखें कि वो प्राकृतिक सौंदर्य से लबरेज वो जगह है और वहाँ पर फ्लोरा एंड फौना की बहुत अच्छी आपको जो है देखने को मिलेंगी वैराइटीज़। और साथ ही साथ ये गुजारिश उन सभी सैलानियों से हमारी रहती है कि ऐसे किसी भी पुण्य स्थली पर जब आप जाएं तो वहाँ की स्वच्छता का आप विशेष तौर पर ध्यान रखें और वहाँ की पवित्रता का भी ध्यान रखें। ट्रैकिंग पर आप जा रहे हैं तो बेशक अपने साथ आप कई सारे फूड आइटम्स लेकर के जाते होंगे और वाटर बॉटल्स आप कैरी करते हैं, तो प्लास्टिक की वाटर बॉटल्स कैरी ना करके आप दूसरे विकल्प चुने तो आपके लिए और पर्यावरण के लिए और वहाँ का जो नेचुरल हैबिटेट है ना उसके लिए ये बहुत ही अच्छा होगा। खैर, आप हिमाचल प्रदेश जब भी घूमने आते हैं आई एम श्योर आप यहाँ से निराश होकर तो नहीं जाने वाले। यहाँ की जो नेचुरल ये जो प्राकृतिक जो नज़ारे रहते हैं, खूबसूरती है यहाँ की, ये आपको कभी निराश नहीं करेगी और आपकी यहाँ से मीठी यादें बनकर ज़रूर जाएंगी। बहरहाल आज के लिए कुदरत के रंग प्रोग्राम में बस इतना ही। प्ले कर रही हूँ प्रोग्राम का ये आखिरी गाना आप सभी के लिए। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: आप जुड़े हैं एफएम शिमला के साथ और अब वक्त हो चला है एफएम न्यूज हेडलाइंस का।
1: नमस्कार, एफएम न्यूज हेडलाइंस के साथ मैं पूनम भारद्वाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री उपस्थित लोगों को भी संबोधित करेंगे। ये रोजगार मेला देश के 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। देश के सभी हिस्सों में चयनित ये युवा रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग सहित भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में कार्यभार संभालेंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता है और आपूर्ति स्थिर बनी हुई है। सोशल मीडिया पोस्ट में मंत्रालय ने नागरिकों को घबराहट में खरीदारी न करने और केवल वास्तविक आवश्यकता के अनुसार ईंधन खरीदने की सलाह दी है। मंत्रालय ने कहा है कि कुछ खुदरा दुकानों पर अस्थायी दबाव को तेल विपणन कंपनियों द्वारा निरंतर आपूर्ति निगरानी और समन्वित वितरण प्रयासों के

0: माध्यम से दूर किया जा रहा है। मंत्रालय ने आगे कहा कि जिम्मेदारी के साथ उपयोग और जनता का सहयोग और मौजूदा उच्च मांग के दौर में सभी के लिए ईंधन की सुचारू उपलब्धता सुनिश्चित करने में सहायक होगा। प्रदेश में मई माह में एलपीजी के डिजिटल बुकिंग बढ़कर 94% हो गई है, जबकि फरवरी माह तक ये बुकिंग 85% थी। इसके अलावा डिजिटल बुकिंग कराने से फर्जी बुकिंग और डुप्लीकेशन भी कम हुई है। कालाबाजारी और हेराफेरी को रोकने के लिए तेल विपणन कंपनियां डिजिटल प्रमाणीकरण कोड को और बेहतर बनाने पर काम कर रही है और वर्तमान में हिमाचल में इन कंपनियों ने 94% प्रमाणीकरण का हासिल कर लिया है। पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के बीच लागू आदर्श चुनाव आचार संहिता के दौरान सरकार द्वारा करवाई गई मंत्रिमंडल की बैठक को आचार संहिता का उल्लंघन बताया है। उन्होंने आरोप लगाया कि पंचायत चुनाव को अब कुछ दिन शेष बचे हैं, ऐसे में मतदाताओं को लुभाने के सुक्खू सरकार ने कैबिनेट बैठक में कई लोक लुभावने फैसले लिए। जयराम ठाकुर ने इस संदर्भ में चुनाव आयोग से तत्काल और कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज 91 पैसे प्रति लीटर तक की वृद्धि हुई है। पिछले 10 दिन में तेल के मूल्यों में तीसरी बार वृद्धि हुई है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87 पैसे बढ़ाकर 99.51 रुपये प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल के मूल्य 91 पैसे बढ़कर 92.49 रुपये प्रति लीटर हो गया है। 15 मई को 3 रुपये लीटर और 19 मई को 90 पैसे की वृद्धि के बाद ईंधन की कीमतों में ये तीसरी बार संशोधन है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि एक दिन और बढ़ाकर कल तक कर दी है। CBSE ने यह निर्णय वेबसाइट पर अत्यधिक आवेदन और तकनीकी व्यवधान के बाद लिया है, जिससे वेबसाइट बाधित हो रही थी। बोर्ड ने बताया कि विद्यार्थियों को उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी मिलने के बाद पुनर्मूल्यांकन का आवेदन करने के लिए 2 दिन का समय मिलेगा। इस अंक में इतना ही, नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे FM न्यूज हेडलाइंस 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। आप ट्यून इन है आकाशवाणी FM शिमला के साथ।
2: अगर आप जन जन तक पहुंचना चाहते हैं और अपना व्यवसाय बढ़ाना चाहते हैं, तो आकाशवाणी पर सस्ते दामों पर अपना विज्ञापन प्रसारित करवाएं।
3: आपका थोड़ा सा प्रयास आपके सपनों को पूरा कर सकता है।
2: आकाशवाणी के माध्यम से आप न केवल प्रदेश बल्कि पूरे देश भर में अपने व्यवसाय का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। शुभवाणी, लाभवाणी, जन जन की वाणी, ये है आकाशवाणी।
3: नियम और शर्तें लागू।
1: 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप ट्यून इन है FM शिमला के साथ और इस फ्रीक्वेंसी पर एंटरटेनमेंट की ये म्यूजिकल जर्नी यूं ही कंटिन्यू रहेगी।

आप जुड़े हैं एफएम शिमला के साथ और कुछ बढ़िया बढ़िया से गाने एंजॉय करते रहिए हमारे साथ यूं ही इस फ्रीक्वेंसी पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: सोनू निगम और साथियों की आवाजों में ये गाना आपने अभी सुना साथिया मूवी से।
1: चुनाव सिर्फ एक शब्द नहीं, ये है सच्चे लोकतंत्र की नींव, और मतदान है एक जागरूक नागरिक की पहचान, जिसे इस्तेमाल कर वो तय करते हैं अपने क्षेत्र, राज्य और देश की दशा व दिशा।
2: तो आइए अपनी जिम्मेदारी निभाएं, आगामी पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़कर भाग लें और गांव के विकास में अपना

0: महत्वपूर्ण योगदान दें।
1: आपका एक एक वोट तय करेगा पंचायत का भविष्य। तो निर्धारित तिथि को अपने नजदीकी मतदान केंद्र पर जाकर सोच समझ कर और बिना किसी प्रभाव के मतदान जरूर करें, क्योंकि ये सिर्फ आपकी जिम्मेदारी ही नहीं अधिकार है।
0: राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: उदित नारायण, अलका याग्निक और साथियों की आवाजों में ये गाना सुनिए, कहो ना प्यार है फिल्म से।

ये गाने आप एंजॉय कर रहे हैं एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। और अब अगला गाना फ्रॉम द मूवी द लेजेंड ऑफ भगत सिंह, आवाज़ें इस गाने में अलका याग्निक और उदित नारायण की।

0: आपका गांव है आपका गर्व, इसको विकसित बनाने के लिए आइए मिलके मनाएं लोकतंत्र का पर्व।
1: हो चुकी है देवभूमि हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव की घोषणा। ये मतदान 3 चरणों में 26, 28 और 30 मई को होगा। ऐसे में आए एक सच्चा नागरिक बनकर मिलकर निभाएं जिम्मेदारी और भारी संख्या में मतदान देकर दिखाएं अपनी भागीदारी।
0: आपका हर एक कीमती वोट आपके गाँव की दशा और दिशा तय करेगा, तो अपने मताधिकार का प्रयोग करना ना भूलें। राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

0: साजिद वाजिद का कंपोज किया ये गाना आपने सुना सोनू निगम की आवाज में।
1: हमारा गांव है हमारी पहचान, हमारा गांव है हमारा अभिमान, आइए मिलकर दें इसके विकास में अपना योगदान।
2: हम सब ने ठाना है कि 100% मतदान के लक्ष्य को पाना है।
1: पंचायत चुनाव आ रहे हैं, जहां आपका हर ईमानदारी से दिया गया वोट तय करता है गांव की दशा और दिशा, साथ ही बनता है गांव के विकास का आधार।
2: तो 26, 28 और 30 मई को होने वाले पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले और अपने परिवार और आस पास के हर वोटर को मतदान के लिए प्रेरित करे।
1: राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी।
0: सोनू निगम और लता मंगेशकर की आवाज़ों में राहुल शर्मा का कंपोज किया ये गाना मुझसे दोस्ती करोगे फिल्म से।

0: किसान हो या युवा या कोई पंजीकृत महिला संगठन, आप अपने कारोबार को सशक्त बनाने हेतु आकाशवाणी पर सस्ते दामों पर विज्ञापनों का प्रसार करवाकर अपने सपने साकार कर सकते हैं।
1: शुभ वाणी, लाभ वाणी, जन जन की वाणी, ये है आकाशवाणी।
0: नियम और शर्तें लागू।

0: हिमाचल के युवाओं, अब सिर्फ सोशल मीडिया पर ओपिनियन देने का नहीं, वोट देने का भी वक्त आ गया है।
1: इस पंचायत इलेक्शन में 50 लाख से ज्यादा वोटर्स अपने मत का अधिकार इस्तेमाल करेंगे और हजारों फर्स्ट टाइम वोटर्स भी बनेंगे इस बदलाव का हिस्सा। 26 मई, 28 मई और 30 मई, याद रखिए ये तारीखें।
0: आपकी एक वोट आपके गाँव की सोच, विकास और लीडरशिप को तय करेगी। तो निकलिए घर से और बनिए जिम्मेदार नागरिक। पंचायत चुनाव 2026, वोट जरूर करें।

अलका याग्निक और सोनू निगम की आवाज़ों में ये गाना आपने सुना रन मूवी से। और अब अगला गाना आपके लिए प्ले कर रही हूँ मैं, मैंने प्यार क्यों किया, इस फिल्म से। आवाज़ें इस गाने में सोनू निगम, जयेश गांधी और अमृता काक की।

0: सरकारी विभाग हो या बैंक या फिर कोई सार्वजनिक उपक्रम यानी PSU।
1: आप सस्ते दामों पर आकाशवाणी के माध्यम से सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का आकाशवाणी के माध्यम से विज्ञापनों द्वारा प्रचार प्रसार कर जन जन तक पहुंचा सकते हैं।
0: आकाशवाणी की पहुंच प्रदेश के दूर दराज ग्रामीण एवं जनजातीय क्षेत्रों तक है
1: और आकाशवाणी की मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DTH पर ये सेवाएं उपलब्ध हैं।
0: शुभवाणी लाभवाणी जन जन की वाणी ये है आकाशवाणी।
1: नियम और शर्तें लागू।

0: पार्टनर फिल्म के इसी गाने के साथ आज का आपका और हमारा ये म्यूजिकल सफर भी यहीं खत्म होता है। अपनी रेडियो दोस्त स्वाति डोगरा को दीजिए इजाजत। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, गुड बाय। और आप सुनते रहें एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज पर, और अभी प्रतीक्षा करें हमारी अगली उद्घोषणा की।
1: मीडियम वेव 387.6 मीटर और एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी शिमला से बोल रहे हैं। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों पर भी सुना जा सकता है और डीटीएच सेवा पर भी ये समाचार उपलब्ध रहेंगे।
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद 19वीं रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये रोजगार मेला देश में 47 स्थानों पर आयोजित किया जा रहा है। देश के सभी हिस्सों से चयनित ये युवा रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग सहित भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में कार्यभार संभालेंगे। प्रदेश में तीन चरणों में 26, 28 और 30 मई को होने वाले पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों को लेकर राज्य चुनाव आयोग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इन तीनों चरणों में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के विभिन्न पदों के लिए मतदान कराया जाएगा। चुनाव आयोग ने पूरे प्रदेश में कुल 21,678 मतदान केंद्र स्थापित किए हैं। इन मतदान केंद्रों पर मतदाताओं के लिए सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए हैं। चुनाव ड्यूटी पर तैनात पोलिंग पार्टियों को आज अंतिम चरण का पूर्वाभ्यास करवाया जा रहा है और कल 24 व 25 मई को इन्हें संबंधित मतदान केंद्रों के लिए रवाना किया जाएगा। चुनाव ड्यूटी में करीब 35,000 कर्मचारियों की तैनाती की गई है, जो तीन चरणों में होने वाले मतदान को सफलतापूर्वक संपन्न करवाएंगे। राज्य सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों को लेकर मतदान दिवस पर संबंधित क्षेत्रों में भुगतान सहित अवकाश घोषित किया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार 26, 28 और 30 मई को संबंधित क्षेत्रों में सरकारी व निजी संस्थान बंद रहेंगे, ताकि अधिक से अधिक लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि कर्मचारियों और अधिकारियों को उसी दिन छुट्टी मिलेगी जब उनकी पंचायत या संबंधित क्षेत्र में मतदान होगा। दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को भी ये अवकाश मान्य होगा। पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के बीच लागू आदर्श चुनाव आचार संहिता के दौरान सरकार द्वारा करवाई गई मंत्रिमंडल की बैठक को आचार संहिता का उल्लंघन बताया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि पंचायत चुनाव को अब कुछ दिन बचे हैं, ऐसे में मतदाताओं को लुभाने के लिए सुक्खू सरकार ने कैबिनेट बैठक में कई लोक लुभावन फैसले लिए हैं। जयराम ठाकुर ने इस संदर्भ में चुनाव आयोग से तत्काल और कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है।
3: पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के बीच में मुख्यमंत्री जी कैबिनेट की बैठक करते हैं और कैबिनेट में फैसले लिए गए कि महिलाओं को 1500 रुपए दिए जाए। उसके बाद मेडिकल कॉलेजेस में जो प्रोफेसर है उनकी रिटायरमेंट की एज को बढ़ाने का फैसला लिया, और फैसले जो मानदेय बढ़ाने के लिए, चाहे वो आंगनबाड़ी वर्कर है, चाहे वो मल्टीटास्क वर्कर है, चाहे वो अलग विभाग में काम करने वाले कर्मचारियों के संदर्भ में कुछ फैसले लिए गए थे, उनको भी अभी अनाउंस किया।

0: पूरी तरह से चुनाव आचार संहिता का खुलेआम उल्लंघन हुआ है। चुनाव को प्रभावित करने के लिए जो प्रयत्न किया गया है, इस संदर्भ में हिमाचल प्रदेश चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए।
1: पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज 91 पैसे प्रति लीटर तक की वृद्धि हुई है। पिछले 10 दिन में तेल के मूल्यों में तीसरी बार वृद्धि हुई है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87 पैसे बढ़कर 99.51 रुपये प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल के मूल्य 91 पैसे बढ़कर 92.49 रुपये प्रति लीटर हो गए हैं। 15 मई को 3 रुपये प्रति लीटर और 19 मई को 90 पैसे की वृद्धि के बाद ईंधन की कीमतों में ये तीसरी बार संशोधन है। हाल ही के दिनों में कीमतों में लगभग 5 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि हुई है। प्रदेश में इस बार लहसुन की अच्छी पैदावार हुई है और फसल के बेहतर दाम मिलने से किसान खुश हैं। सोलन की सब्जी मंडी में बड़ी संख्या में किसान इन दिनों लहसुन बेचने के लिए पहुंच रहे हैं। किसानों का कहना है कि इस बार उन्हें पिछले वर्ष के मुकाबले लहसुन का अच्छा मूल्य मिला है, जिससे उन्हें फायदा हुआ है।
2: जयसिंह ठाकुर बीरगांव से, मेरा लहसुन पिछले 100 रुपये था, इस बार 145 रुपये का।
3: सुरेंद्र कुमार और मेरा गांव जो है बिधाड़ है। पिछले साल के मुताबिक जो इस बार जो है किसानों को अच्छा रेट मिल रहा है, तो बहुत अच्छा जो है फसल इस बार है और थोड़ा सा अच्छा रेट भी मिल रहा है हमको।
4: नाम राकेश कुमार, मैं कुनहार से आया हूँ और इस बार पिछले साल से लहसुन के रेट बहुत बढ़िया मिला है जिम्मेदारों को और जिम्मेदार बहुत खुश है इस बार।
1: कालका शिमला मार्ग में सलोगड़ा के समीप आज एक निजी बस अनियंत्रित होकर सड़क पर ही पलट गई। ये बस सोलन से शिमला जा रही थी और इसमें करीब 10 लोग सवार थे, जिनमें से चालक सहित 2 लोग घायल हुए हैं। घायलों को उपचार के लिए क्षेत्रीय अस्पताल सोलन भेजा गया है। दुर्घटना के कारणों की जांच चल रही है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 2:03 बजे। नमस्कार।
5: अभी आप प्रादेशिक समाचार सुन रहे थे। ये समाचार आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के साथ साथ एफएम शिमला पर भी प्रसारित किए जा रहे थे। हम आकाशवाणी शिमला से बोल रहे हैं। हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।
6: सुरीला सफर संगीत का साथ हो मनमीत का, घर आंगन में महके जो क्या कहना उस प्रीत का।
7: ए

सुबह हो या शाम, आपके घर आंगन में महकती एक आवाज 103.7 मेगाहर्ट्ज़ एफएम शिमला। मस्त चुनो, मस्त सुनो, जानकारी और मनोरंजन के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं FM शिमला। एक बार फिर तहे दिल से स्वागत करते हैं आप सभी का आप ही के अपने चहेती रेडियो स्टेशन 103.7 मेगाहर्ट्ज FM शिमला पर। जी बिल्कुल जनाब, जहां पर गीत है, संगीत है, बहुत सारा मनोरंजन है, और है एक खास बात, वो है आप सभी लिसनर्स का प्यार भरा साथ, जो रहता है हमेशा, हर पल, हर दम हमारे साथ, FM शिमला के साथ। तो देखिए ना, तभी तो हम भी चले आते हैं आपसे मिलने, कहाँ, यहाँ पर, यहीं पर, आपके अपने चहेती रेडियो स्टेशन FM शिमला पर। मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी रेडियो हमसफर बबीता शर्मा, और अब हम और आप साथ मिलकर महसूस करेंगे मोहब्बत, दोस्ती और जिंदगी के उन अनमोल एहसासों को पुरानी फिल्मों के बेहतरीन गीतों के साथ। जी बिल्कुल, रेडियो के वॉल्यूम थोड़ी से बढ़ा लीजिए और तैयार हो जाइए आज के इस ब्यूटीफुल म्यूजिकल जर्नी पर चलने के लिए, क्योंकि शुरू होने जा रहा है आपका अपना कार्यक्रम, नाम है जिसका पुरानी फिल्मों से।

0: जी हाँ, हम साया फिल्म का गीत अभी आपने सुना मोहम्मद रफी की आवाज में।
1: हिमाचल में फिर से सज गया है लोकतंत्र का महापर्व, पंचायत चुनाव 2026।
2: 26, 28 और 30 मई को तीन चरणों में होने जा रहे हैं पंचायत इलेक्शंस, जहां आपकी एक वोट तय करेगी आपके गांव का कल।
1: सड़क, पानी, सफाई, रोजगार और गांव के विकास से जुड़े फैसलों में आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है।

0: इस बार बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए और चुनिएगा ईमानदार, योग्य और जिम्मेदार प्रतिनिधि। हिमाचल पंचायत इलेक्शंस 2026, मजबूत पंचायत, मजबूत हिमाचल।
1: लता मंगेशकर की आवाज में आइए सुनते हैं सौदागर फिल्म का ये प्यारा सा गीत।

0: जी बिल्कुल, आपका और हमारा जो ये साथ है ना, वो यूं ही बना रहेगा FM शिमला पर। देखिए ना, एक दूसरे से मिले बिना ही हम आवाज़ के माध्यम से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। दोस्ती का जो ये रिश्ता है ना, ऐसे ही बरकरार रहेगा आपका और हमारा।
1: गांव की पहचान होती है उसकी मजबूत पंचायत से, और पंचायत मजबूत बनती है आपके एक वोट से।
2: क्योंकि ईमानदारी और बिना किसी के प्रभाव में आए दिए गए आपके वोट ही तय होते हैं गांव, और बनती है सड़क, पानी, स्वच्छता और रोजगार संबंधी नीतियाँ।
1: इसीलिए 26 मई, 28 मई और 30 मई को होने वाले पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर अपनी भागीदारी निभाएं।
2: अपने परिवार और गांव वालों को भी जागरूक बनाएं और 100% मतदान के संकल्प को हासिल करने का लक्ष्य बनाएं।
1: राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी।

देखिए, शिकायतें तो कुछ नहीं है। हम यूं कह सकते हैं कि कुछ आवाज़ें कभी पुरानी नहीं होती और कुछ गीत कभी भुलाए नहीं जाते, और जो ये यादें हैं वो हमेशा दिल में बसी रहते हैं। उन्हीं यादों को फिर से महसूस करने के लिए हम लेकर आए हैं पुराने दौर के सदाबहार फिल्मी नगमे पुरानी फिल्मों से।

0: आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज़ में गाए आंसू बन गए फूल फिल्म के इसी गीत के साथ पुरानी फिल्मों से कार्यक्रम में आज बस इतना ही। जानकारी और मनोरंजन का ये हसीन और खूबसूरत सिलसिला यूं ही चलता रहेगा आप सभी लिसनर्स के साथ। आप यूं ही बने रहिए हमारे साथ एफएम शिमला पर, सुनते रहिए और बस यूं ही मुस्कुराते रहिए।
1: चुनाव सिर्फ एक शब्द नहीं, ये है सच्चे लोकतंत्र की नींव, और मतदान है एक जागरूक नागरिक की पहचान, जिसे इस्तेमाल कर वो तय करते हैं अपने क्षेत्र, राज्य और देश की दशा व दिशा।
2: तो आइए अपनी जिम्मेदारी निभाएं, आगामी पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़ कर भाग लें और गांव के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें।
1: आपका एक एक वोट तय करेगा पंचायत का भविष्य। तो निर्धारित तिथि को अपने नजदीकी मतदान केंद्र पर जाकर सोच समझ कर और बिना किसी प्रभाव के मतदान जरूर करें, क्योंकि ये सिर्फ आपकी जिम्मेदारी ही नहीं अधिकार है।
2: राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं एफएम शिमला और इस वक्त हमारी स्टूडियो की घड़ी में 11:30 हो गए हैं। आप जानते हैं एफएम शिमला पर ये समय रहता है पहाड़ी लोकगीतों के कार्यक्रम पहाड़ी संगीत का। जी बिल्कुल, हिमाचल की हसीन और खूबसूरत वादियों का मीठा सा संगीत हम पहुंचाएंगे आप तक इन प्यारे प्यारे पहाड़ी लोकगीतों के माध्यम से। कार्यक्रम का आगाज हम कर रहे हैं चंपा शर्मा के गाए इस लोकगीत के साथ।

0: आपका गांव है आपका गर्व, इसको विकसित बनाने के लिए आइए मिलके मनाएं लोकतंत्र का पर्व।
1: हो चुकी है देवभूमि हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव की घोषणा। ये मतदान 3 चरणों में 26, 28 और 30 मई को होगा। ऐसे में आए एक सच्चा नागरिक बनकर मिलकर निभाएं जिम्मेदारी और भारी संख्या में मतदान देकर दिखाएं अपनी भागीदारी।
0: आपका हर एक कीमती वोट आपके गांव की दशा और दिशा तय करेगा, तो अपने मताधिकार का प्रयोग करना ना भूलें। राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

किशोर चांदनी की आवाज़ में अभी आपने सुना ये लोकगीत। आप सुन रहे हैं एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज पर और आनंद ले रहे हैं पहाड़ी लोकगीतों के कार्यक्रम पहाड़ी संगीत का। आइए अब सुनते हैं बबली की आवाज़ में कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति।

0: हमारा गांव है हमारी पहचान, हमारा गांव है हमारा अभिमान। आइए मिलकर दें इसके विकास में अपना योगदान।
1: हम सब ने ठाना है कि 100% मतदान के लक्ष्य को पाना है।
0: पंचायत चुनाव आ रहे हैं।

0: हमारा गांव है हमारी पहचान, हमारा गांव है हमारा अभिमान। आइए मिलकर दें इसके विकास में अपना योगदान।
1: हम सब ने ठाना है कि 100% मतदान के लक्ष्य को पाना है।
0: पंचायत चुनाव आ रहे हैं, जहां आपका हर ईमानदारी से दिया गया वोट तय करता है गांव की दशा और दिशा, साथ ही बनता है गांव के विकास का आधार।
1: तो 26, 28 और 30 मई को होने वाले पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले और अपने परिवार और आस पास के हर वोटर को मतदान के लिए प्रेरित करे।
0: राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी।
2: कृष्णलाल सहगल की आवाज में आइए सुनते हैं कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति।

0: हिमाचल के युवाओं, अब सिर्फ सोशल मीडिया पर ओपिनियन देने का नहीं, वोट देने का भी वक्त आ गया है।
1: इस पंचायत इलेक्शन में 50 लाख से ज्यादा वोटर्स अपने मत का अधिकार इस्तेमाल करेंगे और हजारों फर्स्ट टाइम वोटर्स भी बनेंगे इस बदलाव का हिस्सा। 26 मई, 28 मई और 30 मई, याद रखिए ये तारीखें।
0: आपकी एक वोट आपके गाँव की सोच, विकास और लीडरशिप को तय करेगी। तो निकलिए घर से और बनिए जिम्मेदार नागरिक। पंचायत चुनाव 2026, वोट जरूर करें।

नीलम गंधर्व के गाए इसी लोकगीत के साथ पहाड़ी संगीत कार्यक्रम में आज बस इतना है। 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं FM शिमला। इस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 12 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 19वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक नव नियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रोजगार मेले को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि देश दुनिया के विभिन्न देशों के साथ भी साझेदारी कर रहा है, जिसका उद्देश्य देश के युवाओं को अवसर, रोजगार और वैश्विक अनुभव देना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया का एक भरोसेमंद सप्लाई चेन पार्टनर बन रहा है। उन्होंने कहा कि भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। श्री मोदी ने कहा कि हर भारतीय 2047 तक देश को विकसित भारत बनाने के संकल्प के साथ काम कर रहा है।
1: आज हर भारतीय एक बड़े संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। ये संकल्प 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आज देश अलग अलग सेक्टर्स में निवेश कर रहा है और इस निवेश से देश के युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर बन रहे हैं, जिसे आज भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की पूरी सप्लाई चेन तैयार की जा रही है।
0: ये रोजगार मेला पूरे देश में 47 स्थानों पर आयोजित किया गया। पूरे देश से चुने गए ये नए उम्मीदवार रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय और उच्च शिक्षा विभाग जैसे अलग अलग मंत्रालयों और विभागों में शामिल होंगे। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की है कि राज्य में अगले 5 वर्ष में 1,00,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। शिक्षा विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे हर साल कम से कम 20,000 शिक्षकों की भर्ती सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए अब शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अधिसूचना हर साल जुलाई महीने में जारी की जाएगी। आंध्र प्रदेश के श्री सत्यसाई जिले में आज राष्ट्रीय सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स अकादमी में भारतीय राजस्व सेवा के 76वें बैच के अधिकारियों की पासिंग आउट परेड आयोजित की गई। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर श्री चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार ने युवाओं को लगभग 4 करोड़ रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। श्री चौधरी ने कहा कि युवाओं को राष्ट्र के विकास में सक्रिय भागीदार बनना चाहिए। जालंधर स्थित प्रवर्तन निदेशालय ने इंडियन कोऑपरेटिव हाउसिंग मिडिल सोसाइटी के सचिव अजय सहगल को फर्जी सहमति पत्र जमा करके धोखाधड़ी से भूमि उपयोग परिवर्तन प्राप्त करने से संबंधित धन शोधन के मामले में गिरफ्तार किया है। ये जांच पंजाब पुलिस ने किसानों की शिकायतों के आधार पर FIR दर्ज की थी। विभाग की जांच में पता चला कि आरोपियों ने 15 भूस्वामियों की 30.5 एकड़ भूमि के संबंध में फर्जी सहमति पत्र तैयार किए थे। इंडियन ऑयल ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति स्थिर है और ईंधन की कोई कमी नहीं है। इंडियन ऑयल ने एक बयान में कहा कि कुछ खुदरा दुकानों पर मांग आपूर्ति असंतुलन और चुनिंदा क्षेत्रों में मांग बढ़ने के कारण अस्थिरता की खबर है। ऐसे मामले देश भर में 42,000 से अधिक खुदरा दुकानों के इंडियन ऑयल के नेटवर्क में से कुछ खुदरा दुकानों तक ही सीमित है। इंडियन ऑयल ने बताया कि 1 मई से 22 मई की अवधि के दौरान कंपनी ने ईंधन की बिक्री में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है। इस दौरान पेट्रोल की बिक्री में 14% जबकि डीजल की बिक्री में करीब 18% की वृद्धि हुई है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज वृद्धि हुई है। पिछले 10 दिन में तेल के मूल्यों में तीसरी बार वृद्धि हुई है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87 पैसे बढ़कर 99.51 रुपये प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल का मूल्य 51 पैसे बढ़कर 92.49 रुपये प्रति लीटर हो गया है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज CNG की कीमत में 1 रुपये तक की वृद्धि की है। इस वृद्धि के बाद राजधानी में 1 किलोग्राम CNG की नई

0: arising due to local demand-supply imbalances and redistribution of sales patterns in select areas. The oil company clarified that such instances are limited to a very small number of retail outlets out of its extensive network of more than 42,000 retail outlets nationwide. In IPL cricket, Lucknow Super Giants will take on Punjab Kings in Lucknow this evening. The match will start at 7:30 p.m. Last night, Sunrisers Hyderabad defeated Royal Challengers Bengaluru by 55 runs in Hyderabad. And that is the end of this news bulletin.
1: दोपहर के 12:10 हो गए हैं एफएम शिमला पर. आइए अब आप और हम आनंद लेते हैं फिल्म संगीत का. अरिजीत सिंह, नीति मोहन और सुनिधि चौहान की आवाजों में ये है चेन्नई एक्सप्रेस मूवी का सॉन्ग. बनी रही एफएम शिमला के साथ, सुनते रहिए और बस यूं ही मुस्कुराते रहिए.

में आज बस इतना ही। 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं FM शिमला। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।

मीडियम वेव 387.6 मीटर और एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी शिमला से बोल रहे हैं। 12:20 होने वाले हैं और ये समय है कार्यक्रम महिला सम्मेलन का।

0: कार्यक्रम महिला सम्मेलन सुनने वाली सभी बहनों को गरिमा और
1: दीक्षा का
0: नमस्कार।
1: नमस्कार। गरिमा, एक कहावत तो सुनी होगी तुमने कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप हूँ शीतल होए।
0: बिल्कुल, ये जो कहावत है ये हमने कई बार सुनी है और जो इसमें बात कही गई है वो एकदम सही भी है। देखिए, शब्दों में वाकई एक जादू होता है।
1: बिल्कुल, और ऐसा जादू होता है जो गरिमा सामने वाले का तापमान बढ़ा भी सकता है ना, यानी उन्हें
0: बिल्कुल
1: गुस्सा भी दिला सकते हैं, और वहीं अगर किसी का कोई गुस्से में हो व्यक्ति तो उसको शांत भी कर सकती है।
0: बिल्कुल
1: तो हमारे ये शब्द जो हैं इसका, और खासकर जब हम बातचीत करते हैं तो जो शिष्टाचार हमारा है ना शब्दों के जरिए, वो छलकना चाहिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल, आपने एकदम सही कहा। हमारे जो शब्द होते हैं ना, उनमें इतनी मिठास होनी चाहिए, इतना प्यार होना चाहिए कि सामने वाले के कानों में जब हमारी आवाज़ जाए तो वो प्रसन्न हो जाए, वो खुश हो जाए,
1: हाँ,
0: और शब्दों से होते हुए वो जो मिठास है वो सीधा उनके मन तक पहुंच
1: वाह
0: जाए।
1: क्या बात है। और एक बात ये भी है गरिमा कि कई बार ऐसा भी हो जाता है ना, हम बात करते हैं कि आपको अच्छे से बात करनी
0: प्यार
1: चाहिए, है
0: से,
1: ना, प्यार से,
0: मीठे
1: हाँ मीठे से
0: मीठा
1: बोलो भाई सबके साथ। खासकर हम बात करते हैं कि आप कहीं ऑफिस में काम करते हैं या घर पे भी, आप बड़ों से अच्छे से बात करो। अब घर पे बड़ों से अच्छे से बात करने को तो हम सही से उसका मतलब लेते हैं,
0: बिल्कुल
1: लेकिन जब बात आती है ना हमारे घर से बाहर निकल के, हम कहीं किसी और जगह पर, वर्क प्लेस पे हम शिष्टाचार की बात करते हैं, तो वहाँ पर बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये भी एक शक का कीड़ा रहता है कि जी मीठे से बोलने का मतलब मिठास, और अच्छे से बोलने का मतलब है चापलूसी करना,
0: हाँ, कई
1: है
0: बार
1: ना।
0: उसे मीठे बोलने को
1: हाँ
0: चापलूसी
1: ऐसा कह
0: समझ
1: देते
0: लेते
1: हैं,
0: हैं। बिल्कुल
1: जबकि बहनों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप भी जानती हैं, हम भी जानते हैं कि चापलूसी करने में और शिष्ट भाषा का प्रयोग करने में बहुत ज़्यादा फर्क है
0: बिल्कुल,
1: ना।
0: जो शब्दों का चुनाव सोच समझ के करना, जिस बारे में हम बात कर रहे हैं वो तमीज़ से बात करना, उसका मतलब
1: हाँ
0: कुछ और होता है।
1: हाँ
0: अब जैसे कोई चिल्ला चिल्ला कर बोले या फिर गाली
1: गाली
0: गलौज
1: गलौज कर, हाँ
0: करे
1: बिल्कुल,
0: या फिर बात बात पे ताने मारते रहे, तो
1: हाँ
0: उनसे तो फिर कुछ
1: कौन ही
0: समय
1: बात
0: बाद,
1: करेगा।
0: हाँ बिल्कुल, आपका मन ही नहीं करता कि इनसे तो बात ही करना रहने देते हैं।
1: हाँ, और ऐसी भाषा ना हमारे मन को खुश करती है और ना ही किसी दूसरे के मन को ये कभी भी
0: बिल्कुल
1: खुश कर सकती है। इसीलिए हमारी जो भाषा है वो भद्र होनी चाहिए, शालीन हो, ताकि किसी के मन को दुखाए बिना हम अपनी बात उन तक पहुंचा सकें, है ना।
0: बिल्कुल, अब देखिए, अगर हम बात कर रहे हैं हमारे रिश्तेदारों की, दोस्तों की, या जो खास रिश्ते हैं
1: हाँ
0: उनकी, तो उनके बारे में तो हमें पता है ना कि उनके साथ हम कितने हद तक हंसी मजाक कर
1: हाँ
0: सकते
1: बिल्कुल,
0: हैं या
1: कहाँ
0: क्या
1: हाँ बुरा
0: ऐसी
1: मान
0: बात बोल
1: जाएंगे या
0: सकते हैं,
1: कब
0: वो बुरा
1: नहीं।
0: ना माने। लेकिन अब हमारी जो डेली बेसिस पे बातचीत है वो सिर्फ इन्हीं लोगों से तो नहीं होती ना,
1: बिल्कुल
0: हम
1: बिल्कुल,
0: घर से बाहर निकलते हैं, बहुत से अनजान लोगों से बात भी करनी पड़ती है और हमें नहीं पता होता कि उनकी,
1: कैसा उनका नेचर
0: हाँ
1: है, किस
0: बिल्कुल,
1: बात का उनको गलत मतलब
0: निकल
1: लगा
0: सा
1: लेंगे
0: निकाल
1: वो।
0: सकते हैं। बिल्कुल,
1: हाँ
0: तो ऐसे में कुछ बेसिक एटिकेट्स होते हैं, कुछ ऐसे आचरण होते हैं जिनका हमें ध्यान रखते हुए ही भाषा का प्रयोग करना चाहिए।
1: बिल्कुल सही कहा तुमने, शब्दों में या भाषा में वैसे भी देखो थोड़ी थोड़ी दूरी पर ही कितनी विभिन्नता आ जाती है ना। अब हमारी बहनें इतनी जगह रहती हैं, है ना, और हमारे थोड़े थोड़े प्रदेश में, थोड़े थोड़े से अगर हम दूसरी डिस्ट्रिक्ट में भी चले जाएं
0: बिल्कुल
1: तो
0: बिल्कुल,
1: वहाँ पर भी भाषाई पहचान जो है वो अलग हो जाती है।
0: हाँ
1: कोई शब्द ऐसे हैं जो हमारी भाषा शैली में ठीक माने जाते हैं, वो हो सकता है तुम्हारी भाषा शैली में उसका मतलब थोड़ा
0: बिल्कुल,
1: सा अलग हो।
0: हाँ
1: अब
0: हाँ
1: ये नहीं मान के हम चल सकते कि हर कोई वैसा ही मतलब
0: हाँ
1: समझेगा हमारी भाषा का
0: हाँ
1: जैसा हम समझ रहे हैं।
0: बिल्कुल, और देखिए इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि जिनसे हम पहली बार मिल रहे हैं ना, उनसे बात करते समय जो सिंपल, साधारण और

0: सर्वसम्मत जो
1: हाँ
0: भाषा
1: सर्वसम्मत
0: है
1: है जो। हाँ
0: उसका प्रयोग करना चाहिए, वैसी नहीं जैसे हम अपने घर पर बात करते हैं, क्योंकि घर पर तो हम अपने कंफर्ट जोन में होते हैं, अपने लोगों के साथ होते हैं, उन्हें पता है कि आप किस टोन में बात करते हैं और किस तरह के शब्द प्रयोग करते हैं, उनका
1: बिल्कुल
0: मतलब क्या है।
1: हाँ बिल्कुल
0: लेकिन अनजान व्यक्तियों से भी आप उसी तरह से अगर बात करेंगे तो वो तो फिर गुस्सा भी हो सकते हैं।
1: बिल्कुल। और वैसे भी देखो कहते भी है ना कि हम लोग जब किसी से बात करते हैं तो उससे उसकी पूरी पर्सनैलिटी हमारे सामने बन जाती है वैसी
0: बिल्कुल
1: ही।
0: बिल्कुल
1: इसीलिए जो शब्दों का चयन करना है, जो ये शिष्टता है ना हमारी बातचीत में, ये ऐसी चीज़ है कि इसमें जो निपुण होगा उसकी बात करने की तरीके की और उस इंसान के व्यक्तित्व की हर कहीं प्रशंसा होगी, और ऐसा होता ही है।
0: होता ही है, बिल्कुल होता है। और हम चाहते भी है कि देखिए, जब बच्चे बोलना शुरू करते
1: हाँ
0: हैं
1: हम सिखाते हैं
0: तो
1: शुरू से उनको
0: माताएं
1: भी।
0: और घर की सारी जो बड़े लोग होते हैं वो यही चाहते हैं कि बच्चा बड़ा प्यारा प्यारा बोले, लगता भी प्यारा है जब वो बोलना शुरू करता है कि सब कुछ अच्छा अच्छा ही लगता है, वो तोतली भाषा में जो भी बोलता है।
1: हाँ
0: लेकिन यही वो समय होता है जब उन्हें हमें ये भी सिखाना पड़ता है कि आप जो बोल रहे हैं वो सोच समझ के बोले।
1: बिल्कुल। और कभी सामने वाले के हिसाब से भी उनको बोलना सिखाना पड़ता है ना हमें,
0: बिल्कुल
1: कि आपको मतलब हमें उनको ये भी नॉलेज देनी चाहिए साथ में कि सामने वाले की प्रकृति देखकर बोले, उनको पता हो कि किस व्यक्ति के साथ उन्होंने कैसे बात करनी है। और वैसे भी बहनों आप भी जानती हैं, हम भी जानते हैं, हम किसी इंसान की तारीफ ऐसे ही करते हैं कि जी वो कितना अच्छा बात करता है और वो कितना अच्छा ही आदमी होगा, है
0: हाँ
1: ना।
0: हाँ
1: तो
0: हाँ
1: यानी कि बातचीत जो हमारी वाणी है, जो ये शिष्टाचार है, ये एक ऐसा गुण है जो सच में ये ऐसी चीज़ है जो हमारे खुद के मन को शीतल करने के साथ साथ औरों के मन को भी शीतल करती है।
0: बिल्कुल
1: तो अब गरिमा बहनों को सुनवाते हैं कार्यक्रम का पहला गीत, है ना, ताकि ये जो हम वाणी की मिठास की और शिष्टाचार की बातें कर रहे हैं जो मन को खुश करती है, वो गीतों से और बढ़ जाए।
0: जी।
2: Hey, say your mind.
3: What do you think?

0: देखिए दीक्षा, एक बात तो आपने भी सुनी होगी ना, अक्सर हम अपने आसपास सुनते हैं और कई बार हम खुद भी कहते हैं कि एक जो महिला है वो पूरे घर को संभाल के रखती है।
1: हाँ बिल्कुल,
0: घर का राशन हो, बच्चों की ज़रूरतें हो, त्योहारों की तैयारी हो या फिर कोई छोटी छोटी बचत की बात क्यों ना हो, ये महिलाएं ही होती हैं जो हर चीज़ को बहुत समझदारी से मैनेज करती है ना?
1: बिल्कुल सही बात है। ये मानते भी हैं और हम खुद में भी मानते हैं कि अगर थोड़ा बहुत हम ही इधर उधर कर दें या हम ध्यान ना रखें तो फिर कुछ चीज़ें, बजट जो है वो कहीं ना कहीं बिगड़ भी जाता है कभी कभी। और ये चीज़ें हमारी हर बहन के साथ यही चीज़ होती है, ये चीज़ बिल्कुल सही है। लेकिन आज के समय में गरिमा सिर्फ घर संभालना ही नहीं, जबकि अपने पैसों को समझदारी से संभालना ये भी बहुत ज़रूरी हो गया है हम सबके लिए।
0: बिल्कुल। और क्योंकि देखिए, जब तक एक जो महिला है वो आर्थिक रूप से जागरूक नहीं होगी तो कहीं ना कहीं पूरा परिवार भी मजबूत नहीं बनता है।
1: बिल्कुल सही।
0: कई बार होता ऐसा है कि हम अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा करते करते खुद की जो फाइनेंशियल प्लानिंग होती है ना, उसके बारे में तो सोचना ही भूल जाते हैं।
1: हाँ, और इसी वजह से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि हमारे या तो शौक मारे जाते हैं, है ना, या कुछ चीज़ें हम कर नहीं पाते हैं और फिर आखिर में लगता है कि यार हमने कुछ ना खरीदा ना कुछ किया पूरे
0: बिल्कुल,
1: महीने और पैसा कहाँ चला गया, सारा खत्म हो गया।
0: महीने के अंत तक आते आते ये लगता है कि ये पैसा चला कहाँ गया
1: हाँ
0: सारा। तो बहनों, आज हम क्यों ना इसी बारे में बातचीत कर ले, कुछ ऐसे तरीके आपसे हम साझा करते हैं जिनसे हम अपने घर के बजट को बेहतर बना सकते हैं। छोटे छोटे ऐसे बचत के तरीके हैं ना जिनसे भविष्य के लिए आप आर्थिक रूप से मजबूत बन सकती हैं।
1: बिल्कुल। और वैसे भी बचत का मतलब सिर्फ पैसे ही जमा करना नहीं होता, जबकि आत्मविश्वास, है ना, और सुरक्षा महसूस करना भी होता है कि कल को हमारे पास ऐसा ना हो कि हम आज तो बचा रहे हैं,
0: बिल्कुल।
1: आज हम कम खर्चा कर रहे हैं, लेकिन अगर उस खर्चे को हमने अच्छे से प्लान नहीं किया कि वो जो बचत की है उसका क्या करेंगे,
0: हाँ
1: है ना,
0: हाँ
1: तो फिर भी कोई फायदा नहीं है।
0: हाँ अब देखिए दीक्षा, जब ऐसे हम शब्द सुनते हैं, ऐसी बातें सुनते हैं, तो एकदम से ये लगता है कि बजट बनाना जो है ना, ये तो बड़ा मुश्किल काम
1: बहुत
0: होता होगा,
1: ज़्यादा काम वैसे भी मुश्किल भी है गरिमा,
0: कि
1: पर
0: कैसे
1: फिर
0: करते
1: भी
0: होंगे। तो आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपकी भी ये समस्या हम हल कर देते हैं।
1: हाँ
0: एक आसान सा नियम है, 40, 30, 20 और 10, बस
1: बहुत
0: इसी को
1: आसान।
0: आपको याद रखना है। ये नियम क्या है, मान लीजिए आपके पास एक महीने में 30,000 रुपये आते हैं, तो आप इसे कुछ इस तरह से बांटें। जो 40% है आपके पैसों का, उसे आप ज़रूरी खर्चों के लिए, जैसे कि घर का राशन हो गया, किराया,
1: हाँ,
0: बिजली
1: जो
0: पानी का बिल,
1: रोज़मर्रा के
0: बच्चों
1: खर्चों
0: की
1: के लिए।
0: फीस, हाँ ये इन सब के लिए आप अलग से 40% रखते हैं। उसके बाद का 30% आपकी ज़रूरतों और लाइफस्टाइल के लिए, जैसे घूमना हो गया, कभी बाहर खाना खाने चले जाते हैं, या फिर छोटे
1: शॉपिंग
0: छोटे,
1: करना हो गया
0: हाँ,
1: हमारा, है ना।
0: शौक हो गए या मूवी देखने चले गए,
1: हाँ
0: इन चीज़ों के लिए आप 30% रख दें।
1: बिल्कुल।
0: फिर बचे जो 20%, उसे आप बचत और निवेश के लिए रखें, जैसे कि आपकी RD हो गई, SIP है, सेविंग्स अकाउंट है, या FD आप करवाते हैं, या फिर आपने कोई इमरजेंसी फंड बना के रखा है तो ये उसमें डालें।
1: बिल्कुल। और बहनों, जो आपके भविष्य के कुछ बड़े लक्ष्य भी होते हैं ना, जैसे आपके बच्चों की पढ़ाई, आप चाहते हैं कि वो 18 साल के बाद उनके लिए चाहिए पैसे, या इस तरीके की शादी करनी है, या कुछ आपको कोई बड़ी चीज़ खरीदनी है जिसके लिए आपको थोड़ा समय
0: हाँ
1: चाहिए
0: हाँ
1: बचत के लिए,
0: हाँ
1: उन खर्चों के लिए आप जो बचा हुआ 10% है आपकी सैलरी में से, उसको आप 10% को रख सकती हैं भविष्य के खर्चों के लिए, है ना, या फिर कभी अचानक से भी कुछ खर्चे आ जाते हैं
0: हाँ
1: तो उसमें भी ये काम आ सकते
0: जिनकी
1: हैं।
0: हम पहले प्लानिंग नहीं कर पाते, तो
1: हाँ,
0: उनके लिए
1: अचानक से
0: भी थोड़ा सा हिस्सा साइड में रख लेना
1: बिल्कुल
0: चाहिए।
1: बिल्कुल। और जब ये सब चीज़ें हम अपने दिमाग में रखते हैं, जब हम अपने पैसों को इस प्रतिशत से, 40, 30, 20, 10 से, या फिर हम गरिमा अपने ज़रूरत के हिसाब
0: हाँ
1: से, है ना,
0: बिल्कुल,
1: इसको
0: ज़रूरी
1: कर
0: नहीं है कि
1: सकते
0: इसी
1: हैं।
0: तरह से आपको अपना बजट बनाना है, लेकिन बस
1: ज़रूरी
0: बात,
1: है। हाँ
0: हाँ बात यही है कि जो अपनी कमाई है ना, आप उसको अगर हिस्सों में बांटकर खर्च करते हैं तो पैसों को संभालना काफ़ी आसान हो जाता
1: हाँ
0: है।
1: बिल्कुल। और हमें पता होता है कि हमने किस चीज़ के लिए कितने पैसे रखे हुए हैं, और उसी हिसाब से दिमाग हमारा फ्रेश है ना, उसमें भी
0: बिल्कुल,
1: टेंशन नहीं होती है कि कल को कुछ हो गया तो क्या करेंगे।
0: हाँ बिल्कुल,
1: और इसके अलावा बहनों, ये भी कोशिश कर सकते हैं हम कि इम्पल्सिव शॉपिंग से हमें बचना है, और आजकल वैसे भी ऑनलाइन शॉपिंग का समय है, आप फ़ोन और फ़ोन वैसे ही हाथ से छूटता नहीं, और
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: एड्स तो ऐड पे ऐड चलती रहती हैं, और कभी हम खोल कर देखते हैं तो कोई अच्छी चीज़ भी लग जाती है,
0: हाँ
1: तो घर बैठे भी हम इतना खर्चा

0: देते हैं, तो उस चीज़ से हमें बचने की कोशिश करनी है ना।
1: बिल्कुल। तो इसके लिए भी एक बहुत ही मज़ेदार सा तरीका है।
0: अच्छा
1: देखिए, जब आपको कभी भावनाओं में बहकर कोई महंगी सी चीज़ पसंद आ जाती है,
0: हाँ
1: तो उसे एकदम से ना खरीदें। आप उसे ऐड टू कार्ट करके रख दें, और कम से कम 30 दिन, चलो 30 ज़्यादा हो गए, 10 दिन तक तो आप रुक ही जाएं कि इंतज़ार करें। अगर 10 दिन के बाद भी आपको लगे कि वो चीज़ ज़रूरी है, तो आप उसे खरीद सकते हैं,
0: वाह,
1: वरना आप चुपचाप ये समझ लें कि आपने अपने पैसों को बचा लिया है।
0: ये बहुत सही बात बोली गरिमा तुमने। और वैसे ये चीज़ अगर ऑनलाइन की बजाय हम ऑफलाइन में भी, मान लो हम बाज़ार जा रहे
1: हाँ
0: हैं और
1: बिल्कुल
0: नज़दीक बाज़ार हमारे है, क्योंकि ज़्यादातर खर्चे हम कर देते हैं जब नज़दीक बाज़ार होता है ना, तो खर्चे और
1: हो
0: ज़्यादा
1: जाते
0: बढ़
1: हैं,
0: जाते हैं।
1: बिल्कुल हो
0: तो
1: जाते
0: फिर ऐसे में हम ये भी बहरो बाज़ार में भी कर सकते हैं कि कोई चीज़ पसंद आ गई, उसको रहने दिया, और उसके बाद फिर कुछ दिनों के बाद वापस अगर मन किया, उसी में ही अटका रहा मन, तो ले लिया, अदरवाइज़ उसको
1: छोड़
0: छोड़कर अपनी
1: सकते हैं।
0: बचत कर ली।
1: और
0: तो
1: ऐसे ही देखिए, आप छोटे छोटे और तरीके हैं, जैसे आप खर्चों को नोट कर सकते हैं, अपने
0: बहुत
1: किसी
0: ज़रूरी।
1: पेपर पे नोट कर सकती है। अगर पेपर ऐसा लगता है ना कि कहाँ से ढूंढ के लाएं, तो आप मोबाइल के नोट्स ऐप में ही आप करके रख सकती हैं। और छोटी छोटी आदतें जो होती है कि बिजली के उपकरणों को
0: बंद कर देना, हाँ,
1: फिजूल
0: फालतू में
1: इस्तेमाल ना
0: इस्तेमाल ना
1: करें,
0: करना,
1: मोबाइल और इंटरनेट के ऐसे प्लान चुने जो सच में आपके काम के हो। तो बस आपको ये
0: सही
1: याद
0: बात।
1: रखना है कि बचत का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको खुद की खुशियों को ही ख़त्म कर देना है।
0: जी,
1: इसका असली मतलब है समझदारी से खर्च करना है और अपने भविष्य को सुरक्षित
0: सुरक्षित
1: बनाना
0: बनाना है,
1: है।
0: बिल्कुल।

0: गरिमा देखो, आजकल का जो समय है ना, आजकल हर कोई चाहता है कि वो आर्थिक रूप से थोड़ा सा सबल हो, है ना। हम कोशिश करते रहते हैं कि बस कहीं से भी, हम चाहे थोड़े बहुत ही सही, बट हम कमाई की कोशिश करते हैं कि पैसा आ जाए, क्योंकि ज़रूरी है आर्थिक सबलता। आज के समय में बहुत ज़रूरी
1: बहुत
0: है ना,
1: जरूरी है।
0: खर्चे इतने बढ़ गए हैं और समय का पता ही नहीं है कुछ भी। अभी हम बचत की बात भी कर रहे थे बहनों से, तो उसके लिए पहले आमदनी चाहिए।
1: बिल्कुल। और देखिए, खासकर अगर हम बात करें महिलाओं के लिए, आर्थिक रूप से सबल होना बहुत ज़रूरी है। उन पे घर परिवार की जिम्मेदारी तो होती ही है। और देखिए, हमेशा वो घर से बाहर निकलकर काम करना इतना आसान भी नहीं होता। सब महिलाओं
0: हाँ
1: की ऐसी सिचुएशन नहीं होती कि वो बाहर जा
0: बिल्कुल।
1: करके ही कमा सकें।
0: और साथ में घर पर भी, बहनें भी जानती हैं, घर पर भी वैसे इतना काम होता है कि हम चाहें कि घर पे पूरा टाइम बैठकर कुछ अपने शौक को या आमदनी करें किसी चीज़ से, है ना, कोई व्यवसाय करें,
1: हाँ
0: तो
1: हाँ
0: वो भी बहुत बार नहीं हो पाता है कि हम अपना पूरा ही दिन किसी काम के लिए दे दें। तो ऐसे में बहनों, हम लोग ढूंढते हैं ऐसे ऑप्शंस की जहाँ से हमको कुछ ना कुछ कमाई हो जाए, और साथ में अपने हिसाब से हम
1: समय
0: अपना
1: भी
0: समय
1: दे,
0: दे के, है ना, हम उसमें काम कर सकें।
1: बिल्कुल। और साथ में देखिए, उस काम को करने में मजा आए, ये भी
0: हाँ,
1: बहुत
0: वो तो
1: जरूरी
0: बहुत
1: है,
0: ज़्यादा ज़रूरी
1: वरना वो
0: है,
1: काम कुछ दिनों बाद ही कम
0: सज़ा
1: हो
0: बन
1: जाएगा।
0: जाएगा। हाँ
1: और इसके साथ ही कम इन्वेस्टमेंट में जो मुनाफा भी ज्यादा दे
0: बिल्कुल
1: जाए।
0: बिल्कुल। तो बहनों, ये सभी चीज़ें अगर आपके दिमाग में भी हैं तो आपको ये बता देते हैं कि आजकल तो दुनिया में कमाई के ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, है ना, और बस ज़रूरत है खुद को अपडेट कर रखने की, और साथ में जो आसपास, हमारे आसपास में जो चीज़ें चाहिए, जो चलती हैं, उस चीज़ से भी अपडेट हमको रहना है। और उसके साथ साथ ये जानकारी हम रखेंगे अपने पास, तो ऑप्शंस आजकल बहुत ज़्यादा हैं।
1: बिल्कुल दीक्षा। और देखिए, अपडेट रहने के साथ साथ ना, अप टू डेट रहने के लिए भी बहुत सारी बहनें हमारी
0: तैयार
1: लगातार
0: रहती हैं। हाँ
1: कोशिश करती
0: बिल्कुल
1: रहती हैं।
0: बिल्कुल।
1: इसी अप टू डेट रहने, यानी कि बन संवर के रहने और खुद को अच्छे से रखने के क्षेत्र में किया गया करियर का चुनाव बहनों को कभी भी देखिए खाली नहीं बैठने देगा।
0: हाँ, ये तो है। और इसके साथ जो हमारे बहनों, स्किन है ना, स्किन केयर के बाद सबसे ज़्यादा जो महिलाएं आजकल खर्चा कर रही हैं, या मतलब सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्ट कर रही हैं, वो है अपने हाथों और
1: हाथों
0: पैरों
1: पैरों,
0: की
1: बिल्कुल।
0: खूबसूरती में,
1: हाँ
0: है ना।
1: हाँ
0: आपने
1: हाँ
0: नाम सुना ही होगा, मैनीक्योर पेडीक्योर तो बहुत ज़्यादा आजकल आजकल कॉलेज गोइंग गर्ल से लेकर ये शुरुआत हो चुकी है।
1: बिल्कुल। और देखिए, किसको अच्छे नहीं लगते कि हमारे
0: सुंदर
1: हाथ
0: नाखून
1: सुंदर
0: हो।
1: दिखे,
0: हाँ
1: हाथ
0: बिल्कुल,
1: नाखून सुंदर दिखे तो। और उसके लिए पार्लर भी बहुत सारी लड़कियां
0: बहुत
1: जाती हैं।
0: जाती
1: तो
0: हैं।
1: आप बहनों, नेल आर्ट के क्षेत्र की तरफ भी एक बार अपनी नज़र घुमा सकते हैं अगर आपका इंटरेस्ट है।
0: जी, नेल आर्ट जो है, ये ब्यूटी इंडस्ट्री में अब सबसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता हुआ एक करियर का ऑप्शन है, और इसमें आप बहनों सैलून में या स्पा या फिर फैशन इवेंट्स भी, है ना, हमारे आसपास हो।
1: हाँ
0: अगर
1: जी,
0: अब वही बात है कि हम किस जगह पर रहते हैं, उस जगह के हिसाब से अगर फैशन इवेंट्स होते हैं या शादी ब्याह में भी लोग जो हैं वो नेल आर्ट लड़कियाँ बहुत करवाती हैं, तो प्रोफेशनल नेल आर्टिस्ट की मांग इन सब चीज़ों में लगातार बढ़ रही है।
1: बिल्कुल। जो नेल टेक्नीशियन होते हैं ना, जिन्हें नेल आर्टिस्ट भी कहा जाता है, मैनिक्योर पेडिक्योर, नेल आर्ट, नेल एक्सटेंशन, जेल,
0: हाँ,
1: एक्रेलिक्स नेल, ऐसे
0: बहुत
1: जैसे
0: सारी
1: बहुत
0: चीज़ें।
1: सारी चीज़ें उन्हें आती हैं। और साथ ही साथ वो जो आपके खुद के नाखून हैं, उनकी देखभाल के भी विभिन्न तरीकों में प्रशिक्षित होती हैं।
0: जी, तो आप अगर नेल आर्टिस्ट बनना चाहती हैं, तो एक पेशेवर नेल आर्टिस्ट बनने के लिए आपको किसी मान्यता प्राप्त ब्यूटी स्कूल से नेल आर्ट कोर्स या फिर नेल टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा पूरा करना आवश्यक है ना। और आप इस चीज़ को अपने पास के, अगर अब आप अपनी जगह को देखिए,
1: हाँ
0: आप वहाँ
1: बिल्कुल।
0: से अपडेट रहिए, और आप अगर अपने आसपास आपके कोई सैलून, कोई ब्यूटी पार्लर ये कोर्स करवाता है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकती हैं। और एक बार आप नेल आर्टिस्ट का कोर्स कर लेंगी, तो उसके साथ साथ आपको नेल आर्ट के जो उपकरण है ना गरिमा, नाखूनों के आकार कैसे अलग अलग तरीके के होते
1: हाँ
0: हैं, और कौन सी प्रचलित आजकल फैशन में क्या है, शैलियाँ कौन सी प्रचलित हैं, और स्वच्छता संबंधी जो उसे नियम हैं उससे जुड़े हुए, उन सब का व्यवहारिक प्रशिक्षण भी आपको प्राप्त करना है साथ में।
1: बिल्कुल। यानी कि जैसे आपने कहा कि कहीं से आप कोर्स कर रही हैं, वहीं पे आप कुछ समय
0: सब
1: के
0: कुछ।
1: लिए
0: हाँ
1: साथ में ये प्रशिक्षण भी ले सकती हैं, उन्हें देख करके भी सीख सकती हैं। और एक बार अगर आपको ये सब कुछ आ गया, और वो कहते भी है ना कि अगर जब तक आपका इंटरेस्ट ना हो उस फील्ड में, आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आपका इंटरेस्ट है, आपको शौक है, तो एक बार आपने ये सब सीख लिया, उसके बाद तो आप अपना खुद

0: का नेल सैलून, ब्यूटी स्पा या फिर लग्जरी सैलून या वेलनेस सेंटर या फिर किसी के घर पे जाकर के भी अपनी
1: हाँ,
0: सर्विसेज दे सकती
1: मोबाइल है
0: है।
1: ना, मोबाइल नेल सर्विस भी आप शुरू कर सकते हो, और आजकल बहुत डिमांड में है। लोग मतलब घर से बाहर, जैसे हम शॉपिंग अब घर पे बैठ के करना पसंद करने लग गए हैं, चीज़ें हम सामान हम घर पे मंगाना
0: बिल्कुल
1: पसंद करने लग गए हैं, वैसे ही अब जो ब्यूटिशियन है वो भी अब हम मोबाइल, जो उनकी मोबाइल ब्यूटिशियन की सर्विसेज हैं उसको भी अब लेना शुरू कर दिया है, और लोग खुश रहते हैं कि घर पे उन्हें अपने उसमें
0: अपने
1: बैठे
0: आप ही
1: रहें
0: हाँ
1: और आर्टिस्ट जो है वो अपना काम करता
0: काम
1: रहे।
0: करते बिल्कुल। और दीक्षा देखिए, कोर्स की हमने बात की थी ना, तो कोर्स से नेल आर्ट की जो बेसिक समझ है वो तो आती है, पर
1: हाँ
0: जो उसकी बारीकियां हैं ना वो काम की लगातार प्रैक्टिस से ही आती
1: बिल्कुल
0: है।
1: बिल्कुल
0: और एक जो एक्सपर्ट बनकर आप नेल आर्ट स्टूडियो में ट्रेनिंग दे भी सकती हैं, एक बार खुद सीख जाएं तो आप औरों को भी सशक्त कर सकते
1: हाँ,
0: हैं।
1: कहते हैं ना प्रैक्टिस से ही एक आदमी परफेक्ट बनता है, तो वो चीज़ें इससे भी सभी फील्ड में हर विकल्प ऐसे ही चलते हैं। और इसीलिए बहनों, जो हुनरमंद महिलाएं हैं और अपनी प्रतिभा का इस्तेमाल करके घर बैठे अच्छी खासी कमाई कर सकती हैं वैसे भी, तो आप भी इस हुनर को सीखने की कोशिश करिए अगर आपको इसमें शौक है तो,
0: बिल्कुल
1: है ना।

0: देखिए दीक्षा, गर्मी का जो मौसम है वो अपने पूरे शबाब पे है।
1: हम्म,
0: सूरज आजकल आग बरसा रहा है, और ऐसे में देखिए हम सभी का मन करता है ना कि कुछ ठंडा ठंडा खाएं या कुछ ठंडा ठंडा ही पिएं।
1: बिल्कुल। और कभी कभी ठंडक पाने के लिए हम कोल्ड ड्रिंक्स उठा लेते हैं ना, कभी कभी क्या, वैसे ज़्यादातर हमारा मन जब तीखी तेज़ चिलचिलाती धूप
0: कहीं
1: पड़
0: से
1: रही
0: आते
1: होती है
0: हैं।
1: तो मन करता है कि कुछ ठंडा सा मिल जाता खाने के लिए। तो ऐसे में कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो हमारे शरीर के लिए ठीक रहती हैं, जो शरीर को अच्छे से अंदर से ठंडक देती है, लेकिन कुछ चीज़ें जो हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स ले लेते हैं, है ना, आइसक्रीम खा लेते
0: आइसक्रीम,
1: हैं
0: बिल्कुल।
1: फटाफट से, तो हमें लगता तो है कि जीभ ठंडी हुई है हमारी और हमें लगता है कि मन ठीक हो गया, ठंडा हो गया,
0: हाँ,
1: बट वो थोड़ी देर के बाद वो मिठास जो मुँह में घुल जाती है या वो जो ठंडक है ना वो गायब हो जाती है, उल्टा और ज़्यादा मीठा, और ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक, और ज़्यादा
0: बिल्कुल
1: आइसक्रीम खाने का मन करता है।
0: बिल्कुल। ये ना सिर्फ मन को तसल्ली देने के लिए कि हमने कुछ ठंडा खा लिया है। गर्मियों में जो हमें सबसे पहली चीज़ जो याद आती है वो कोल्ड ड्रिंक ही तो है। एक
1: हाँ,
0: घूंट लेते ही लगता है कि बस अब तो सारी
1: गर्मी
0: जो
1: बिल्कुल
0: है वो
1: गायब हो गई।
0: गायब हो गई है। लेकिन एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि ये जो ठंडक है ये ज़्यादा देर तक टिकती नहीं है, और कई बार इसमें क्योंकि शुगर बहुत ज़्यादा होता है, इसका कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, तो ये तो उल्टा हमारे शरीर को और
1: हाँ,
0: ज़्यादा
1: नुकसान
0: डिहाइड्रेट
1: करती
0: कर
1: है।
0: सकती है। और यही बात आइसक्रीम पर भी लागू होती है। उसे खाकर कुछ पल के लिए अच्छा ज़रूर लगता है, मगर जब शरीर उसमें मौजूद जो शुगर और फैट को पचाता है तो अंदर ही अंदर से और ज़्यादा गर्मी पैदा हो सकती
1: बिल्कुल बिल्कुल। और इसका मतलब है ना, ये कतई नहीं है कि आप लोग
0: है।
1: अब आइसक्रीम खाना ही छोड़ दें या आप कम खाएं या आप ना खाएं उसको। गर्मियों में अब भाई थोड़ा मस्ती भी चलती है ना,
0: बिल्कुल,
1: लेकिन कोशिश ये रहनी चाहिए गर्मी हमारी कि संतुलन बना रहे, है ना।
0: हाँ, बिल्कुल। और देखिए अब बहनें सोच रही होंगी कि अगर ये सब नहीं तो फिर
1: तो
0: क्या,
1: कहाँ से,
0: असली
1: हाँ
0: ठंडक
1: खाएं क्या।
0: मिलेगी कहाँ से? तो बहनों इसका जवाब भी ढूंढने के लिए आपको बहुत दूर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे घर की रसोइयों में ही इसके सारे जवाब छुपे हैं।
1: जैसे कि दही, दही आप बनाएं, है ना,
0: बिल्कुल।
1: दही जमाएं, उसकी लस्सी बना लें दही की, मक्खन भी आएगा। जैसे गर्मियों में हम घी की बजाय मक्खन खा सकते हैं, मक्खन भी अंदर से ठंडक देता है हमको।
0: बिल्कुल,
1: और छा भी, वैसे गर्मियों में जो लस्सी है जिसको हम पहाड़ी में
0: हाँ
1: छा कहते हैं ना,
0: हाँ
1: छाछ
0: हाँ
1: कहते हैं, तो लस्सी में जब हम थोड़ा सा भुना जीरा और पुदीने की, वो पुदीने वाली जो लस्सी
0: क्या
1: है उसका
0: बात
1: स्वाद ही
0: है।
1: कुछ और है। और ये साथ में टेस्टी लगने के साथ साथ हमारे शरीर को हाइड्रेट भी रखता है बहुत देर तक।
0: और अगर आसानी से उपलब्ध हो तो नारियल पानी पीना गर्मी के
1: हाँ, वो
0: मौसम
1: भी
0: में
1: अच्छा रहता है।
0: बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। ये नेचुरल एनर्जी ड्रिंक से किसी से कम नहीं है। इसमें जो मौजूद इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं ना वो शरीर को तरोताज़ा रखने में भी मदद कर सकते हैं।
1: बिल्कुल बहनों, और गर्मियों में खासकर, क्योंकि आजकल बहुत चिलचिलाती धूप पड़ रही है तो डिहाइड्रेटेड हमारा शरीर बहुत जल्दी हो जाता है, तो इलेक्ट्रोलाइट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, है ना। और ऐसे ही पुदीने की चटनी भी बहुत ज़्यादा, वाह, गाँव में तो खासकर पुदीने
0: बिल्कुल,
1: की चटनी गर्मियों की एक खास निशानी है, बनेगी
0: हाँ
1: ही बनेगी। ये रिफ्रेशिंग भी महसूस करवाती है, और साथ में आप चाहें तो गर्मियों में आप नींबू पानी को भी, है ना,
0: नींबू
1: ड्रिंक
0: पानी
1: में,
0: में या फिर छाछ में भी इसे मिला
1: हाँ
0: सकते हैं पुदीने को।
1: बिल्कुल। और इसके अलावा जो आजकल के मौसमी फल हैं वो भी काफ़ी हमारे लिए अच्छे हैं गर्मियों में, तो उनका सेवन हमें ज़रूर करना चाहिए, जैसे तरबूज हो गया, खरबूजा, खीरा।
0: हाँ, ये हमें तरोताज़ा तो रखते ही है, साथ ही साथ अंदर से हाइड्रेट रखते हैं।
1: हाँ, अगर मैं आम पन्ना भी आजकल, है ना, आप कितना, उससे
0: बिल्कुल,
1: भी आपको
0: उसको भी
1: ठंडक
0: आप
1: मिलेगी।
0: इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहनों इस गर्मी में खुद का ध्यान रखें, खूब पानी पीजिए, घर के बने देसी ड्रिंक्स अपनाएं, और याद रखें कि असली ठंडक सिर्फ बर्फ में नहीं है बल्कि सही खान पान और अच्छी आदतों में है।
1: बिल्कुल। और इसी के साथ साथ असली ठंडक जो है वो तब भी पड़ती है जब हम कुछ अच्छा सा महसूस करते हैं, है ना, और
0: बिल्कुल
1: जो गीतों से हमें अच्छा महसूस होता है वो भी बड़ी शांति दे जाता है मन को।
0: जी
1: तो बहनों को सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।
0: जी

0: तो गरिमा देखो, हमारी मन की खुशी के लिए, मन की तसल्ली के लिए रिश्तों में मिठास होना ज़रूरी है।
1: बिल्कुल
0: तो हम यही कामना करते हैं कि बहनों आपके हर रिश्ते में खूब मिठास रहे, आपका जीवन सुख और शांति से व्यतीत आप करें। और अब हमारे घड़ी की सुइयां भी इशारा कर रही हैं कि कार्यक्रम को संपन्न करने का समय हो चला है।
1: दीजिए इजाज़त,
0: नमस्कार।

0: आकाशवाणी शिमला से बोल रहे हैं। 1 बजने को है। समाचारों के लिए आइए अब आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली स्टूडियो।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 19वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रोजगार मेले को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत दुनिया के विभिन्न देशों के साथ भी साझेदारी कर रहा है, जिसका उद्देश्य युवाओं को अवसर, रोजगार और वैश्विक अनुभव देना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया का भरोसेमंद आपूर्ति श्रृंखला साझेदार बन रहा है। उन्होंने कहा कि दुनिया भारत के विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। श्री मोदी ने कहा कि हर भारतीय 2047 तक देश को विकसित भारत बनाने के संकल्प के साथ काम कर रहा है।
2: आज हर भारतीय एक बड़े संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। ये संकल्प 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आज देश अलग अलग सेक्टर्स में निवेश कर रहा है और इस निवेश से देश के युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर बन रहे हैं, जिसे आज भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की पूरी सप्लाई चेन तैयार की जा रही है।
1: केरलम में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा पर्यटन राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने आज तिरुवनंतपुरम में रोजगार मेले का उद्घाटन किया। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया रोजगार मेला केवल एक भर्ती अभियान से कहीं अधिक है और इसका उद्देश्य युवा शक्ति को राष्ट्र शक्ति में बदलना है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की है कि राज्य में अगले 5 वर्ष में 1,00,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। शिक्षा विभाग के उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे हर साल कम से कम 20,000 शिक्षकों की भर्ती सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए अब शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अधिसूचना हर साल जुलाई महीने में जारी की जाएगी। बिहार सरकार ने 21 जून को नीट यूजी पुनः परीक्षा में शामिल होने वाले राज्य के सभी छात्रों के लिए सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी। आंध्र प्रदेश के श्री सत्यसाई जिले में आज राष्ट्रीय सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स अकादमी में भारतीय राजस्व सेवा के 76वें बेंच के अधिकारियों की पासिंग आउट परेड आयोजित की गई। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर श्री चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार ने युवाओं को लगभग 4 करोड़ रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो आज दोपहर नई दिल्ली पहुंचे। वे मंगलवार को नई दिल्ली में होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। श्री रूबियो आज सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री कल विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। इंडियन ऑयल ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति स्थिर है और ईंधन की कोई कमी नहीं है। इंडियन ऑयल ने एक बयान में कहा कि कुछ खुदरा दुकानों में मांग आपूर्ति असंतुलन और चुनिंदा क्षेत्रों में मांग बढ़ने के कारण अस्थिरता की खबर है। ऐसे मामले देश भर में 42,000 से अधिक खुदरा दुकानों के इंडियन ऑयल के नेटवर्क में से कुछ खुदरा दुकानों तक ही सीमित हैं। इंडियन ऑयल ने बताया कि 1 मई से 22 मई की अवधि के दौरान कंपनी ने ईंधन की बिक्री में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है। इस दौरान पेट्रोल की बिक्री में 14% जबकि डीजल की बिक्री में करीब 18% की वृद्धि हुई है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज वृद्धि हुई। पिछले 10 दिन में तेल के मूल्यों में तीसरी बार वृद्धि हुई है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87 पैसे बढ़कर 99.51 रुपये प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल का मूल्य 51 पैसे बढ़कर 92.49 रुपये प्रति लीटर हो गया है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज सीएनजी की कीमत में 1 रुपये की वृद्धि की है। इस वृद्धि के बाद राजधानी में 1 किलोग्राम सीएनजी की नई दर 81.09 रुपये हो गई है। आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ में शाम 7:30 बजे

सुबह हो या शाम, आपके घर आंगन में महकती एक आवाज 103.7 मेगाहर्ट्ज एफएम शिमला। मस्त चुनो, मस्त सुनो, जानकारी और मनोरंजन के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं FM शिमला। आज के इस हसीन और ख़ूबसूरत सफ़र में हम और आप हैं साथ साथ, जहां पर म्यूज़िक मस्ती का ये हसीन और ख़ूबसूरत सिलसिला आप सभी के साथ यूं ही चल रहा है। तो आइए आपके साथ हम इस ब्यूटीफुल म्यूज़िकल जर्नी में आगे चलते हुए कुछ बेहतरीन सुरीले नगमे लेकर आए हैं आपके लिए म्यूज़िक मस्ती कार्यक्रम में।

0: बाजीगर फिल्म का गीत अभी आपने सुना कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में।
1: हिमाचल में फिर से सज गया है लोकतंत्र का महापर्व, पंचायत चुनाव 2026।
2: 26, 28 और 30 मई को तीन चरणों में होने जा रहे हैं पंचायत इलेक्शंस, जहां आपकी एक वोट तय करेगी आपके गांव का कल।
1: सड़क, पानी, सफाई, रोजगार और गांव के विकास से जुड़े फैसलों में आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है।
2: इस बार बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए और चुनिएगा ईमानदार, योग्य और जिम्मेदार।

0: और प्रतिनिधि हिमाचल पंचायत इलेक्शंस 2026 मजबूत पंचायत मजबूत हिमाचल।
1: विनोद राठौर और अलका याग्निक की आवाजों में लीजिए सुनिए दीवाना फिल्म का ही ये प्यारा सा गीत।

0: गांव की पहचान होती है उसकी मजबूत पंचायत से, और पंचायत मजबूत बनती है आपके एक वोट से।
1: क्योंकि ईमानदारी और बिना किसी के प्रभाव में आए दिए गए आपके वोट ही तय होते हैं गांव, और बनती है सड़क, पानी, स्वच्छता और रोजगार संबंधी नीतियाँ।
0: इसीलिए 26 मई, 28 मई और 30 मई को होने वाले पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर अपनी भागीदारी निभाएं।
1: अपने परिवार और गांव वालों को भी जागरूक बनाएं और 100% मतदान के संकल्प को हासिल करने का लक्ष्य बनाएं।
0: राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी।

आप सुन रहे हैं एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर और आनंद ले रहे हैं म्यूजिक मस्ती कार्यक्रम का। अब हम आपको सुनवा रहे हैं सुहाग फिल्म का गीत, जिसे गाया है कुमार सानू, अलका याग्निक और उदित नारायण ने।

0: चुनाव सिर्फ एक शब्द नहीं, ये है सच्चे लोकतंत्र की नींव, और मतदान है एक जागरूक नागरिक की पहचान, जिसे इस्तेमाल कर वो तय करते हैं अपने क्षेत्र, राज्य और देश की दशा व दिशा।
1: तो आइए अपनी जिम्मेदारी निभाएं, आगामी पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़ कर भाग लें और गांव के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें।
0: आपका एक एक वोट तय करेगा पंचायत का भविष्य। तो निर्धारित तिथि को अपने नजदीकी मतदान केंद्र पर जाकर सोच समझ कर और बिना किसी प्रभाव के मतदान जरूर करें, क्योंकि ये सिर्फ आपकी जिम्मेदारी ही नहीं अधिकार है।
1: राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

0: कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में अभी आपने सुना जीत फिल्म का गीत।
1: आपका गांव है आपका गर्व, इसको विकसित बनाने के लिए आइए मिलके मनाएं लोकतंत्र का पर्व।
2: हो चुकी है देवभूमि हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव की घोषणा। ये मतदान 3 चरणों में 26, 28 और 30 मई को होगा। ऐसे में आए एक सच्चा नागरिक बनकर मिलकर निभाएं जिम्मेदारी और भारी संख्या में मतदान देकर दिखाएं अपनी भागीदारी।
1: आपका हर एक कीमती वोट आपके गांव की दशा और दिशा तय करेगा, तो अपने मताधिकार का प्रयोग करना ना भूलें। राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। हमारा गांव है हमारी पहचान, हमारा गांव है हमारा अभिमान, आइए मिलकर दें इसके विकास में अपना योगदान।
2: हम सब ने ठाना है कि 100% मतदान के लक्ष्य को पाना है।
1: पंचायत चुनाव आ रहे हैं, जहां आपका हर ईमानदारी से दिया गया वोट तय करता है गांव की दशा और दिशा, साथ ही बनता है गांव के विकास का आधार।
2: तो 26, 28 और 30 मई को होने वाले पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले और अपने परिवार और आस पास के हर वोटर को मतदान के लिए प्रेरित करे।
1: राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी।

जसविंदर नरूला की आवाज़ में ये है दिल का रिश्ता फिल्म का गीत। आप सुन रहे हैं एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज पर और आनंद ले रहे हैं म्यूजिक मस्ती कार्यक्रम का। सुनते रहिए और बस यूं ही मुस्कुराते रहिए।

0: हिमाचल के युवाओं, अब सिर्फ सोशल मीडिया पर ओपिनियन देने का नहीं, वोट देने का भी वक्त आ गया है।
1: इस पंचायत इलेक्शन में 50 लाख से ज्यादा वोटर्स अपने मत का अधिकार इस्तेमाल करेंगे और हजारों फर्स्ट टाइम वोटर्स भी बनेंगे इस बदलाव का हिस्सा। 26 मई, 28 मई और 30 मई, याद रखिए ये तारीखें।
0: आपकी एक वोट आपके गाँव की सोच, विकास और लीडरशिप को तय करेगी। तो निकलिए घर से और बनिए जिम्मेदार नागरिक। पंचायत चुनाव 2026, वोट जरूर करें।
2: कौन है जो सपनों में आया, इस फिल्म का गीत आइए सुनते हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में।

वेल, इसी लवली सॉन्ग के साथ म्यूजिक मस्ती कार्यक्रम में आज बस इतना ही। 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं एफएम शिमला। दोपहर के 2 बज चुके हैं और एफएम शिमला पर ये समय है आपके अपने सबरंग कार्यक्रम का।

दर्द रात हम भी हैं साथ साथ, दूरियां अब नहीं

0: देवोजीत के गाए इसी ब्यूटीफुल म्यूजिकल नंबर के साथ सबरंग कार्यक्रम में आज बस इतना ही। 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रही हैं एफएम शिमला। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 2:15 होने को हैं। अब आप सुनेंगे दोपहर हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवली निकम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न सरकारी विभागों के 51,000 से अधिक नवनियुक्त कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। कहा, भारत युवाओं को अवसर, रोजगार और वैश्विक अनुभव प्रदान करने के लिए विश्व के विभिन्न देशों के

0: साझेदारी कर रहा है। बिहार सरकार अगले 5 वर्ष में राज्य में 1 लाख शिक्षकों की भर्ती करेगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि 1 दिन और बढ़ाकर कल तक की। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो में इबोला के बुंडीबुग्यो स्ट्रेन से उत्पन्न स्वास्थ्य खतरे को उच्चतम किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकारी नौकरियां नागरिकों के जीवन को बेहतर और आसान बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए ये बातें कहीं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश ने अपने कर्मचारियों पर भरोसा जताया है और अब ये उनकी जिम्मेदारी है कि वे अपनी लगन, आचरण और रोजमर्रा के कामों से उस भरोसे का मान रखें और उसे मजबूत करें। श्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत के विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है।
1: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि हर भारतीय देश को विकसित भारत बनाने के संकल्प के साथ काम कर रहा है।
1: आज हर भारतीय एक बड़े संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। ये संकल्प 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आज देश अलग अलग सेक्टर्स में निवेश कर रहा है और इस निवेश से देश के युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर बन रहे हैं, जिसे आज भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की पूरी सप्लाई चेन तैयार की जा रही है।
0: श्री मोदी ने नवनियुक्त कर्मचारियों को आईगॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने के लिए भी प्रोत्साहित किया।
1: कर्मयोगी प्रारंभ जैसे मॉड्यूल से आपको अपनी जिम्मेदारियां समझने में बहुत सहूलियत होगी। मेरा आपसे आग्रह है कि इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। आज भारत का युवा दुनिया के हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रहा है। यही स्पिरिट, यही ऊर्जा पब्लिक सर्विस में भी दिखाई देनी चाहिए। विकसित भारत ऐसे ही युवाओं के प्रयास से बनेगा जो अपने काम को देश सेवा का माध्यम मानते हैं।
0: 19वें रोजगार मेले में सरकार के अलग अलग विभागों और संगठनों में नवनियुक्त 51,000 से भी ज्यादा युवाओं को आज नियुक्ति पत्र सौंपे गए। संसदीय कार्य सूचना तथा प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा है कि सरकार 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। चेन्नई स्थित ICF में आयोजित रोजगार मेले को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश बुनियादी ढांचे, डिजिटलीकरण, रोजगार के अवसरों और व्यापार में सुगमता के क्षेत्र में तीव्र प्रगति कर रहा है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि रोजगार मेले के परिणाम स्वरूप पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से नियुक्तियों में वृद्धि हुई है। नई दिल्ली में 19वें रोजगार मेले में डॉक्टर सिंह ने कहा कि इस पहल ने समय सीमा का सख्ती से पालन किया है, जिससे युवाओं में आत्मविश्वास बढ़ा है और योग्यता आधारित चयन प्रक्रिया सुनिश्चित हुई है। उन्होंने मिशन कर्मयोगी प्रारंभ के विकल्प के बारे में भी बताया।
2: मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत आई गॉट प्लेटफॉर्म पर अभी तक 1,64,00,000 उम्मीदवार रजिस्टर हो चुके हैं और 4,776 से अधिक कोर्सेज उपलब्ध हैं। आज भी आपके द्वारा नियुक्ति पत्र प्राप्त करते ही प्रत्येक उम्मीदवार को साथ ही साथ मिशन कर्मयोगी प्रारंभ का विकल्प भी प्रदान कर दिया जाएगा।
0: देशव्यापी रोजगार मेला कार्यक्रम के अंतर्गत आज पश्चिम बंगाल में 3 जगहों पर नए भर्ती हुए उम्मीदवारों को 185 नियुक्ति पत्र सौंपे गए। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मुख्य अतिथि के तौर पर इसमें भाग लिया। केरल में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा पर्यटन

0: राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने आज तिरुवनंतपुरम में रोजगार मेले का उद्घाटन किया। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया रोजगार मेला केवल एक भर्ती अभियान से कहीं अधिक है और इसका उद्देश्य युवा शक्ति को राष्ट्र शक्ति में बदलना है। पंजाब में आज रेल कोच फैक्ट्री RCF कपूरथला और पटियाला लोकोमोटिव वर्क्स पटियाला सहित दो स्थानों पर रोजगार मेला आयोजित किया गया। यहां 281 नए लाभार्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी ने कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कहा कि रोजगार मेला एक सशक्त राष्ट्रीय संस्था बन गया है जो पारदर्शिता और योग्यता आधारित समयबद्ध भर्ती सुनिश्चित करता है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की है कि राज्य में अगले 5 वर्ष में 1,00,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। शिक्षा विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे हर साल कम से कम 20,000 शिक्षकों की भर्ती सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए अब शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अधिसूचना हर साल जुलाई महीने में जारी की जाएगी। बिहार सरकार ने 21 जून को नीट UG पुनः परीक्षा में शामिल होने वाले राज्य के सभी छात्रों के लिए सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि एक और दिन बढ़ाकर कल तक कर दी है। CBSE ने यह निर्णय वेबसाइट पर अत्यधिक आवेदन और तकनीकी व्यवधान के बाद लिया है, जिससे वेबसाइट बाधित हो रही थी। बोर्ड ने बताया कि विद्यार्थियों को उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी मिलने के बाद पुनर्मूल्यांकन का आवेदन करने के लिए 2 दिन का समय मिलेगा। CBSE ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वे इस विस्तारित समय सीमा का सदुपयोग करें और प्रक्रिया को पूरा करें। आंध्र प्रदेश के श्री सत्यसाई जिले में आज राष्ट्रीय सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स अकादमी में भारतीय राजस्व सेवा के 76वें बैच के अधिकारियों की पासिंग आउट परेड आयोजित की गई। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर श्री चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार ने युवाओं को लगभग 4 करोड़ रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं को राष्ट्र के विकास में सक्रिय भागीदार बनना चाहिए। श्री चौधरी ने कहा कि भारत एक विकसित राष्ट्र के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत 2047 तक एक विकसित भारत के निर्माण के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है और एक विकसित आत्मनिर्भर तकनीकी रूप से उन्नत और विश्व स्तर पर सम्मानित राष्ट्र को बनते हुए हम सब देख रहे हैं।
0: राजस्थान के जयपुर, जोधपुर, अजमेर और बीकानेर में आज रोजगार मेले का आयोजन किया गया। यहां 1,100 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय रोजगार मेले में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव शामिल हुए। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने कहा कि सरकार पूरे देश में युवाओं को पारदर्शी और समयबद्ध रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।
2: रेलवे में आज करीब करीब 1,60,778 भर्तियों पे काम चल रहा है। पहले 8-8, 10-10 साल में एक बार भर्ती निकलती थी या 4-4, 5-5 साल में एक बार भर्ती निकलती थी। कांग्रेस का वो युग था। मोदी जी ने जब जिम्मेदारी ली तो उस समय को कंप्रेस किया।
0: बॉम्बे उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र प्रशासन को जनगणना कार्य के लिए निजी गैर सहायता प्राप्त और अल्पसंख्यक विद्यालयों के लिए शिक्षकों को तैनात करने से रोक दिया है। न्यायमूर्ति गौतम अखंड और न्यायमूर्ति संदेश पाटिल की खंडपीठ ने पाया कि जनगणना अधिनियम और नियमों के अंतर्गत शिक्षकों पर जनगणना संबंधी कार्य करने का कोई दायित्व नहीं है। न्यायालय ने राज्य भर में 500 से अधिक विद्यालयों का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्यालय संघों को अंतरिम राहत प्रदान की है। इंडियन ऑयल ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति स्थिर है और ईंधन की कोई कमी नहीं है। इंडियन ऑयल ने एक बयान में कहा कि कुछ खुदरा दुकानों पर मांग आपूर्ति असंतुलन और चुनिंदा क्षेत्रों में मांग बढ़ने के कारण अस्थिरता की खबर है। ऐसे मामले देश भर में 42,000 से अधिक खुदरा दुकानों के इंडियन ऑयल के नेटवर्क में से कुछ खुदरा दुकानों तक ही सीमित हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज वृद्धि हुई है। पिछले 10 दिन में तेल के मूल्यों में ये तीसरी बार वृद्धि हुई है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87 पैसे बढ़कर 99.51 रुपये प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल का मूल्य 91 पैसे बढ़कर 92.49 रुपये प्रति लीटर हो गया है।

0: इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज सीएनजी की कीमत में 1 रुपये की वृद्धि की है। इस वृद्धि के बाद राजधानी में 1 किलोग्राम सीएनजी की नई दर 81.09 रुपये हो गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो आज दोपहर नई दिल्ली पहुंचे। वे मंगलवार को नई दिल्ली में होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। श्री रूबियो आज सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री कल विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। उत्तरी चीन के शानकसी प्रांत में किनयुआन काउंटी में एक कोयला खदान में गैस विस्फोट के कारण मरने वालों की संख्या 82 हो गई है। ये गैस विस्फोट कल सुबह ल्यूशेन्यू कोयला खदान में हुआ। बचाव कार्य जारी है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने व्यापक बचाव अभियान और घायलों के उपचार के निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने दुर्घटना के बाद की स्थिति से निपटने के लिए उचित कदम उठाने का आह्वान भी किया है। बांग्लादेश में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ बढ़ती हिंसक घटनाओं पर यूनिसेफ ने गहरी चिंता जताई है। सुरक्षा प्रणालियों को मजबूत करने और पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए तत्काल कदम उठाने का आह्वान किया गया है। कल जारी एक बयान में बांग्लादेश में यूनिसेफ के प्रतिनिधि राणा फ्लावर्स ने कहा कि संगठन उन स्थानों पर बच्चों के साथ दुष्कर्म और हत्या के हालिया मामलों से बेहद आहत और दुखी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो में इबोला बुंजीबुगियो स्ट्रेन से उत्पन्न सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरे को राष्ट्रीय स्तर पर उच्चतम कर दिया है। एक रिपोर्ट।
1: विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक ट्रेडोस अदनोम ग्रिबियासिस ने कहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर यह खतरा बहुत उच्च, क्षेत्रीय स्तर पर उच्च और वैश्विक स्तर पर निम्न है। उन्होंने बताया कि इस संक्रमण के अब तक 82 मामले सामने आए हैं और 7 लोगों की मौत हो चुकी है। संगठन ने पहले इस प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया था। साथ ही ये स्पष्ट किया था कि ये महामारी के स्तर पर नहीं है। इबोला एक वायरल बीमारी है जो चमगादड़ों से फैलती है और संक्रमित व्यक्तियों या जानवरों के शरीर के तरल पदार्थों या दूषित वस्तुओं के सीधे संपर्क से फैलती है। दुर्लभ मामलों में हवा के माध्यम से भी ये बीमारी फैल सकती है। इसका ऊष्मायान काल 2 से 21 दिनों तक होता है, जिसके शुरुआती लक्षणों में बुखार, थकान, मांसपेशियों में दर्द और गले में खराश शामिल है। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री नवीन के नए विचार, जोशीले नेतृत्व और संगठन के काम तथा प्रशासन दोनों की गहरी समझ ने उन्हें हर जगह बहुत सम्मान दिलाया है। आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकाना स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। कल रात सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रन से हराया था। मौसम विभाग ने कल तक पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू की स्थिति का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली का आज अधिकतम तापमान 41 से 43 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न सरकारी विभागों के 51,000 से अधिक चयनित कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। कहा, भारत युवाओं को अवसर, रोजगार और वैश्विक अनुभव प्रदान करने के लिए विश्व के विभिन्न देशों के साथ साझेदारी कर रहा है। बिहार सरकार अगले 5 वर्ष में राज्य में 1 लाख शिक्षकों की भर्ती करेगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि 1 दिन और बढ़ाकर कल की। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबिया आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो में इबोला के बुंजीबुगियो स्ट्रेन से उत्पन्न स्वास्थ्य खतरे को उच्चतम किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं एफएम शिमला 103.7 MHz पर। इस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 2:30 हुए हैं और एफएम शिमला पर हम लेकर आ गए हैं आपके लिए पहाड़ी लोकगीतों का कार्यक्रम शिखरों के स्वर। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं सुनीता देवी के गाए इस लोकगीत के साथ।

0: हिमाचल में फिर से सज गया है लोकतंत्र का महापर्व पंचायत चुनाव 2026।
1: 26, 28 और 30 मई को तीन चरणों में होने जा रहे हैं पंचायत इलेक्शंस, जहां आपकी एक वोट तय करेगी आपके गांव का कल।
0: सड़क, पानी, सफाई, रोजगार और गांव के विकास से जुड़े फैसलों में आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है।
1: इस बार बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए और चुनिएगा ईमानदार, योग्य और जिम्मेदार प्रतिनिधि। हिमाचल पंचायत इलेक्शंस 2026, मजबूत पंचायत, मजबूत हिमाचल।
2: हेतराम कैथा की आवाज में आइए सुनते हैं कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति।

0: लोभा राम गुंजेटा की आवाज में अभी आपने सुना ये लोकगीत।
1: गांव की पहचान होती है उसकी मजबूत पंचायत से, और पंचायत मजबूत बनती है आपके एक वोट से।
2: क्योंकि ईमानदारी और बिना किसी के प्रभाव में आए दिए गए आपके वोट ही तय होते हैं गांव और बनती है सड़क, पानी, स्वच्छता और रोजगार संबंधी नीतियाँ।
1: इसीलिए 26 मई, 28 मई और 30 मई को होने वाले पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर अपनी भागीदारी निभाएं।
2: अपने परिवार और गांव वालों को भी जागरूक बनाएं और 100% मतदान के संकल्प को हासिल करने का

0: साक्ष्य बनाए।
1: राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी।
2: आप सुन रहे हैं एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज पर और आनंद ले रहे हैं पहाड़ी लोकगीतों के कार्यक्रम शिखरों के स्वर का। तो अगला गीत हम आपके रेडियो सेट्स पर भेज रहे हैं मीनाक्षी देवी की आवाज़ में। ये है कार्यक्रम का अगला लोकगीत।

जोगिंदर सिंह अभी और इस साथी की आवाजों में अभी आपने सुना ये लोकगीत। कार्यक्रम के अंत में लीजिए सुनिए मीराबाई और साथी को।

0: इसी लोकगीत के साथ शिखरों के स्वर कार्यक्रम में आज बस इतना ही। 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं FM शिमला। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।
1: 387.6 मीटर और FM बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी शिमला से बोल रहे हैं। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों पर भी सुना जा सकता है और DTH सेवा पर भी ये समाचार उपलब्ध रहेंगे।
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकारी नौकरियां नागरिकों के जीवन को बेहतर और आसान बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश ने अपने कर्मयोगियों पर भरोसा जताया और कहा कि अब ये उनकी जिम्मेदारी है कि वे अपनी लगन, आचरण और रोजमर्रा के कामों से उस भरोसे का मान रखें और उसे और मजबूत करें।
3: कर्मयोगी प्रारंभ जैसे मॉड्यूल से आपको अपनी जिम्मेदारियां समझने में बहुत सहूलियत होगी। मेरा आपसे आग्रह है कि इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। आज भारत का युवा दुनिया के हर क्षेत्र

0: क्षेत्र में अपनी पहचान बना रहा है। यही स्पिरिट, यही ऊर्जा पब्लिक सर्विस में भी दिखाई देनी चाहिए। विकसित भारत ऐसे ही युवाओं के प्रयास से बनेगा जो अपने काम को देश सेवा का माध्यम मानते हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विश्व के कई देशों के साथ साझेदारी भी कर रहा है, जिसका मकसद देश के युवाओं को अवसर, रोजगार और वैश्विक अनुभव दिलाना है। आज 19वें रोजगार मेले में सरकार के अलग अलग विभागों और संगठनों में चयनित 51,000 से भी ज़्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे गए। ये रोजगार मेला पूरे देश में 47 अलग अलग जगहों पर आयोजित किया गया था। पूरे देश से चुने गए ये नए कर्मचारी रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और उच्च शिक्षा विभाग जैसे कई अलग अलग मंत्रालयों और विभागों में अपनी सेवाएं देंगे। प्रदेश में 3 चरणों में 26, 28 और 30 को होने वाले पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव को लेकर चुनाव प्रचार पूरे जोरों पर है। 26 मई को होने वाले पहले चरण के चुनाव के लिए सक्रिय चुनाव प्रचार 24 मई को समाप्त हो जाएगा। प्रदेश में 28 व 30 मई को दूसरे और तीसरे चरण के पंचायती राज चुनाव होंगे। इस बीच राज्य चुनाव आयोग ने पंचायती राज चुनावों के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इन तीनों चरणों में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के विभिन्न पदों के लिए मतदान होगा। चुनाव आयोग ने पूरे प्रदेश में कुल 21,678 मतदान केंद्र स्थापित किए हैं। प्रदेश पुलिस चिट्टे के खिलाफ 5 जून को शिमला में एंटी चिट्टा व स्वच्छ पर्यावरण जागरूकता मिनी मैराथन दौड़ का आयोजन करेगी। प्रदेश पुलिस महानिदेशक अशोक तिवारी ने शिमला में कहा कि इस दौड़ का उद्देश्य विशेष रूप से युवाओं और आमजन को नशे के विरुद्ध एकजुट करना और उन्हें पर्यावरण संरक्षण, फिटनेस और सामाजिक जिम्मेदारी के प्रति जागरूक करना है। 5 जून को ही विश्व पर्यावरण दिवस भी है। पुलिस महानिदेशक ने कहा कि इस वर्ष प्रदेश पुलिस ने एंटी चिट्टा अभियान के तहत नशा उन्मूलन और स्वस्थ समाज निर्माण के संदेश को जोड़ा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश पुलिस चिट्टा के खिलाफ अभियान तेज करेगी। अशोक तिवारी ने कहा कि यह अभियान प्रत्येक प्रतिभागी को नशे और पर्यावरण प्रदूषण के खिलाफ जागरूकता का दूत बनाने का प्रयास करेगा। राज्य पथ परिवहन निगम के कर्मचारियों में समय पर वेतन न मिलने से नाराजगी बढ़ती जा रही है। सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन में आज निगम के कर्मचारियों ने गेट मीटिंग कर सरकार और निगम प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की। इस मौके पर चालक परिचालक यूनियन के उपाध्यक्ष धर्मेंद्र शर्मा ने कहा कि अगर 1 जून तक निगम के कर्मचारियों के बैंक खातों में वेतन नहीं आया तो कर्मचारी हड़ताल पर जाने के लिए मजबूर होंगे। वर्कशॉप कर्मचारियों ने भी वेतन न मिलने पर टूल डाउन की चेतावनी दी है।
2: अन्य कर्मचारियों की तरह एचआरटीसी का कर्मचारी भी चाहता है कि उन्हें भी 1 तारीख को सैलरी मिले, लेकिन क्या कर्मचारी को कभी समय से वेतन नहीं मिल रहा है, जिसके लिए हिमाचल पथ परिवहन निगम के कर्मचारियों ने इकट्ठा होकर ये निर्णय लिया है कि यदि 1 तारीख साय 5 बजे तक कर्मचारियों का वेतन उनके खातों में नहीं डाला गया तो रात 12 बजे से सभी लोग जो है अपना कार्य बंद कर देंगे और जब तक हमारी सैलरी हमारे खातों में नहीं डल जाती तब तक हम कार्य नहीं करेंगे।
1: प्रदेशवासियों को एक बार फिर जोरदार गर्मी का सामना करना पड़ेगा। मौसम विभाग ने 26 व 27 मई को राज्य के 6 जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, सोलन और सिरमौर के अलग अलग स्थानों पर हीट वेव चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमानों के अनुसार 25 मई तक राज्य के लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलती रहेगी। विभाग ने इस दौरान प्रदेश के मध्यम व ऊंचाई वाले अलग अलग स्थानों पर वर्षा और बर्फबारी की संभावना जताई है। इस बीच बीते रोज राज्य के अधिकांश स्थानों पर हुई वर्षा और अधिक ऊंचाई वाले कुछ स्थानों पर बर्फबारी से प्रदेशवासियों को चिलचिलाती गर्मी से हल्की राहत मिली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 6 बजे। नमस्कार।
3: प्रादेशिक समाचारों के बाद लीजिए पेश है कांगड़ा जिला की चिट्ठी। लेखक हैं विपिन शर्मा और वाचक स्वर राकेश शर्मा का है।
1: जिला कांगड़ा में शिक्षा, संस्कृति, खेल, प्रशासन और लोकतांत्रिक गतिविधियों को लेकर बीते दिनों कई महत्वपूर्ण आयोजन हुए। पालमपुर स्थित चौधरी सरवन कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय में अखिल भारतीय वाल्मीकि महासभा के 2 दिवसीय 19वें राष्ट्रीय अधिवेशन का शुभारंभ राज्यपाल कविन्द्र गुप्ता ने किया। दीप प्रज्वलन तथा महर्षि वाल्मीकि और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि अर्पित कर कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन किया गया। राज्यपाल ने कहा कि ऐसे सम्मेलन सामाजिक संवाद को मजबूत करने और समाज को नई दिशा देने में अहम भूमिका निभाते हैं। उन्होंने समाज में एकता, सद्भाव और नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि

0: विकसित भारत के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सामाजिक समरसता और समावेशी विकास अनिवार्य है। शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला ने 10वीं और जमा दो कक्षाओं के परीक्षा परिणाम घोषित किए। जमा दो परीक्षा का कुल परिणाम 92.2% रहा, जो पिछले वर्ष की तुलना में बेहतर है। साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स तीनों संकायों के परिणाम एक साथ घोषित किए गए। वहीं 10वीं कक्षा का परिणाम 83.87% दर्ज किया गया। कांगड़ा जिला की छात्राओं और छात्रों ने दोनों परीक्षाओं में शानदार प्रदर्शन किया। 10वीं में कांगड़ा की छात्रा अनमोल ने 700 में से 699 अंक लेकर प्रदेश भर में पहला स्थान हासिल किया। जमा दो आर्ट्स और साइंस स्ट्रीम में भी कांगड़ा के विद्यार्थियों ने शीर्ष स्थान पर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करवाई। परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए लाइव मॉनिटरिंग व्यवस्था लागू की गई और नकल के मामलों में उल्लेखनीय कमी दर्ज हुई। न्यायिक व्यवस्था के अंतर्गत जिला कांगड़ा के सभी न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कांगड़ा द्वारा आयोजित इस लोक अदालत में 10,000 से अधिक मामलों को सुनवाई के लिए रखा गया, जिनमें से 5,429 मामलों का आपसी समझौते के माध्यम से निपटारा हुआ। विभिन्न मामलों में 5 करोड़ रुपये से अधिक की राशि का अवार्ड पारित किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने यह भी जानकारी दी कि आगामी अगस्त माह में सर्वोच्च न्यायालय परिसर में विशेष लोक अदालत आयोजित होगी, जिसमें समझौते योग्य मामलों का समाधान संवाद और सहमति के आधार पर किया जाएगा। केंद्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश में शैक्षणिक और वैचारिक गतिविधियां लगातार जारी हैं। पत्रकारिता, जनसंचार और नव मीडिया स्कूल तथा विश्व संवाद केंद्र शिमला के संयुक्त तत्वावधान में देवऋषि नारद जयंती के अवसर पर विशेष अभियान व्याख्यान आयोजित किया गया। कुलपति प्रोफेसर सत्यप्रकाश बंसल ने कहा कि देवऋषि नारद विश्व के प्रथम संचारक थे, जिनका उद्देश्य सदैव लोकहित और सत्य आधारित संवाद स्थापित करना था। उन्होंने आधुनिक पत्रकारिता में मूल्यों और नैतिकता के महत्व पर बल दिया। इसी क्रम में विश्वविद्यालय में मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण एक अंतर सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य विषय पर विशेष व्याख्यान का आयोजन भी किया गया। वक्ताओं ने मानसिक स्वास्थ्य के वैश्विक और भारतीय दृष्टिकोण पर चर्चा करते हुए योग, आयुर्वेद और सांस्कृतिक जीवन शैली के महत्व को रेखांकित किया। उच्च शिक्षा और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की पहल एक भारत श्रेष्ठ भारत युवा संगम कार्यक्रम के अंतर्गत NIT पुडुचेरी के 48 छात्र और 5 फैकल्टी सदस्य हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय पहुंचे। इस 5 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान छात्र हिमाचल की संस्कृति, पर्यटन, तकनीकी विकास और सामाजिक जीवन को नज़दीक से जान रहे हैं। राज्यपाल कविन्द्र गुप्ता ने कहा कि भारत की विविधता ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है और ऐसे कार्यक्रम युवाओं के बीच भावनात्मक जुड़ाव मजबूत करते हैं। खेल जगत में भी जिला कांगड़ा के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि सामने आई है। भारतीय खेल प्राधिकरण के राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र धर्मशाला की खिलाड़ी निकिता चौहान और सिमरन कंबोज ने चीन में आयोजित 6ठे एशियन बीच गेम्स में स्वर्ण पदक जीतकर देश और प्रदेश का नाम रोशन किया है। धर्मशाला लौटने पर दोनों खिलाड़ियों का भव्य स्वागत किया गया। खिलाड़ियों ने अपनी सफलता का श्रेय धर्मशाला केंद्र की आधुनिक सुविधाओं, हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग और प्रशिक्षकों के मार्गदर्शन को दिया। स्थानीय लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में जिला कांगड़ा में पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी हेमराज बैरवा के अनुसार जिला की लगभग 850 पंचायतों में 12 लाख से अधिक मतदाता मतदान करेंगे। चुनाव 3 चरणों में आयोजित होंगे। प्रशासन और पुलिस विभाग द्वारा निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। वहीं नगर निगम धर्मशाला की चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुए, जिसमें 60% मतदान दर्ज किया गया। महिला मतदाताओं की भागीदारी पुरुषों से अधिक रही। नगर निगम पालमपुर में भी मतदान प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी हुई, जहां लगभग 69% मतदान रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही कांगड़ा जिले की चिट्ठी संपन्न हुई। नमस्कार।
1: अभी आप कांगड़ा जिला की चिट्ठी सुन रहे थे। लेखक थे विपिन शर्मा और वाचक स्वर राकेश शर्मा का था। इसे आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के साथ साथ FM शिमला पर भी प्रसारित किया जा रहा था। हम आकाशवाणी शिमला से बोल रहे हैं। हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।
2: आप सुन रहे हैं FM शिमला 103.7 MHz पर।

जी हाँ, 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं एफएम शिमला, और एफएम शिमला पर ये समय है ओल्ड हिट्स फिल्म संगीत का। तो आइए सबसे पहले आपको सुनवाते हैं बरखा।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में अभी आपने सुना भाभी फिल्म का गीत। आप सुन रहे हैं एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर और आनंद ले रहे हैं ओल्ड हिट्स फिल्म संगीत का। आइए अब सुनते हैं मन्ना डे की आवाज़ में बादल फिल्म का गीत।

0: चुनाव सिर्फ एक शब्द नहीं, ये है सच्चे लोकतंत्र की नींव, और मतदान है एक जागरूक नागरिक की पहचान, जिसे इस्तेमाल कर वो तय करते हैं अपने क्षेत्र, राज्य और देश की दशा व दिशा।
1: तो आइए अपनी जिम्मेदारी निभाएं, आगामी पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़ कर भाग लें और गांव के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें।
0: आपका एक एक वोट तय करेगा पंचायत का भविष्य। तो निर्धारित तिथि को अपने नजदीकी मतदान केंद्र पर जाकर सोच समझ कर और बिना किसी प्रभाव के मतदान जरूर करें, क्योंकि ये सिर्फ आपकी जिम्मेदारी ही नहीं अधिकार है।
1: राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर के गाए शिकारी फिल्म के इसी गीत के साथ ओल्ड हिट्स फिल्म संगीत में आज बस इतना ही। एक 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं एफएम शिमला। एफएम शिमला पर यह समय है युवा साथियों के अपने पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी का।

जब आप कुछ नया करने की कोशिश करते हैं तो आप कभी बोर नहीं होंगे। वास्तव में कोई सीमा नहीं है कि आप क्या कर सकते हैं। ये वाणी प्रोग्राम सुनने वाले सभी श्रोता साथियों को आपकी अपनी रेडियो होस्ट और दोस्त निवेदिता शर्मा का सस्नेह नमस्कार। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे और आपका दिन भी बेहतरीन रहा होगा आज का। और FM शिमला के साथ तो किसी का भी दिन बन जाता है और तमाम इन्फॉर्मेशन के साथ साथ आपका एंटरटेनमेंट भी होता रहता है, सो अलग।

जी तो चलिए दोस्तों, आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे MSMEs, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस महिलाओं को कैसे सशक्त बनाते हैं। MSME यानी कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार के उद्यम भारत की इकोनॉमी के मुख्य इंजनों में से एक है, जो करोड़ों लोगों के GDP और एम्प्लॉयमेंट की ग्रोथ में योगदान देता है। इनमें से महिलाओं के नेतृत्व वाले MSME आर्थिक समावेशिता, इकोनॉमिक इंक्लूसिविटी को बढ़ावा देने और जेंडर इनइक्वालिटी को कम करने में इम्पॉर्टेंट रोल निभाते हैं। महिलाओं के लिए MSME एक गेम चेंजर है और बिजनेस के लिए नए दरवाजे खोल रहा है। लक्षित योजनाओं के साथ महिलाओं के लिए MSME इंक्लूजन न केवल फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बल्कि सोशल प्रोग्रेस को भी बढ़ावा दे रहा है। महिलाओं के लिए MSME का समर्थन करके भारत वैश्विक आर्थिक महाशक्ति बनने की दिशा में अपनी यात्रा को तेज कर रहा है। सो फ्रेंड्स, इन्फॉर्मेशन का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन आप पहले एंजॉय कीजिए कार्यक्रम का पहला गीत। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

आशावाद वह विश्वास है जो उपलब्धि की ओर ले जाता है। आशा और आत्मविश्वास के बिना कुछ भी नहीं किया जा सकता। सो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं एमएसएमईज, माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस महिलाओं को कैसे सशक्त बनाते हैं। विमेन एंटरप्रेन्योर्स एमएसएमई सेक्टर में एक उभरती हुई ताकत है, जो टेक्सटाइल्स से लेकर बायोटेक्नोलॉजी तक विविध उद्योगों में बाधाओं को तोड़ रही है। एमएसएमई 20 मिलियन व्यवसाय में 13.5% से अधिक हिस्सेदारी महिलाओं की है। महिलाओं के लिए एमएसएमई वे उद्यम हैं जो पारंपरिक शिल्प और खाद्य प्रसंस्करण से लेकर आधुनिक तकनीकी स्टार्टअप्स तक फैले हुए हैं, जो भारतीय महिलाओं की लचीलेपन और ताकत के बारे में जानकारी देते हैं। इकोनॉमिक इफेक्ट्स। महिलाओं के नेतृत्व वाली एमएसएमईस आर्थिक विकास के इंजन हैं। महिलाओं के लिए एमएसएमई भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। वे परिवारों का उत्थान करते हैं और रोजगार की संभावनाएं पैदा करते हैं, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में। महिलाओं के लिए एमएसएमई उनके समुदायों में गरीबी को कम करने और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने में योगदान देते हैं। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन इसमें इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि विमेन एंटरप्रेन्योर्स को एम्पावर बनाने से भारत के ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट 2025 तक $700 बिलियन तक बढ़ा है। महिलाओं के लिए एमएसएमई अक्सर प्रॉफिट को सामुदायिक कल्याण, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए लगाते हैं। सो फ्रेंड्स, लीजिए चलिए प्ले करते हैं प्रोग्राम का नेक्स्ट म्यूजिकल ट्रैक। सुनते रहिए, यूं ही गुनगुनाते रहिए।

युवाने प्रोग्राम सुन रहे हैं आप ट्यून इन है ARFM शिमला 103.7 MHz पर। भविष्य उन लोगों का है जो अपने सपनों की सुंदरता में विश्वास करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं MSMEs में महिलाओं के योगदान को लेकर। विमेन एम्पावरमेंट के लिए MSME को समर्थन देने में कुछ पहल महत्वपूर्ण है। सबसे पहले है महिला उद्यमी निधि योजना। ये स्कीम महिला उद्यमियों को रियायती ब्याज दरों पर 10 लाख रुपए तक का लोन प्रदान करती है। इसे विशेष रूप से ग्रामीण भारत में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को समर्थन देने के लिए तैयार किया गया है। इसी तरह से महिलाओं के लिए मुद्रा योजना। मुद्रा योजना के तहत महिला एंटरप्रेन्योर्स को 50,000 रुपये से लेकर 10 लाख रुपये तक का लोन दिया जाता है। सिलाई, खान पान और सौंदर्य सेवाएं जैसे क्षेत्र प्राथमिक बेनिफिशियरी हैं। मुद्रा योजना के 70% से अधिक लाभार्थी महिलाएं हैं, जो इसकी इंक्लूसिव नेचर को दर्शाता है। नेक्स्ट है स्टैंड अप योजना, इंडिया योजना। डिप्राइव्ड सेक्टर्स में महिलाओं और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब एंटरप्रेन्योर्स पर ध्यान केंद्रित किया गया। ग्रीनफील्ड बिजनेसेस के लिए ये स्कीम 10 लाख रुपये से 1 करोड़ रुपये तक बैंक लोन उपलब्ध कराता है। स्टैंड अप इंडिया स्कीम्स के स्टार्टिंग से अब तक 1.4 लाख से अधिक महिला उद्यमियों ने इसका लाभ उठाया है। 80% से अधिक बेनिफिशियरी महिला नेतृत्व वाले उद्यम हैं। अगला है अन्नपूर्णा योजना। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में महिलाओं के लिए बनाया गया

ये प्रोग्राम छोटे पैमाने के खाद्य व्यवसायों को 50,000 रुपये तक का लोन प्रदान करके फलने फूलने का अवसर देता है। इसके अलावा और भी कई उल्लेखनीय योजनाएं महिला उद्यमियों के लिए हैं। ट्रेड रिलेटेड एंटरप्रेन्योरशिप असिस्टेंस एंड डेवलपमेंट, महिला उद्यमियों को वित्तीय और शैक्षिक संभावनाओं पर ट्रेनिंग और सहायता प्रदान करता है। विमेन एमएसएमई के लिए ई मार्केट प्लेस जेम, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जैसे प्लेटफॉर्म महिलाओं के लीडरशिप वाले उद्यमियों के लिए बाजार तक पहुँच प्रदान करते हैं। महिलाओं के लिए एमएसएमई स्कीम एडेप्टिव इकोसिस्टम का निर्माण कर रही है, जिससे उन्हें बाधाओं को दूर करने और अपने उद्यमों को बढ़ाने में मदद मिल रही है। सो फ्रेंड्स, लीजिए चलिए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। सुनते रहिए और यूं ही मुस्कुराते रहिए।

0: असफलताओं से सफलता विकसित करें। निराशा और असफलता सफलता की दो सबसे मजबूत सीढ़ियां हैं। सो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं एमएसएमई सेक्टर में महिलाओं के योगदान को लेकर। अब बात करेंगे माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस में महिलाओं के सामने आने वाले चैलेंजेस को लेकर। एमएसएमई सेक्टर में महिलाओं के प्रोग्रेस के बावजूद महिला उद्यमियों को कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है। सबसे पहला है लोन तक लिमिटेड एक्सेस। स्टडीज़ बताती हैं कि 60% वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को पर्याप्त वित्त पोषण प्राप्त करने में संघर्ष करना पड़ता है। जोखिमों के कारण फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वुमेन ओनरशिप वाली एमएसएमई को लोन देने में अनिच्छुक रहती हैं। सेकेंड है सोशल और कल्चरल ऑब्स्टेकल्स। ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक मानदंड महिलाओं को उद्यमशीलता की महत्वाकांक्षा को आगे बढ़ाने से रोकते हैं। घरेलू रिस्पॉन्सिबिलिटीज और व्यावसायिक मांगों के बीच संतुलन बनाने से बोझ बढ़ जाता है। थर्ड है जागरूकता की कमी। कई महिलाएं ऐसी योजनाओं से अनजान हैं, एमएसएमई लोन और विशेष रूप से उनके लिए डिज़ाइन की गई सब्सिडीज़ को लेकर। केवल 30% तक पात्र महिला उद्यमियों में से मात्र 10% ही अपर्याप्त पहुँच के कारण इन योजनाओं का लाभ उठा पाती हैं। इसके अलावा सीमित डिजिटल लिटरेसी और ढांचागत बाधाएं महिलाओं के नेतृत्व वाले एमएसएमई को डोमेस्टिक और वर्ल्ड लेवल पर व्यापक बाजारों तक पहुंचाने में रोकती है। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस महिलाओं की क्षमता को अधिकतम करने और आर्थिक उन्नति को बढ़ावा देने के लिए इन मुद्दों का समाधान आवश्यक है। सो फ्रेंड्स, लीजिए चलिए सुनते हैं प्रोग्राम का नेक्स्ट म्यूजिकल ट्रैक। सुनते रहिए और यूं ही गुनगुनाते रहिए।
1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, let's start the fun.

हमें सभी स्तरों पर महिलाओं की ज़रूरत है। शीर्ष पर भी गतिशीलता बदलने के लिए भी, बातचीत को नया आकार देने के लिए भी, ये सुनिश्चित करने के लिए कि महिलाओं की आवाज़ें सुनी और मानी जाएं, नज़रअंदाज और अनदेखी ना की जाएं। सो वेल लिसनर्स, इसी म्यूजिकल ट्रैक के साथ फिलहाल युवानी में इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। अपनी रेडियो हमसफर निवेदिता शर्मा को अनुमति दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी। बने रहिए 103.7 मेगाहर्ट्ज़ के साथ।

0: सुबह हो या शाम, आपके घर आंगन में महकती एक आवाज 103.7 मेगाहर्ट्ज़ एफएम शिमला। हंसने हंसाने, आपको गुदगुदाने और कुछ गुनगुनाने के लिए
1: हम तो मोहब्बत करेगा, दुनिया से नहीं डरेगा, चाहे ये जमाना कहे हमको दीवाना, आज हम तो मोहब्बत करेगा
0: FM.

103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं एफएम शिमला। एफएम शिमला पर लेकर आ गए हैं आपके लिए फिल्म संगीत। जी बिल्कुल, चाय कॉफ़ी के साथ अब आप आनंद लीजिए फिल्म संगीत का, जहां पर सबसे पहले हम लेकर आए हैं आपके लिए जहर फिल्म का गीत, जिसे गाया है श्रेया घोषाल ने।

राहत फ़तेह अली खां की आवाज़ में अभी आपने सुना कलयुग फिल्म का गीत। आप सुन रहे हैं एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज पर और आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत का। फिल्म संगीत में अब हम आपको सुनवा रहे हैं जख्म फिल्म का गीत, जिसे गाया है कुमार सानू ने।

वेल, इसी के साथ फिल्म संगीत में आज बस इतना ही। अब अपनी रेडियो हमसफर बबीता शर्मा को दीजिए इजाज़त, इसी उम्मीद के साथ बहुत जल्द होगी आपसे मुलाकात। आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और बस यूं ही सुनते रहिए हमारे साथ FM शिमला। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।

मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्स और एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्स पर यह आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। लिए पेश हैं हिमाचली बोलियों के कार्यक्रम। आइए शुरुआत करते हैं चंबियाली कार्यक्रम के साथ।

असें आकाश मेरे शिमला केंद्र थोनू बुलू करन दे संजर ठीक 4:21 ते 10 सैकेंड बच गए हैं। पेशा तुंदा मनपसंद चंबियाली कार्यक्रम जी।

लाइक कि मान लिया कि जिस टाइम आके अप्रैल ही अंदर जिस टाइम यूं लग पैना खीण है तो असं सारी की सारी चीज़ा के अंदर कैसे जलवायु परिवर्तन के कारण बुझू कर दी है कजो कि जे पहले मौसम अंदर जरा जरा सामान्य रूप हों तू ना से बड़े सामान्य तरीके से चलता तू, लेकिन अब जरा से मैं बोलूँ तू जो कि कोई पता ना बोना है कस टाइम कि तूने गर्मी पै जानी है कि भाई अथा हिसाबे से गर्मी पै जानी है, कभी तूनी बरखा पै जानी या बाड़े चलेने हैं तूनी बरखा लगनी कि भाई सब कुछ सेती नहीं रहते तो हिसाब से या मान लिया कि भाई घटकी ए मतलब गर्मी के हिसाब से बुना किसी तूना सूखा पड़ जाने सारी की सारी फसल जी बर्बाद हो गई या तूना तूफान चलना कि सारे सारे जो पेड़ पौधे हैं घर इन सारे ब्यारे जड़े से उड़ारी ले जाने इदे ही जड़ी घटना बुंदी है से धीरे धीरे करके जड़े उत अंदर पूरे रे पूरे पर्यावरण अंदर जड़ी ना से आबे लगूरी बूंद आए तो तेसो जो के बोलते जे जड़ी से परिवर्तन जड़ा बूंदा से जलवायु परिवर्तन रे कारण जड़ा बुछुआ करता है। अब गल ए कि भाई जलवायु परिवर्तन के कारण कह भाई बूंदा का जुआ तो इसेरे कारण अंदर अगर गल करने तो पहले एक ग्रीन हाउस गैस आ तो टेरे ज़्यादा जड़ा से सो बढ़ावन जब ज़्यादा बढ़ते हैं ते और दुए गल कि आए बण जो जो इन जंगल है ना बण ते बण जो कटने रे पूरा पूरा जे मन लिया कि भैया से अपने फायदे रे तक तुना ज़्यादा अंधा धुंध जड़े जंगल जड़े कटना लगू रहे तो से विकास री सौगी सौगी जड़ी इन सौगी से विनाश भी चलू रहे है ना तो जरूरी नहीं है से तो ठीक आ, लेकिन कोई तो ग्राम पद्धर अंदर बैठू रहा से अप इं भी बढ़िया केले की बूटी नहीं या बनेरा पेड़ इन तीयों अब नवा नवा लगता तो सो कट इन दिन दे तूना बन रहे कटाई बेड़ जड़े हा से अगू किश करे भी जलवायु परिवर्तन का जरा कारण जरा से बनते है ना जी। सौगे सौगे जरा उद्योगीकरण बुंदा शहरीकरण बुंदा हर जगह जी भाई बड़े बड़े सिटी बुने चाहिए या शहर बुना चाहिए है या अस बड़े बड़े उद्योग बुने चाहिए ठीक है बुने चाहिए न, लेकिन कुछ हद तक जरा से ये जलवायु परिवर्तन का कारण जरा दिखता असो लजींदा है और सौगे सौगे जड़े इन जीवाश्म ईंधन है ना आए तटेरा भी ज़्यादा उपयोग इन करते हैं और हालांकि जलवायु परिवर्तन जरा इन मानवीय गतिविधि जरा असें चेंजेस परिवर्तन इन करू कर तटेरी वजह तो भी बड़ा ज़्यादा जरा से जलवायु परिवर्तन बुचुआ करता है ना जी। और जनसंख्या वृद्धि जरा तेरी वजह तो भी क्या बुंदा ये धीरे धीरे करे करे जलवायु परिवर्तन भुचुओ करता कजू कि जे मैं तुसो बोलूँ कि ग्रीन हाउस गैस है रे असे गल करन तो जड़े कार्बन डाइऑक्साइड बुंदे आक मिथेन बुंदी ऐसी गैस है ना नाइट्रोजन ऑक्साइड हो पूरी पूरी जड़ी गैस है ना से वातावरण अंदर एक टाइम आके कर दी थी ना गर्मी जो जड़ी कम कर दी थी है, लेकिन अजकल इतूने ज़्यादा उद्योग बुच गया है ना इतने ज़्यादा जड़े गड्डी बुझ गई न और सौगे सौगे इतने ज़्यादा हर चीज़ जी मार ऐसी चीज़ा बीच अंदर चली कि यारी मात्रा जड़ी धीरे धीरे करके करके लगातार और बढ़ना लग हो रहा है और तटेरी वजह तो क्यों हूँ कुछ चीज़ा सो चाहती भी से कम में नहीं बोंदी जड़ी ना चाहती से ज़्यादा नहीं बोंदी तो पूरे पर्यावरण अंदर ऐसी जैसे परिवर्तन नहीं बोंदे तटेरी वजह तो अक में तू सब ग्रीन हाउस सेरा ये जड़ा असो प्रभाव जड़ा से पैंदा इंदे जलवायु बुरी इंदे पर्यावरण बुरे और असु जो भी आगू किश करी बड़ी समस्या रहा के होना ते सामना करना पैना है। दूसरा मैं बोलूँ कि भाई अस जड़न ते अपने विकास दे तकर जड़न से विनाश करने जो जड़न से बड़े भरे पेड़ पौधे कटने रहा जड़ा पूरा जड़ा कम रखू रहा है ऐसे है ना ते अंदर अब कार्बन डाइऑक्साइड जड़न से इंदे जड़ा पेड़न से कर दे से लेंदे न और असु जड़े ऑक्सीजन दिंदे न लेकिन उसे कट छड़ने बरखा का कारण जड़ा या मन लिया कि बड़ी बड़ी चीज़ जी प्रदूषण जो रुकने का कम भी कई जगह जड़न या बरखा का कारण बड़ी चीज़ा होंगी जी जंगल कर देन लेकिन से बण जंगल से कटने लाए पूरे तो सब चीज़ से रुकू कर दी तटेरी वजह से जरा इंदा जरा जलवायु जरा परिवर्तन जरा बुंदा है ना जी। दूसरा मैं बोलूँ बड़े बड़े ज़्यादा कारखाने बनाए दीते हैं तो तंदरी तूना ज़्यादा जरा धुआं चलू रहा और बहुत ज़्यादा ऐसी ऐसी चीज़ें हैं चलू रही और ऐसे पूरा पूरा शहरीकरण रे तकर पूरे पूरे जड़ा बड़ा हर चीज़ तो चकाचक करूर कर दे लेकिन से प्रभाव जड़ा इंदे पर्यावरण बुढ़िया पैंदा है और तित करे के हुंदा इंदा जलवायु परिवर्तन बुझू कर दे है और ऐसी मैं बोलूँ थू कि भाई और इतनी ज़्यादा जनसंख्या बढ़िया चलो रे और तेसो अस चीज़ें पूरी क्यों करनी है तो से भी सारी सारी चीज़ा निर्धारित बुंदी है तो इस जनसंख्या बढ़ने रहे इन जो साधन से अगत्य

जितूनी बढ़ने हैं, तो हर चीज़ जी इनसे मान लिया कि अब रहना तो पेड़ भी कटने, जमीन भी रहा भी सारा सारा जो इन भूमि है तटेरा भी कटाव करना है, तो सारा सारा ऐसी ऐसी चीज़ें जी इनसे पर्यावरण के परिवर्तन या मान लिया जलवायु परिवर्तन के कारण ये जी बुंदी ने, है ना जी। तो ये असू गलबात तो इं करते रहने, सौगे सौगे एक होर अस छैल चंबैली लोक गीत सुनते, असें है ना जी, सुना तुसें छैल चंबैली लोक गीत जी।

जी तो सुनने वाले हो अभ्यास है कृष्ण लाल सहगल की भाख अंदर बड़ा शैल चमे वाले लोग गीत सुनू है तो असं जोड़े गलबात थी करू करन दे जलवायु परिवर्तन के बारे अंदर कि भाई ये सिरे के कारण थों जड़न से आजकल जलवायु परिवर्तन बुंदा है ना जी और सौगे सौगे सिरे जो जलवायु परिवर्तन का जरा भाई प्रभाव क्या पैंता सुबोड़े कि भाई जलवायु परिवर्तन जरा बुंदा तो थोड़े किस ना किस असबोड़े प्रभाव पैंता होना है तो सिक क्या पैंता तो तापमान अंदर जिस टाइम आवे वृद्धि बुंदे सिकटे अक कारण यही है कि जड़ा तापमान बढ़ता है से जलवायु परिवर्तन के कारण ही बढ़ुआ करता है ऐसे हरदे कि हर वक्त जड़ा से धरती का तापमान अंदर हर वक्त क्या होता परिवर्तन इशू करता है तो से परिवर्तन असे जलवायु परिवर्तन के कारण ही हेरी सकते हैं ना जी और सौगे सौगे जड़े इन बड़े बड़े जड़े इनसे हिमखंड तो सो ह्यू जड़ा छिंदा तेड़ी बड़े बड़े जड़े ना से बने गए ह्यू तो सो हिमनंद बोलते हालांकि तो से हिमनंद जड़े से धीरे धीरे करी कर जड़े पिघलना लगी पे रहे और से भी बुना ज्यादा जरूरी होंगे कजो कि जे तसेरी वजह तो असू जो पानी मिलता है तो त्यारी वजह तो मिलता लेकिन धीरे धीरे करी कर अस हिरदे दौलाधार की जी इनकी पहाड़ी न बारे बारे रीति तंदर जड़े अस अक टाइम ह्यू रहा तू बर्फ रेंदे दे आए लेकिन अज आगू अगस्त लगना है या जून जुलाई अगस्त अंदर सारे सारे जो पहाड़न से नंगे बच गए हैं तो असें कारण अगू किश करते असें ये हेर सकते कि इसे कस कारण तो नहीं बुंदे कभी भी इसे असें खाली नहीं हेरू रही है या असें अपने आसे पास हेरते थे तीन पहाड़ अंदर बर्फ रेंदे रेंदे थी और सो पानी की कमी ना बुझू करते थे तो असें पानी की कमी और बर्फ पिघलना जरा इन बड़े बड़े हिमनंद बुंदे थी इसे पिघलना जलवायु परिवर्तन के कारण ही जड़े ने सो पिघलून करते हैं ना जी और सौगी सौगी बड़ी भारी प्राकृतिक आपदाएं नहीं इंदी जे मान लिया कभी कभी मैं बोलूँ ना कि भाई अबे हिमाचल अंदर कितनी भारी प्राकृतिक आपदाई थी या इतनी भारी बरखा बुझी गई बदल फटे कि बड़े बेचारे इतने घर जड़े से ढह गए कोई पानी अंदर बह गए तो मतलब बड़े लोग जड़े तेत अंदर जड़े जान माल बड़ी भारी हिमाचल का जरा नुकसान बछूरा से अकमात्र कारण थू अस जरा जलवायु पर असें ये सोचते हैं अपने फायदे तक असें बड़े चीज़ करूँ कर दे तो थोड़ा अक दिमाग लाता है ना कि भाई चीज़ असें सेफ रख मतलब शुद्ध रखन अपने वातावरण जो शुद्ध रखन सही तरीके से कम कार करन और भविष्य रे आधार बोड़े असें जड़े प्राकृतिक असू जो जी चीज़ा दितूरी त्यारा इस्तेमाल अगर असें करू न कर दे तो अगू किश हेर सो कोई समस्या इन्हें ना है लेकिन असें अपने अज ही हेरन कि अज असें बढ़िया खाई ली अज अस बड़ी सांस ले ले बाकी जड़ा बोला से हेरे ले ले तां बड़ी समस्या जड़े आ से पूरे देश विदेश अंदर जड़े असें इन्हें वाले है ना तो से प्राकृतिक आबादा के कारण भी जी असें चीज़ा बुंदी तो अंदर कृषि के प्रभाव बुढ़े हेर सकते हैं बड़ी चीज़ें जी सीधी नहीं बुंदी आई और सौ सौ मानव स्वास्थ्य बड़े बड़ा प्रभाव बुंदा है और ऐसी बड़ी बड़ी चीज़ा जड़ी न से अज अस जड़े से हेरी सकते हैं ना जी और सौगे सौगे अस एटेरा जड़ा से समाधान कैसे कर सकते कि भाई जलवायु परिवर्तन तो बुंदा है लेकिन जलवायु परिवर्तन सुधार भी तो ऐसे कर सकते समाधान भी तो ऐसे कर सकते तो समाधान असें कत करे कर सकते ज़्यादा तो ज़्यादा अगर पेड़ लाना से वृक्षारोपण करना है कि यह ना है कि भाई उस पेड़ कटने बड़े ज़्यादा ध्यान देना है तो वृक्षारोपण करना पेड़ लाने पेड़ की सौगे सौगे जी इनकी नवीन करनी है कुछ ऊर्जा रा प्रयोग जड़ा हुंदा इसे करना है ऐसा ना है कि भाई बड़े बड़े ईंधन का प्रयोग कर देने या जिस टाइम पेट्रोल और डीजल का जड़ा अस हिरदे तो तेरा ज़्यादा कम असू इस्तेमाल करना है जिड़ी प्राकृतिक रूप से जी मान लिया कि ऐसी चीज़ें होंगी कि त्यारा सौर ऊर्जा पवन ऊर्जा जल ऊर्जा ऐसी चीज़ें रहा उसको ज़्यादा इस्तेमाल करना जोड़ा बड़ा ज़्यादा जरूरी है प्रदूषण जोड़ा से कम करना उस जो बड़ा ज़्यादा जरूरी है तेरी वजह तो भी जलवायु परिवर्तन बुंदा है सौगे सौगे जड़े यहाँ से जन जागरूकता बड़ी ज़्यादा जरूरी है अगर लोग जागरूक नहीं ना लोगों को पता नहीं है ना कि भाई बुंदा क्या है तो जिस टाइम अगर लोग जागरूक ना भूना तेरी वजह तो ये चीज़ जड़े से रुकने ना है।

ढंगा कने खाना बनांगा साफ सुथरा जेहा। जे गंदगी रखगा तो से ते थिला बीमार हो जाना देखा घर वाले। अपने मतलब हर चीज साफ सुथरी रखो, झाड़ पोचे लगाने, झाड़ू लगाने, और मतलब खाना बनाया, भांडे बढ़िया करी कने मांजे, साफ सफाई रखी रसोई घर भी। तस्ते ते करी कने मतलब जितनी साफ सफाई घर ते फिर रख गए तितनी फिर बाहर होनी। हाँ एड़ा भी आ भाई जी, जे घर आता तुसे भाई बड़ा भारी साफ सुथरा करते है ना, पर बाहर आखो देती चटियाई ते कूड़े री तो फिर क्या फायदा हुआ। ते थी तो फिर से सड़ना से, गंद फैलना से, मक्खी मच्छर से, कीड़े गुज्जू सारे हो जाने, और ते फिर भी गंद पे जाना है ना। सब ना ते पहले आ भाई तुसे घर साफ सुथरा रखो, अपने घर अरे बाहर चारों पखा जे साफ सफाई रा ध्यान रखो, ते फेरी अगला फिर पर्यावरण साफ करने रा फिर तू सारा मतलब हुआ देखा है ना। फिर सब ते पहले आ देखो घर तू सारा साफ हुई गया, फिर दा भी साफ हुईगी। तेते बाद चलो भाई जितने ज्यादा ले ज्यादा तुसे डाल बूटे लगांगे तितना तू सारा पर्यावरण जैसे साफ सुथरा रहना से किया। देखो एक ता पहले माणु भी स्वस्थ रहना, फेरी देखो जितना ज्यादा डाल बूटे लग गए तू सारे मतलब ऑक्सीजन जैसे शरीर जो खूब मिलनी देखा है ना। जितनी ऑक्सीजन मिलगी शरीर जैसे बिल्कुल स्वस्थ रहना। देखो अंदर अंदर तक जब ऑक्सीजन जाए ना सारे शरीर मंज तो माणु जैसे स्वस्थ रहना। जब माणु स्वस्थ होगा तो तीसरा काम करने हो भी जीव करना, नहीं तो आजकल देखा लगाए रहे ऐसे कोई नाका लगाई रही नाड़ियाँ, कोई कुछ लाए रहा मुँह लाए रही कि भाई नारे अंदर जे इसे ऑक्सीजन नहीं है ना, ऑक्सीजन लाए रही ना देने। वो तो भाई एड़ा जे डाल बूटे लगाएंगे ना तुसे हरे हरे बार तो तू सारे ऑक्सीजन जे इसे बढ़िया जानी अंदरा जो हाखियाँ भी दोहरी रहनी तू सारे हरी हरी सूझती रहनी देखा। और मतलब हवा पानी गर्मियाँ मंज आजकल देखा डाल बूटे लग रही होता हाँ हाँ मजा आई जाती देट बैठी कने। तो ई है जितने भी डाल बूटे लग रहे होंगे तू सारे तो तुसे ठीक रहने देखा। और एड़ा भी जे जियाँ खेतरा डोरियाँ काम करना भी बड़ा भारी जरूरी है। जितना तुसे खेतरा मंज काम करगे डोरियाँ मंज काम करगे से माटा जया शरीरा जो लगता रहना तो माणु जैसे स्वस्थ होगा। तो सो खेतर भी ऐसा साफ रखने पौने देखा। अजकल एड़ा ना हर कुछ सटते रहे हैं, हर कुछ सटते रहे हैं बे, बहुत ज्यादा रासायनिक खाद का भी उपयोग नहीं करना चाहिए से भी आशा शरीरा कट्ठे में नहीं ठीक ही और आशा ये सा धरती माता कट्ठे में नहीं से ज्यादा ठीक है ना। और दूजा भाई एड़ा भाई प्लास्टिक बंद करना पौना। देखो भाई प्लास्टिक एड़ा जी हाँ जे एक आवा जे तेता जो भाई एक ही बार से मतलब इस्तेमाल करना ते तले बाद छटी देना, पर माणु जे से एक बार ले ज्यादा भी करना दोई दोई दोई दोई कने ती जो बी रहा करता ठीक है ना, से बड़ा भारी खतरनाक आ प्लास्टिक का रेड़ा भाई। जितना भाई तुसे पहले रेड़ा हुआ था ना जी खाना बनाया ताज़ा ताज़ा और खाई लिया है ना, घरा चूल्हे पर बनाया छे चूल्हे री से स्वाद लगनी थी दी पर थोड़ी थोड़ी छे ब्याह सर शरीर कट्ठे कितनी अच्छी हुआ ही देखा। पर ये बेता रेड़ा भी खाना बनाई करने से प्लास्टिक का डब्बे में गरम गरम पाई दें और से प्लास्टिक का से जो छोटे छोटे कण हुआ है ना सो आसो सूझ दे नहीं है देखा है ना। आसो क्या लगा देखा जी प्लास्टिक पकड़ा है ना गर्म खाने के चिखी जहाँ से पूरा पचीखी गिरा हुआ से तस्ते तर मतलब देखो गरम खाना पाई करने से जो अकड़ी राजे प्लास्टिक हुआ से केड़ा नरम जे हुई जहाँ तुसे स्टीला मंज पाओ देखा पीतला रे डब्बे मंज पाओ खिदी मंज भी पाओ तुसे ना ता तिदी मंज देखा से पचिकने नहीं है तेड़े है ना सो तेड़े रे तेड़े रहने। जे तुसे प्लास्टिक का मंज पाए सो अड़े पचिकी जाए तो तिदरे से जो छोटे छोटे कण है ना सो तेस खाने मंज चले जाए और आ सारे शरीरा मंज आसा तो देखना भाई ये खाना बड़ा भारी स्वाद आ बारा ते लायरा मंगवाना हा हा जी तीसरा खाना इतना स्वाद आ मजा आई गया खाने रहा है ना, पर से खाने रहा मजा जीबा तक के हुआ अंदरों जाई करने तो से जहर हुआ जहर लगी रे फिर से कैंसर होंगे कोई कुछ हों लगी रहा से इधरी वजह ते देखो है ना। खान पान रे कुछ तो देखा सारे खाने मंज खादा चली जाई पहले, पर चलो सेड़ा भाई धोई धाई कने थोड़ा मतलब तिदरा जे हुई जहाँ भी पकीजा जे हुई गया थोड़ा बहुत है ना। पर जे जे प्लास्टिका मंजा से खाना पाए ये सब ते ज्यादा खतरनाक आ। देखो तुसे प्लास्टिक बिच बिल्कुल खाना नहीं खाओ, अपने किथी भी जाना स्टीला रा टिफन जे चक्की लिते आ एक ताकि आ जाए जाना, नहीं तो तुसे मतलब छोटे छोटे अपने डब्बू जे रख लो स्टीला रे तिना मंज पाई लिते खाना से ठीक आ, पर इं नहीं करो। हाँ अखबारा मंज भी नहीं पाना चाहिए तिदरी स्याही भी बड़ी बारी खतरनाक हुआ है ना। तो से जी हाँ जी सादा कागज होती दी मंज लपेटी लिया से अलग गली, पर अखबारा री स्याही बिच भी बड़ा रसायन हुआ छिमनी मतलब लेने चाहिए देखा। और प्लास्टिक एड़ा हुआ यूँ लिफाफे चली रे देखो असे हर किसी सटी दे इन्ह लिफाफिया जो डांगरे आवाएं कोई आवाएं खाई जाए तिना रे बेचारे नालियाँ फंसी जाए देखो है ना।

लगी रहे, फिर इसे बस दे लगी रहे, कुछ लगी रहे कर दे, तो क्या करना? इतना ध्यान रखो तुझे अभी प्लास्टिक का तीना जो तुसे एक ही जगह इकट्ठे करी कि आग लाई दो जी, यहाँ भी करना यहाँ तब इतनी तो ज़्यादा इस्तेमाल ही नहीं करो तुसे, है ना। और दूध जब ऐसा डांग रहे दूध मरना तो देता मन जब उसमें प्लास्टिक कर करना होना कि बेचारी गाय है तो से खाद रहा मैंसी है तो से खाद रहे, है ना। सो चबाई चबाई करने तीत रहे अंदर अपने अंदर भी खराब करी तीतरी देखा। और जियाँ डोरियाँ मंज चली गया, खेती भी चली गया, तो इतनी से माटे मंज मिली करने आ सारा माटा भी देखा धरती माता रा खराब हुई जहाँ। खाना पीना फिर इससे क्या फायदा हुआ, इस तो पेट भरया ना शरीर उतर लग गया नहीं आ, फिर रोज पर रोज लगे रहे ढीले होंदे ढीले लगे रहे होंदे। और देखा से खाना जे आए बे जियाँ जे जे बिजली कने चलाएं देखा माइक्रोवेव बोलाएं जी दीजो, तेता मंजा से प्लास्टिका मंज रखी के खाना गर्म कर दे से तो बहुत ही खतरनाक है देखा। तो इन चीज़ों का सो जो थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, ऐसा जो कपड़े थैले लेने चाहिए, सब्जी भाजी लैन दी दीदी मंज लियानी जो समान लैन दिया दीदी प्लास्टिक घट्ट से घट्ट जे असें उपयोग करना चाहिए। इतना तो सारा जे अभी सारा वातावरण जे असें खराब हुई गिरा। पानी जो साफ सुथरा रखो, पानी जो यहाँ अड़ने ना दो, खाडा नालुआ बॉडियाँ जो साफ सुथरा रखो, तीना मंज गंदे कपड़े नहीं धो अपने कि साबणा रे पानी कने से तुसे तो देखना भी आसे अपनी जे जगह साफ किते छल्ले छुले हो कपड़े झाड़े, पर से साबणा रे पानी से किथी तक चली जाना और तेसे से सब जे ऐसे खराब कर जाना, ते फिर जीव जंतु भी देखा जो जो खाडा नालुआ मंजुआ है सो मरी जाए फिर देखा। आजकल गर्मियां ले बचने कठे देखा एसी सब ते ज्यादा लग रहे देखो, है ना। जे ठंडी जे हवा दे आए ना, यूं तो अंदर तो सो ठंडी दे आए पर बाहर जे जे हवा गर्म हुआ ना तेता मंज कितना मतलब गर्मी भी हुआ और गैस वाली हवा तेते बाहरों निकलें, तेता लिया सारे पेड़ पौधे लगे रहे खराब होंगे, इतनी गर्मी लगी रही तेते उन्दी माणू भी बई जी बारियां चली रहा हुआ तो इब देखो तुसे बई एक ही एक ही इमारता मंज कितनी कितने एसी लगी रहे हुआ है देखा ना, हर कमरे लगी रहे तसी ना कमरियाँ ते सब यहाँ ते से गर्म हवा और से गैस वाली हवा निकलिया करें, इसे माणू कट्ठे भी ठीक नहीं और असारे वातावरण कट्ठे में नहीं ठीक ही। जे भी जरूरी हो ते भी इसे मतलब उपयोग विच ले आओ, वैसे जे नहीं आओ से उपयोग विच तो पहले से ही असारा वातावरण जे ऐसे हुई जाना, पर माणू अपनी सहूलियत कट्ठे इतने ज़्यादा मतलब चीज़ा बनाई तरी ते फिर या सारे पर्यावरण जो बड़ा भारी नुकसान हुआ देखा, है ना। और ही आई भाई देखा अपने गड्डियां वगैरह मोटरा पर जाएं तो जितना घटो तितना एक ही माणू कट्ठे एक गड्डी चली रही, एक माणू कट्ठे एक गड्डी, तो वातावरण देखो सारा खराब नहीं होना प्रदूषित नहीं होना सारा से, तो यदि कट्ठे ज़्यादा ज़्यादा तुसे बसा पर चली जाओ पैदल चली जाओ साइकिल कर लो अपने दीदियों लियाओ इस्तेमाल बिच, जितने भी आ सारा पर्यावरण घटाला घट जैसे मतलब खराब हो देखो। तो यूँ तो देखो भाई गलबात तो सब जने पे ध्यान दें, ज़्यादा से ज़्यादा डाल बूटे लगाओ और अपनी धरती माता जो बढ़िया सुंदर और स्वस्थ बनाओ। तो ये तो हुई गलबात, एक बढ़िया जे लोकगीत सुन लाएँ।

तां इस उने तुसें लोकगीत गांदे लग रही थी गीता। ए भी असा गलबात करनी योग होर व्यायाम रे लाभ देखा। पहले ऐसे गल कीती देखा भाई पर्यावरण जे असा साफ सुथरा रखना चाहिए देखा। ए भी असा गलबात करनी भाई पर्यावरण तो चलो साफ सुथरा हो गया पर खान पान भी ठीक होना चाहिए और अपना शरीर भी ठीक होना चाहिए। खान पान तो चलो भाई पर्यावरण रे हिसाब ठीक ठाक करी था तुसे पर शरीर जे अपना हिष्ट पुष्ट कियाँ रखना देखा से रखना तुसा योग और व्यायाम करने प्राणायाम करने देखा है ना। तो एड़ा भी जी माणू चलो सारी दिहाड़ काम लगरा करदा राती राती तक आजकल अरे भाग दौड़ रही जिंदगी मंज माणू कठ जे जो भी बोलो भाई बड़ा भारी बकते नहीं आ देखो है ना। पर एड़ा भी चलो तुसे अपने कठे ज्यादा नहीं तो घटा लगट 20 मिनट काढ़ी लो देखा आपू कठे है ना। कुछ भी नहीं ज्यादा तुसा करना चलो जे तुसे दौड़ी भागी कने चली रहे हुआ दौड़ी रहे हुआ व्यायाम तो चलो आपू हुई जहाँ से भाई चली रहे तुसे चढ़ाई लग रहे चढ़ दे उतराई लग रहे उतर दे दौड़ी रहे है ना से हुई गया मतलब चलो नहीं कित्या। पर एड़ा भी योगा प्राणायाम तुसे थोड़ा बहुत जैसे करी सकाएं देखा भ्यागा क्या करना तुसा भाई बेतड़ के उठाएं देखा अपने गर्म जे पानी पी आए बे ज्यादा मतलब नहीं अभी सूत्रे उठते मुझे लगता कोई भी पींदा होगा अभी चाह पिया थे जिया जे पहले बे कोसा पानी तो सब पींदे होंगे देखा है ना। फिर तेतले बाद अपने जिया अपने थोड़ा बहुत योगा जिया प्राणायाम करी लित्या। पहले देखा अपने शरीर जो ऑक्सीजन देने कठे अनुलोम विलोम करना बड़ा भारी जरूरी है देखा ज्यादा नहीं करना तुसे 3-4 मिनट करो लंबे लंबे सह एक ही नाका बटे ते लैना दूजे ते काढ़ी देना जिया जे तो इं करी कने तुसे 3-4 मिनट इदियो करी लो अभी ज्यादा ले ज्यादा चलो नहीं वक्त है 5 मिनट तो भाई चलो करना चाहिए पर चलो इतना भी करो से भी बहुत आ तो असरे भाई खुली हवा मंज करना थोड़ा जिया तू सरे बहार जिया नहीं आ जाने तो अपने बालकनी मंज खड़ी गए तेती ब्रांडे मंज खड़ी गए आंगना कर लित्या तेते बाद थोड़ा तुसे भस्त्रिका कर लित्या है ना। भस्त्रिका तेड़ा भाई जिया जे लंबे लंबे सह लिते और छाडे लए ते फेफड़े और सारे दिल जे से बिल्कुल ठीक रहा है देखा है ना। और भ्रामरी जे आ सारा सिर दिमाग नाक कान गला इन्ना जो ठीक रखा मतलब नाक कान गले कट्ठे ऐसा उच्चाई करना पवा देखा है ना। तो ये भी तुसे 2-3 मिनट कित्या 2 मिनट भी भस्त्रिका कर लो ना तुसे और 2 मिनट भ्रामरी करी लो तो बड़ा भारी हो जाता कितने हुए 4-2 4-4

60 मिनट हुए दिखाए ना कपाल भाती आ सारे पेटा गठे बहुत बढ़िया हुआ देखा। आ सारे पेटा री जितनी भी नाड़ियाँ आई खाने रजियाँ जहाँ सारी पाचन शक्ति वगैरह से सब आ सारी कपाल भाती थे ठीक हुई जाए देखा। क्या करना सिर्फ पेटा आगे पीछे रह कर दे लाए ना कुछ करना नहीं कराना नहीं बैठना तू से करना है ना। तो देखो मतलब छोटी छोटी चीज़ें आई होती तारे जे शरीर आ सारा ठीक रह देखो है ना। तो तियाँ ही उज्जई कर लीत्या तो उज्जई ते आ सारा गला जे ऐसे बिल्कुल ठीक हुई जा होर ओम रा उच्चारण करी कने तो शरीर आ सारा पूरा एक तो देखो थोड़ा जे अध्यात्म भी हुई जा भगवान रा नाम भी हुई जा तो बोला भी ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों आए ओम बिच है ना। और थोड़ा जे ध्यान भी एवं और ऊपर दिमाग ते लेके पैरा तक करी न संजे या सारे ओम बोलने ते जैसे से खुली जाए देखा। तो क्या जे लग्या 15 मिनट लगने तू सारे दिजो तो 15 मिनट बिच देखो पूरा दिन तू सारा कितना बढ़िया जा देखा और मन कितना स्वस्थ हुई जा तू सारा और सोच आ सारी इतनी सकारात्मक हुई जाए ना सारी सोच मन जितना फर्क पाओ आपू देखना तू महीना भर करी कने देखा गलाने ते नहीं हुंदा ए करने ते हुआ देखा। और जे थोड़ा जे वक्त आ तो सूर्य नमस्कार कर लो ना तो इत्ता विच कितने आसन आई जाए देखा सारे ही है ना। 5 कर सूर्य नमस्कार करी लो ना तुसे ता इतारा ता इतना फायदा हुआ सारे पूरे शरीरा मंज मतलब हड्डियां ते लई कने मांसपेशियां ते लई के सब जे या सारे बहुत बढ़िया हो जाए। तो देखो जीवन एक बार मिला देखा इतना जो बीमारी मंज नहीं गुआओ देखा है ना। चलो कुछ तो ऐड़ी चीज़ा वहीं सो भगवान ना हाथा वहीं पर फिर भी अपनी सोच भी बढ़िया रखो अपना शरीर भी ठीक रखो अपना पर्यावरण भी स्वस्थ रखो बढ़िया मतलब साफ सुथरा रखो। जब सब कुछ स्वस्थ आ तो फिर जीने रा मजा ही कुछ हो रहा तो मंज आनंद ही आनंद आ देखो है ना। तो ये तो हुई जी गलबात जाते जाते एक बढ़िया जो लोकगीत सुनाई लाएँ।

मंडयाली कार्यक्रम अभी आपने सुना। आकाशवाणी शिमला से अभी आप सुन रहे हैं हिमाचली बोलियों के कार्यक्रम। लीजिए अब पेश है पंगवाली कार्यक्रम।

आकाशवाणी शिमला बिल्दी 5:26 भरे पेश है तू अपना मनपसंद पंगवाड़ी बोली कार्यक्रम। पंगवाड़ी बोली कार्यक्रम सुनने वाले सभी जने ब्रह्मदत्त शर्मा तरफा बिल्दी नमस्ते। जी तो सुनने वाले अखबार फिर तुम से भैणी के स्वागत है। स्वागत करता जितने भी हैं कार्यक्रम सुन लो रे भले इसे रेडियो पर मोबाइल पर चलती मोटर कार अंतर से भैणी के अखबारी स्वागत है। कार्यक्रम अंतरांश बदे ने लोक गीता ते आज गणे जे कलाकार आई से शांति विष्ट शेर सिंह जरियाल प्रेम सिंह तथा रतने सैथी की आवाज़ अंतरा से बदे ने लोकगीत सुनाने ही सुनाने आई। लेकिन आज गणी जी से गलबात करनी है इसती से महिला सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण पुठा से गलबात करनी है और समाज अंतर जमीनी बदलाव का हिसाब है यही सकते तस पुठे भी से गलबात करनी है। और आजकल जे मतलब जे हैं खास करके कृषि पद्धति है और पंगवाल समुदाय जे तस पुठे आत्मनिर्भर कृषि पद्धति के हिसाब है कम काज करता तस पुठे भी से गलबात जे तसे तुह जे करनी है। लेकिन कार्यक्रम में जे शुरुआत हस्ती से आज से कनिए बदिया लोकगीत जाई तो पेशाई शांति विष्ट आवाज़ अंतर बदिया लोकगीत तो सुना लोकगीत फिर लें तो गलबात।

शांति विष्ठा आवाज इंत्रो बेदे लोक गीत सुनने वाले सुनो जरूर आनंद नियर होना सुनने वाले में तुम्हें जो गल लान लो कि जे महिलाएं अस्ती तन्हें समाज अंतर की रोल रहता और महिला सशक्तिकरण समाज अंतर जमीनी बदलाव जे तसे कैसे सावे यही सकते। देखो जी आजकल जे दौर जो आजकल जो दौर चलो रहा पंचायती राज संस्थाएं तथा जे महिला अस्तित्व ने भागीदारी ग्रामीण भारत अंतर और अख जे सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक बदलाव कन दिया बड़ा माध्यम बन करके उभरो रही। भारतीय संविधान 73वें संशोधन द्वारा जे आरक्षण हती रहा महिलाएं से केवल तन्हें सीट दी नहीं मतलब पद दी नहीं हथियार बल्कि समाज अंतरक नई सोच नई पहचान और निर्णय निर्णय शक्ति जे तन के से भी आई। देखो जी गल ये कि अगर अस आरक्षण अगर अस गल रहे हो खास करके राजनीतिक दृष्टिकोण जे तो आरक्षण जे अस्ता ता आज लाखों ग्रामीण जे महिलाएं अस्ती से अपो जे घरे जसनों बोते ना कि चौखट लंग करके और सीधे नीति निर्माण अंतर हिस्सा जाए तसे बन लगोरी जन्हें बेली कि जिन्हें अभूतपूर्व राजनीतिक समझ और आत्मविश्वास जाए तसे पैदा भोन लगोरा। अगर चार दीवारियां क्या घूंघट क्या उठाई करके घर जाए ता घूंघट क्या उठाई करके और जे घरे जे चौखट आई तसे सीमा लंग करके अगर बहरे निसेली तो मतलब समाज अंतर रख नया बदलाव और नई समझ और नया आत्मविश्वास पैदा करने जे शक्ति अस्ती से जे आज की जे महिलाएं अस्ती तने ग्रामीण भारत अंतर सामाजिक राजनीतिक आर्थिक बदलाव देख बहुत बड़ा माध्यम बन के से समाज के सामने अगर ये रही। और प्रशासनिक क्षमता अगर गल कहूँ शुरुआती दौर अंतर जे यानी के पति सरपंच आई महिला प्रतिनिधि स्थान पुट है तो जे तसे जे बता रहा है से कम का था। अख रूढ़ीवादी जे आई सोच से मतलब समाज अंतर कोड़ी न कोड़ी हिंदी हथीन दी थी लेकिन अब जे महिलाएं अस्ती खुद अपू फाइलें पढ़ना बजट बढ़ाना और जे अधिकारी अस्ते तने तक दस्तावेज पुजाने और सीधे तौर पुट यानी कि आमने सामने बात जे आई तक से सक्षम भेंगे रही। देखो जी पहले ग्रां अंतर की भूतो कि भाई सुबह क्या बड़ी बात ही थी कि राजनीति अंतर जे महिलाएं थी तेने भागीदारी बहुत ही कम थी लेकिन समाज अंतर अब जे आई ता शिक्षा महत्वपूर्ण अखर मतलब अहम भूमिका निभाण लगोरी और अब इन्हों नहीं कि भाई सिर्फ जे जैसे बता रहा है जे तैसे जीवन साथी आस्ता से तैसे सहायता करता लेकिन अब पढ़ी लिखी महिलाएं आई पढ़ी लिखी जनता आई समाज आई और तथंतर जे तसे सब मिली करके कम जे तसे सरकार तक अपू अपू जे मतलब कोई समस्या आती समाज अंतर या ग्राम अंतर पंचायत अंतर से समस्या जे आती तसे जे ऑफिसर आते तेने तक घाई करके अपू सीधे बात जे तसे कर सकते। आत्मनिर्भर और आर्थिक आत्मनिर्भरता पुठे जे तसे मतलब ऐस पुठ भी कम कन लगोरी परिवार नेतृत्व और परिवार जे आर्थिक स्थिति अगर कोई डगमगई थी महिलाएं जे अस्ती तस्थितियाँ सुधारने दी अहम भूमिका जे तसे निभाती। पुरुषवादी समाज या पुरुषवादी सोच नहीं करके समाज अंतर जे कम करने वाला जे तबका अस्ता लेकिन तसे जे गृहिणी आई महिला जे अस्ती अगर से आत्मनिर्भर आई पढ़ी लिखी अस्ती तो तसे से मतलब आर्थिक बोझ जे अस्ता तस विषय अख बिल्कुल सामान्य तरीके जे तसे बैलेंस करने जे आई तसे महिला जानती। आर्थिक निर्भरता ही अगर गल जे नेतृत्व अगर संभालन अस्ता तस महिलाएं तो तसे सामाजिक स्थिति मजबूत करनी है और साथ ही साथ जे ग्रां अंतर हुरी भी महिलाएं अस्ती स्वयं सहायता समूह बनाई करके सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाई करके सरकारें जे त्रिभ योजनाएं अस्ती से ग्रामीण महिलाएं जे जुड़ी करके तन्हें रोजगार पैदा करन दी और तन्हें जे जुड़ी करके कम करके समाज अंतर पंचायत अंतर प्रदेश अंतर देश अंतर अख बदलावे जे स्थिति जे पैदा करने जे क्षमता अस्ती से आजकनी महिला जे अस्ती तस्के अस्ती तो सशक्त महिला ताई बनी सकती अगर अस तस बिल्कुल

तरीके जे अगर समाजा सामने आते घेण दिएल और राजनीतिक प्रशासनिक आर्थिक आत्मनिर्भरता बनाने दी आस्ते अगर आस्ते से सहयोग करेल तो जरूर समाज अंतर जे अत बदलाव आना है। सो भेंके पहला बदलाव जे आता तो अपू परिवार अंतरान आता तस फिर आर्थिक स्थिति तस मजबूत करनी है फिर प्रशासन के घय करके जे भी समस्या आती पंचायत अंतर जे जुड़ोरी समस्या आती से तस ठीक करवाने आई और साथ ही साथ समाज सरकारें अगर कोई भले ही से प्रदेश सरकार भूल या केंद्र सरकार भूल तो एने जे जुड़ी करके जे भी सरकारें स्कीम्स इनती योजनाएं इनती महिलाएं जे तद बढ़ चढ़ करके तने भाग नहीं करके तने स्वयं सहायता समूह बनाई करके सरकारें जे योजनाएं आई तने अंतर्गत जुड़ी करके समाज अंतरक बदलाव जे तस आन आस्ता तो प्राथमिकताएं जे तने बदलाव अंतरान से बड़ा जरूरी आस्ता। सुबह क्या पहले महिला जनप्रतिनिधि तने इणे बेली पंचायत अंतर जे ते एजेंडे आई से बदलीण आस्ते और बैठके आस्ते तो बैठ के अंतर जे खास करके सड़क आई या नालियाँ आई साथ साथ शुद्ध पेयजल आई शौचालय आई या फिर स्वास्थ्य जे जरूरी समस्याएं अस्ती महिला आंगनबाड़ी बाल विकास परियोजनाएं जे पोषण और बाल शिक्षा जिनी जे त्रिविध से बुनियादी सुविधाएं आई तक पुट ध्यान दे करके तने पुट कम करना जाए तस झलैन जाए तसे करना आस्ता। तो अगर अस तने चीज़ें अस मतलब तने अगर ईण दिएल तो समाज अंतर जे तसे बदलाव ईणा मुश्किल आस्ता। देखो जी अख महिला अस्थी से बड़े अच्छे तरीके जे समझती कि भाई खास करके जे पोषण आस्ता जे बालवाड़ी जे केंद्र आस्ते मतलब तने आंगनबाड़ी जो केंद्र आस्ते तैड़ी जे तक गभरू कैसे साव है तस मतलब डाइट हथियर लेटी तस पोषण भोरा लेटा और जनीब की बुनियादी सुविधाएं जन कि जना कि पानी है शौचालय है स्वास्थ्य है और जे सड़कें है या ग्रां अंतर कोई लाइट लगनी आस्ती है ना जी या कोई नाड़ी के कम आस्ता मतलब पानी ड्रेनेज पाइप आस्ती और साफ सफाई है ना जी मतलब एने चीज़ें पुठे कम करना जाए तसे बड़ा जरूरी है और महिलाएं बड़े बरीकिया जे अच्छी चीज़ समझती समाज अंतर जे कुरीति आस्ती तेने पुट प्रहार करना जे महिला अगर नेतृत्व वाली महिला भूल तो खास करके समाज अंतर जैसे खास बाल विवाह आए घरेलू हिंसा आए कन्या भ्रूण हत्या आए पर्दा प्रथा जिनी जिनी के हैं समाज अंतर जे रूढ़िवादी परंपरा के खिलाफ जे तसे ग्रामीण स्तर पर उठे मजबूत आवाज़ उठान भी आई तस और मजबूत आवाज़ बनी करके समाज अंतर तस कम भी करना आए लेकिन भूणुताएँ आई जाए अगर अस महिला जनप्रतिनिधियाँ अस अगर ईण दिएल और तनिया जे सहयोग करेल तो और सुरक्षित माहौल का हिसाब बनाना है पंचायत अंतर अगर महिलाएं कहीं भागीदारी मौजूद भूल तने मौजूदगी भूल तो आम ग्रामीण जे महिलाएं तसपू शिकायतें घिन करके ईणु अस्तु और तने अपू बात जे तो बड़े आसानियाँ जे और बड़े सुरक्षित तरीके जे ते से जे जनप्रतिनिधि चुनो रास्ता तस जे तस कनी आई तो पंचायती अंतर जे महिलाएं की जे भागीदारी है अ चीज़ ई साबित करन लगो रही कि केवल मतदान ही नहीं मतदाता भी नहीं बल्कि कुशल प्रशासक भी जे तसे अंतर कम करना जरूरी आस्ता। हालांकि जे हैं पुरुष प्रधान सोच अस्ती तो साक्षरता अंतर जे कमी अस्ती तने अंतर चुनौती जे आज भी मौजूद अस्ती। इन्हों नहीं कि भाई इससे साक्षर बन गया और पूरा 100% समाज जे साक्षर हो गया तो फिर भी ग्रामीण भारत अंतर जे महिला नेतृत्व अवस्था अख मौन क्रांति जना कमकन लोगोरा जो जे कि अख भविष्य अंतर जे हैं समावेशी विकास आस्ता समाजे नींव जे तसे तत्पुठे टुको रही है। अगर समाज अंतर महिला जनप्रतिनिधि जी अस्ती तसे बढ़ चढ़ करके भाग नियेल और जे जने जने में स्तु हैं जे कि समस्याएं बताई भले ही से सामाजिक है आर्थिक है प्रशासनिक है या फिर जे प्राथमिक बदलाव आस्ते खास करके स्वास्थ्य आई और शुद्ध पेयजल आई शौचालय आई बाल पोषण बाल शिक्षा आई जने कि बुनियादी जे कम आस्ते अगर हने पुठे कम करेल तो मतलब ग्राम लेवल पुठे हंस जाए तो विकास है ना तो शुरू हुई हैं था। अब ई गल भी नहीं कि भाई पुरुष प्रधान अगर समाज भोल और पुरुष अगर पंचायत अंतर अगर काम करल से न कते कानून तने भी आई एनू नहीं कि भाई सिर्फ महिलाएं कर सकती महिलाएं जे तो तस चीज़ बारे के जे समझ करके ज़्यादा कम जे तो कर सकती और जे कि खास करके महिलाएं जे समाज अंतर बाल विवाह घरेलू हिंसा कन्या भ्रूण हत्या या पर्दा प्रथा जिनी समस्याएँ अस्ती तनी जे समस्या है आपू समाधान कम दीज महिला प्रतिनिधिया कहीं से अगर घय करके आपू बात थे सकती और से तस बड़ी अच्छी तरीके से तसे पीड़ा दुख दर्द जे कैसे करके जे प्रशासनिक अधिकारी आते तेने तक पुजाए करे आपू बात जे तस क्या फायदा जे और तसे जे हल तस मुसीबती हल जे आता तस कारण।

प्रेम सिंह तदर्थां तने साथी क्या आवाज इंत्रो बदे दिनों लोग गीत हैं सुने बड़े सुनो जरूर चाव ने रोना सुने गाड़े वही गल लान लो थी यह पंगवाल समुदाय आई से आत्मनिर्भर कृषि पद्धति का ससाव्य कथा। तो देखो जी हिमाचल प्रदेश जे हैं दुर्गम पांगी घाटी अस्थी और तैड़ी रहने वाला जे हर पंगवाल समुदाय जे अस्ता था से सदियाँ पूरी तरह जे अपू सदियाँ अंतर मतलब बड़े पहले के यहाँ पूरी तरह जे आख आत्मनिर्भर कृषि पद्धति जे तथा से पालन कर लगो रहा। भौगोलिक रूप जे पूरी तरह कटे भुने बेली भी साल अंतर लगभग 6 महीने बर्फबारी जे तर रहती और तसे कारण जे तो बाकी जे हिस्से क्या अलग रहने बजाय जे असमुदाय जे तर जीवित रहन दी और बाहरी संसाधनों पुठे निर्भरता जे अस्तित्व से शून्य कर छोड़ी। पंगवाल समुदाय जे ता आत्मनिर्भर कृषि व्यवस्था केवल सिर्फ आजीविका ही नहीं बल्कि अख जीवन शैली आधार भी अस्ता। जे हैं पारंपरिक और जे अनुकूलित फसलें अस्ती जे हैं समुदाय अस्ता और केवल तने फसलियाँ पुठे तने फसलियाँ उगानता जे कि कम समय पुठे अधिक ठंड और जीवित जे तसे रह सके। जना कि हैं जे स्थानीय अनाज अस्ते खास करके जसनों अस बोल सकते कुट्टू कुट्टू आटा भ्रेसा ओगला फाफरा जसनों अस बोल सकते और जौ भुइंगे गेहूँ भुइंग्या और स्थानीय तठी तठनी जे हैं लोकल उत्पाद अस्ते आलू वाई या फिर जे तठनी फसलें अस्ते स्थानीय तत्थंतर अत्यधिक पोषक तत्व जे तो भरपूर मात्रा अंतर मौजूद होते जानी जे बीज अस्ते द एज ए समुदाय आई सर्दिया अंतर भी खुद ही एस बीज जे तसे संभाल थानता संरक्षित करता। जे पारंपरिक सिंचाई आई जे हैं कुल प्रणाली अस्ती मतलब जे सिंचाई प्रणाली है तस्ना कुल बोते कुल प्रणाली जना कि मैं तुझे पहले भी तो हैं कि जे खाड़ी पहाड़ियाँ अंतर ग्लेशियर होते तसे तनी पहली से पिघल करके से जे पानी अस्ते पहाड़ी कहीं जे ढलान अस्ती से वापस नदियाँ दी इण वस्तु तो कुल जे अस्ती तो हैं पारंपरिक नहरें बनाई करके तनी माध्यम जहाँ बग्या तक रहते और पूरी तरह जे मुफ्त अंतर आत्मनिर्भर जल प्रबंधन प्रणाली जे अस्ती तो हैं दक्षिणी समाज जे है तसे सुरक्षित संरक्षित और तरीके जैसे कम कर लगो रहा। और सभी के महत्वपूर्ण बात यह है कि जे जैविक और प्राकृतिक खाद पूरी तरह जे जैविक और प्राकृतिक खाद पुठ जे तो दक्षिणी समाज जे तो निर्भर आई और बग बगविया अंतर अस मतलब जे ता जे रसायन बाड़ी युक्त बाड़ी जे खाद अस्ती कीटनाशक अस्त नहीं कोई इस्तेमाल न करते जे गई गोबर अस्ता गोबर खाद तसे अस इस्तेमाल करते साथ ही साथ भेड़ बकरी पशुपालन तठनी जे व्यवसाय अस्ता तस चीज जे कम करते रासायनिक खादी के तथा तड़ी तड़ी अनुपलब्धता है तड़ी अस ना आते न तड़ी से ईंती अगर ईंती भी तथा साथ ही नू कारण जो कृषि पद्धति आई से पूरी प्राकृतिक तौर पुठे अस जे आई तसे निर्भर आई और पंगवाल समुदाय अंतर जे भेड़ बकरी गाय तसे जे गोबर अस्ता और तस सुखाण करके और खास करके जंगल अंतना घास पत्तियार करके तस मिलाई करके पारंपरिक जे कंपोस्ट खाद अस्ती तस तैयार करते। हाल ही अंतर सरकार पैंगे जे ता प्राकृतिक खेती उपमंडल जे तसे घोषित किया लेकिन जे तठनी मैण वस्ते खास करके जे लोकल तठनी जे आप बग बगरियाँ खाद छटे बग अगर जंगल के यहाँ जे तो चीले पत्तियाँ आर करके तसे मिक्स करके बिल्कुल बग बगरियाँ जे तसे तनेरे खाद छटे। तो मिश्रित कृषि और पशुपालन कहने मतलब ये कि जे कृषि पशुपालन अस्ता एखर जे जुड़ोरे अस्ते भेड़ बकरियाँ जड़ी ऊन हतियाँ ती और खास करके जे मतलब मांस आई या दूध देने वाले जे पशु अस्ते तने थे करके जे हैं खेती जे तौर तरीके अस्ते से जे त कम करते और बैल जन्नो अस चूर बोते तने अस बग बगियाँ तने जे बांते और याक मतलब बैल अख याक मतलब संक

नस्ल आसती है जहन नौ चूर बोते है। तो ढलानदार और सीढ़ीदार जो खेत हंसते तेने हल जोतने कम जो है तेने आते सांझी या फिर सामुदायिक श्रम जो कम हंसते तस कैसे हिसाब कहते हैं ज़्यादा कठिन परिस्थितियाँ ज़्यादा कठिन समय तो जे खेत अंतरस बग बगवियाँ अंतरस बुआई कते कटाई कते कम समय पुठक्का नहीं भूंदे तो पूरा ग्रां जे तो मिल करके की हरियाँ से जे मदद कते और मजदूर जे तो बैरा ना आते और पंगवाल समुदाय जे है मतलब तेड़ी श्रम जे है शून्य लागत हस्ती कोई तेड़ी मतलब पैसे दे करके श्रम न करवाते तो पंगवाल समुदाय जे हस्ते तो आत्मनिर्भर कृषि पद्धति पुठे जे तरह से काफ़ी सदियों तक तो मतलब वो कम कन लगो रहा अगर भी यही काम जे है से चला रहा है और आधुनिक जो तकनीक हस्ती पर्यावरण नुकसान पहुँचाने बिना जे है से सुरक्षा सुनिश्चित की रही। छोटी गीत शेर सिंह जरियाले आवाज़ तो सुने श्लोक गीत

हिमाचली बोलियों के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पंगवाली कार्यक्रम। आइए अब सुनते हैं लोकगीत। शुरुआत करते हैं सुरेश वर्मा के गाए हुए इस लोकगीत के साथ।

अभी आप सुन रहे थे लोकगीत, ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। 6 बजने को हैं, थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के साथ साथ FM शिमला 103.7 MHz, मोबाइल ऐप और रेडियो की DTH सेवा पर भी सुना जा सकता है।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश सरकार चिट्टा मुक्त हिमाचल के संकल्प को जन आंदोलन का स्वरूप देने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने आज शिमला में कहा कि सरकार समाज के प्रत्येक वर्ग की भागीदारी से इस चुनौती का प्रभावी समाधान सुनिश्चित करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार जहां अपराधियों पर कानूनी शिकंजा कस रही है, वहीं नशे से प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए भी कारगर कदम उठाए जा रहे हैं। प्रदेश सरकार के चिट्टा मुक्त अभियान के साथ अभी तक राज्य में 2,34,000 से अधिक लोग जुड़ चुके हैं। ये लोग सरकार की आंख व कान बनकर नशे के कारोबार करने वाले की सूचना पुलिस तक पहुंचा रही है। इससे दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित हो पा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने चिट्टे का सेवन करने वालों और नशा तस्करों की पहचान सुनिश्चित बनाई है। प्रदेश भाजपा मीडिया संयोजक कर्ण नंदा ने आरोप लगाया है कि प्रदेश सरकार के जन विरोधी फैसलों के कारण हिमाचल देश का सबसे महंगा राज्य बन गया है। कर्ण नंदा ने आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता में कहा कि कांग्रेस 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने के वायदे पर सत्ता में आई थी, लेकिन अब पहले से मिल रही 125 यूनिट मुफ्त बिजली को बंद कर दिया गया है। यही नहीं, बिजली के दाम लगभग 5.5 रुपये प्रति यूनिट वसूले जा रहे हैं। उन्होंने सरकार से इस बढ़ोतरी को तुरंत वापस लेने की मांग की।
1: कांग्रेस सरकार अपने जन विरोधी निर्णय लेने में पीछे नहीं है और एक के बाद एक प्रदेश में बिजली बिलों के झटके यह कांग्रेस सरकार आम जनता को दे रही है। सरकार जब सत्ता में आई, प्रदेश में यह लोग 300 यूनिट बिजली देने की बात की थी और वो भी मुफ्त की। हिमाचल प्रदेश में मुफ्त बिजली तो गॉन, पर एक यूनिट बिजली भी अगर किसी की चलती है तो उस पर भी पैसा देना पड़ेगा। अगर 0 से 125 यूनिट जो बिजली मुफ्त मिल रही थी, अब उसके ऊपर 5.44 रुपये वो प्रति यूनिट के हिसाब से बिल आ रहा है।
0: कर्ण नंदा ने प्रदेश सरकार पर चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने कैबिनेट बैठक में कई लोक लुभावन निर्णय लेकर पंचायत चुनावों को प्रभावित करने का प्रयास किया है। उन्होंने चुनाव आयोग से इस संबंध में तुरंत कार्रवाई की मांग की है। प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के 26 मई को होने वाले पहले चरण के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पहले चरण के चुनाव के लिए पोलिंग पार्टियां कल 24 मई को अपने अपने मतदान केंद्रों के लिए रवाना होंगी। इन सभी पोलिंग पार्टियों को आज राज्य में अलग अलग स्थानों पर तीसरे व अंतिम चरण का प्रशिक्षण दिया गया। सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन में खंड विकास अधिकारी अंजलि गर्ग ने कहा कि इस ब्लॉक में पहले चरण में 10 पंचायतों में चुनाव होगा।
2: ब्लॉक नाहन में आज हमारी तीसरी रिहर्सल करवाई गई।

0: प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की और पोलिंग ऑफिसर्स की। तो इसमें लगभग हमारी 73 टीम्स की हमने आज ट्रेनिंग करवाई, तो कल मैं उनको रवाना कर देंगे अपने अपने स्थानों के लिए।
1: प्रदेश में 3 चरणों में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के विभिन्न पदों के लिए मतदान होगा। चुनाव आयोग ने पूरे प्रदेश में कुल 21,678 मतदान केंद्र स्थापित किए हैं। चुनाव ड्यूटी में करीब 35,000 कर्मचारियों की तैनाती की गई है। इसके अलावा सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पुलिस बल की भी पर्याप्त तैनाती की गई है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज 91 पैसे प्रति लीटर तक की वृद्धि हुई है। पिछले 10 दिनों में तेल के मूल्यों में तीसरी बार वृद्धि की गई है। ये वृद्धि ईरान संघर्ष और हॉर्मूज में व्यवधान के बाद वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल के बीच हुई है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि देश में पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता है और आपूर्ति स्थिर बनी हुई है। इस बीच पेट्रोल व डीजल के दामों में हो रही बढ़ोतरी से आम लोगों की परेशानियाँ बढ़ गई हैं। लोगों का कहना है कि बढ़ती कीमतों ने उनका बजट बिगाड़ दिया है।
2: पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं तो आम जनता के लिए तो बहुत मुश्किल की बात है, कहां से अपने पैसे पूरे करेंगे। तो मेरी विनती है कि पेट्रोल के दाम ना बढ़ाएं, इसको कम करें।
3: अब मैं एक टेम्पो चलाता हूं, टेम्पो में डीजल डलता है तो डीजल कम से कम 5 रुपये बढ़ गया है पर लीटर, तो इसमें मैं क्या कमाऊंगा। तो यही है कि डीजल थोड़ा कम हो।
1: प्रदेशवासियों को एक बार फिर जोरदार गर्मी का सामना करना पड़ेगा। मौसम विभाग ने 26 व 27 मई को ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, सोलन और सिरमौर सहित राज्य के 6 जिलों के अलग अलग स्थानों पर हीट वेव चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमानों के अनुसार 25 मई तक राज्य के लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलती रहेगी। विभाग ने इस दौरान प्रदेश के शिमला सहित मध्यम व ऊंचाई वाले अलग अलग स्थानों पर वर्षा और बर्फबारी की संभावना भी जताई है। इस बीच बीते रोज राज्य के अधिकांश स्थानों पर हुई वर्षा और अधिक ऊंचाई वाले कुछ स्थानों पर बर्फबारी से देशवासियों को चिलचिलाती गर्मी से हल्की राहत मिली है। आज भी राज्य के अनेक हिस्सों में दोपहर बाद से हल्के बादल छाए हुए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:45 पर। नमस्कार।
4: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के साथ साथ FM शिमला 103.7 MHz पर भी प्रसारित किया जा रहा था। कृपया हमारी अगली घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। हिमाचली बोलियों के कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। लीजिए अब पेश है कांगड़ी कार्यक्रम।

कार्यक्रम च अज तुसां जो असां जानकारी देनी है किसानां जो आधुनिक खेती बारे गल करनी है पर्यटन दी नज़रां च उभरदा हिमाचल इस दे अलावा बांके बांके लोकगीतां सौगी प्रदेश दी खबरसार भी लगानी है पर सारें ते पहले लैंदे हन परमात्मा दा नां सुनदे हन ये भजन जिस जो गाया है राजेश कुमार ने।

भोजन जो उपलब्धता बधाई करी, भोजन की गुणवत्ता दे सुधार करी, कने इस ते ज़्यादा लोकां लई ज़्यादा सौखा बनाया बनाया करी, दुनिया च राजनीतिक ठहराव च योगदान दिंदी है। कने दा मतलब है कि ये जड़ी नई तकनीका है हुण अगे अगे जड़ा है इस दिमा इसका ही इस्तेमाल किया जाता है, ज़्यादा तो ज़्यादा जड़ा है फसल लेने जोगी। तो दिखा ये असं गल की आधुनिक खेती बारे च, हुण सुनी लैंदे हन सुदर्शना दा गाया कार्यक्रम दा अगला लोकगीत।

महास्वी कार्यक्रम सुनने वाले के चंपा शर्मा रा नमस्कार भाई तुसे सब जने अपने घरे ठीक ठाक रहो यही मंगल कामना भगवान आप करूँ। तो देखो आज की जो मेरे तुसा साथी गलबात करनी से करनी आसा ध्वनि प्रदूषण और इतरे प्रभाव और अगली आसा जो गलबात करनी प्रकृति और संगीता रा संबंध कुछ खबरें भी उसो तुसा के लिए दी साथ ही साथ ही कार्यक्रम का तुसारा जो मनोरंजन करना से करना आसा लोकगीता साथी। तो देखो ध्वनि प्रदूषण और प्रभाव आसारे जो जीवना दा सो से बहुत बड़ो सो मानसिक परेशानी हो जाओ आ सके ध्वनि प्रदूषण और ज़्यादा ध्वनि प्रदूषणारे कारण जो सो से माणू के जो सो तिनारे चाल चलने चलनारे पांदे भी गहरा असर पाओ सो। इतफा अलावा पशु पांदे भी और पक्षी पशु पक्षी जितने भी जीव जंतु हो इत दुनिया दा तिना पांदे भी इतरा गहरा प्रभाव पड़ो सो। ध्वनि प्रदूषण अगर तुसे देखे जाओ तो ये मशीना द्वारा आने जाने वाले वाहन हो जितने भी हवाई जहाज हो और ट्रेन इतफा जो सो से ध्वनि प्रदूषण फैलो सो। घर अरे बाहर छोटे जे होने वाले जो ध्वनि प्रदूषण हो ते देखे पर्यावरण ध्वनि रे नावा फा भी जाना जाओ सो। किथी ना किथी कारखाने और भावना रा निर्माण आ री बचा फा भी जो सो से जो रोने वाले इलाके हो जीती माणू रहो सो तेती ध्वनि प्रदूषण हो जाओ सो। घर अरे ध्वनि प्रदूषण हमेशा मशीने इमारतों रे निर्माण और जो जोरा जोरा री संगीत चुनो ते तेरी वजह भाभी जो सो से प्रदूषण रा कारण बनी जाओ सो। जो कि कुछ इलाके के दा ओ सो और ए तेरी वजह भा ही इना दा दोनों भाई कोई अंतर नहीं हो सो चाहे से ध्वनि प्रदूषण या बाहरा बारला हो या भीतरा रहो इन्हें दा कोई भी अंतर नहीं हो सो। और तेते दा आसे आशा के आप बीच गलबात करनी हो कुछ बात कसके सुनानी हो तो से सुनना भी मुश्किल हो जाओ सो। ऐसे कसी साथी बात भी नहीं कर सकते हो सो या ऐसे बात भी अपनी साझा नहीं कर सकते।

जोसो ऊंची ध्वनि रे प्रभावारी बजा भाही जोसो से कई काना रे रोग भी उजाओ सो। जानवर दा ज्यादातर ध्वनि री बजा भाही तिनारी मौत भी उजाओ सो। ध्वनि जोसो से इतरा माप यंत्रा रे द्वारा ध्वनि के नापा जाई सको सो। और जो ध्वनियों सो तेते के ध्वनि प्रदूषण री बजा फाही आसरी सेता पांदे आसरी चाल चलन दोनों पांदे ही असर पावो सो। जो बाहरी और अंतरी ध्वनियों सो जो अंतर भीतरी ध्वनियों सो से मानसिक संतुलन आसारा बिगाड़ी देवो सो। ध्वनि प्रदूषणा रे बजा फाही जो सो हाइपरटेंशन उई जाओ सो और स्ट्रेस आदमी दा बढ़ी जाओ सो। आदमी रे कई बारी सुनने री जो शक्ति ओसो से जोरा जोरा री जो ध्वनि आओ सो ते तेरी वजह भा कान भी खराब हो जाओ और आसरी सुनने री शक्ति कम हो जाओ सो। कई बारी तो कई माणु दा ऐसा देखा जो ज़्यादा ध्वनि वाले इलाके दा रहो सो तिना री नींद हराम भी हो जाओ सो। तिना के नींद ना आने री बीमारी भी हो जाओ सो। ध्वनि ज़्यादा उन्हें भा जोसो से तबे पता चलो सो जब माणु री जोसो से रोज की जो गतिविधियाँ सो जिसे कि सूतने रही जो नींदों से खराब हो जाओ सो और तेस्ता चिड़चिड़ापन आई जाओ। और जब माणु दा चिड़चिड़ापन आई जाओ सो तो से ज़्यादातर ध्वनि प्रदूषण जो सो तितरा कारणों सो। तो ये जो ध्वनि प्रदूषण हो आसारे सारे पर्यावरण के आसारे सारे जोसो से जीव जंतु के माणु के जोसो से हानिकारक हो। इतनी तंखे जोसो से जितने भी मतलब आसारे वाहन हो सो अगर आसे ईशा भी कर सको सो कि अगर आदमी माणु किथे आने जाने लग रहे तो एक माणु कई बारी एक ही गाड़ी दा कल्ला बैठा था हो तो अगर आस पड़ोस हो तो साथारे माणु के आपी साथी नी सको सो और एक ही गाड़ी दा जाई रो तुसे जोसो से अपना जो काम हो सो अपने जो एक ही जगह का अगर जाना हो तो से तुसे अपने काम भी करवाई सको सो। और इतने प्रदूषण पा भी बचाओ हो जाओ। जोरा जोरा री जो गाने हो देखो गाने कई बारी आजकल के माणु जोसो से जोरा जोरा री गाने सुनो सो कई बारी गाड़ी दा भी जोरा जोरा री गाने हो लगे दे तो से जो ध्वनि प्रदूषण रा कारण बनी जाओ सो। और इत ए भी एक बीमारी रा कारण बनो सो। कई बारी घरे जोसो से गाँव दा जोसो से या घरे आस पड़ोस दा जोसो से बुजुर्ग और छोटे बच्चे जो सो से राम करते रहो या बीमार हो तो तिना के जोरा जोरा री जो गाने हो जो ध्वनि प्रदूषण हो से कई बारी तिना के चिड़चिड़ा स्वभाव तिना रा कर दो सो। तो ते तेरी वजह ना तिना के नींद आंदी ना तिना री भूख प्यास तिना रा सब कुछ उड़ी जाओ सो। तो ऐसे हमेशा ही जो अगर गाने बजाने सुनने भी हो तो से बड़े आराम साथी सुले जरूर सुनने हो ताकि जो आस पड़ोस दा माणु हो सो से भी परेशान ना हो। तो ये जो ध्वनि प्रदूषण हो ये आसारा जिंदगी का बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पाओ सो और आसारे जो जीवने रे तरीके सो से आसारे अस्त व्यस्त करी दो सो। तो इतनी तंखे आसे ध्वनि प्रदूषण फा आपूफा दूर रहना हो और अगर रोना ही रोना हो तिती तो मतलब के इतरे कुछ एक इसे इंतजाम करने हो ताकि आशा के पांधे इतरा कम प्रभाव पड़ो सो। तो ए थी कुछ गल बात ए भी सुन लो मैं आसे एक लू।

भाई ये सुना तो उसे बड़ी आजा लोकगीत और गाने वाले थे शिवदत्त ठाकुर और साथी। तो एबे देखो तुसा के आऊँ प्रकृति और संगीत रा का संबंध हो सो। तुसा के पता ही हो सो कि आसर ये जो ये सुंदर प्रकृति हो सो ये संगीत में हो सो। सृष्टि रे शुरुदाई संगीत मारे जीवना रा लगना होने वाला हिस्सा हो सो। और अगर देखा जाओ तो हर एक तत्व संगीतमय हो। कल कल करती नदियाओ या तबे संतूरा री तान छेड़ दे झरने हवा। रे साथी साथी मदमस्त झूम दे बाग बन ओ या तबे फुलारी खुशबू फा मदहोश गुनगुन कर दे भौरे हो सो। या तितलियाओ सो ये सभी संगीतारी एक पहचानो सो और ये संगीता के प्रकृति साथी जोड़ो सो। आसरी जो स्वर लहरियाओ इतरा जो इतरांदे नजर आओ सो। तो जो आसरी जबे भी बरखारी बूंदे गिरो सो तो से आशा के जो सुनने के बड़ी अच्छी लगो सो। एक ताला दा आसे जब से सुनू तो एक संगीता रा रूप देते दा झलको सो। जब दुपारी गर्माहटा के महसूस करो और जब ठंडी ठंडी हवारी कम कभी मारे भीतर तक जाओ सो तबे भी ये संगीत

ते तेरी आपार शक्ति रा अंदाजा एते बाता फा लगाया जाए सको कि मारे एती जो देवी देवताओं सो से भी बिना मुरली डमरू व वीणा फा बिना पूरे नहीं समझे गयो सो। इनारा एक नाव भी डमरू धर मुरली धर व वीणा वादनी फा भी जाना जाओ सो, जो कि बताओ सो कि भगवान भी संगीता फा बिना अधूरे सो। माणु रितो बाती काओ सो, संगीत माणु खे नहीं बल्कि और प्राणियों खे भी अपने बशादा करने री खासियत राखो सो। संगीत

येशुना तुसे गाना लोकगीत और गाने वाले थे सरना गर्ग। तो एबे कुछ खास खबरें भी उसो महंगा गई। तो मौसम बारे बारे कुछ गल बात कर लूँ मैं। प्रदेशवासियों के एक ही बारी जोरदार गर्मी रा सामना करना पड़ना। मौसम विभाग 26 व 27 मई के राज्य रे 6 जिले दा ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, सोलन व सिरमौर जिले दा अलग अलग स्थानों दा हीट वेव चलने रा येलो अलर्ट जारी करा। विभागों द्वारा पूरी पूर्वानुमानों रे मुताबिक 25 मई तई खे राज्य रे माणुओं के भीषण गर्मी फा राहत मिलदी रौनी। विभागों दा इस दौरान प्रदेशा रे मध्यमा व ऊंचाई वाले अलग अलग स्थानों दा बरखा व बर्फबारी री संभावना जताई रखी उसो। इस बीच बीते रोज राज्य रे अधिकांश स्थानों दा ओई बरखा व ज्यादा ऊंचाई वाले कुछ स्थानों दा बर्फबारी फा प्रदेशवासियों के चिलचिलाती गर्मी फा अड़की राहत मिलनी उसो। तो इथी खबर। तो ए वैसे जाते जाते एक लोकगीत तीन सुन लो मैं।

ये सुना तुसें गंगी और गाने वाले थे लेख रामपाल। कार्यक्रम हमारा वक्त भी लगवा उन्हें तो अब देखो लो मैं तुसा पाई इजाजत। सभी सुनने वाले के राम राम।

0: Wala field in Rajasthan. In a social media post, Mr. Puri said that the flow of natural gas for the first time from the Shalua Shanu formation at nearly 25,000 standard cubic meters per day marks a significant achievement. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal today said India continues to witness strong economic fundamentals and robust export growth amid global turbulence. He said the pace of export growth recorded in April has continued into May, reflecting the resilience of the Indian economy amid global adversities. Briefing media in New Delhi, Mr. Goyal highlighted that government has absorbed the burden of elevated fertilizer prices to protect farmers from rising input costs. The Ayushman Bharat scheme will start in West Bengal from July this year. Chief Minister Shubhendu Adhikari today announced it in Kolkata after a virtual meeting with Union Health Minister J.P. Nadda. The existing beneficiaries under the state health scheme, Swasthya Sathi, will be incorporated into the Ayushman Bharat scheme. The Memorandum of Understanding in connection with the Ayushman Bharat Arogya Mandir will be signed in June in New Delhi. In wrestling, Indian grapplers Suraj Vashisht and Sagar Singh advanced to the finals of the men's Greco-Roman categories at the Asian Under-23 Wrestling Championships in Da Nang in Vietnam today, assuring India of at least two silver medals. In the 60kg category, Suraj Vashisht edged past Kyrgyzstan's Nuristan to book his place in the final. And that is the end of this news bulletin.
1: एक सौ तीन दशमलव सात मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम शिमला का प्रसारण। 7:10 हुए हैं। लीजिए पेश है कृषि जगत कार्यक्रम।
2: कार्यक्रम के संक में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान और बागवान भाई बहनों को हमारा नमस्कार। इस अंक में मैं हूं यशपाल मेहता
3: और मैं दिनेश ठाकुर।
2: दिनेश जी, और सुनाएं, क्या हाल चाल है आपके?
3: बिल्कुल बढ़िया यशपाल, और उम्मीद करते हैं कि आप भी स्वस्थ होंगे और हमारे किसान और बागवान भाई बहन अपने कृषि और बागवानी के कार्य को अच्छी तरह से कर रहे होंगे।
2: बिल्कुल जी, देखिए जैसे जैसे हमारे किसान और बागवान भाई बहनों के खेती बाड़ी के कामकाज बढ़ते हैं, क्योंकि आजकल खेतों में खरपतवार नियंत्रण का कार्य काफी जोरों से चल रहा है, साथ ही साथ फसलों को समेटने का कार्य भी हमारे किसान और बागवान भाई बहने समय रहते कर रहे हैं, जिनसे उनको उनकी फसल का उचित मुनाफा मिले। तो कार्यक्रम की इस श्रृंखला में आज आप क्या कुछ खास लेकर आए हैं दिनेश जी, हमारे सभी किसान और बागवान भाई बहनों के लिए?
3: जी बिल्कुल यशपाल, आज के कृषि जगत कार्यक्रम में काम की बातों में हम अपने किसान और बागवान भाई बहनों को जानकारी देंगे दुधारू पशुओं में विभिन्न रोगों से बचाव हेतु टीकाकरण के महत्व के बारे में
2: जी,
3: साथ में पहाड़ी लोकगीतों से करवाएंगे मनोरंजन, जानकारीपूर्ण बातचीत का पुनः प्रसारण सुनाएंगे जिसका विषय रहेगा उपजाऊ खेती कैसे बांझ बन रही है।
2: बिल्कुल जी, तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में काम की बातों के तहत, आइए कर लेते हैं चर्चा दुधारू पशुओं में विभिन्न रोगों से बचाव हेतु टीकाकरण के महत्व के बारे में। जिस तरह से कहावत है कि इलाज करने से बचाव का इंतजाम ही बेहतर है, मवेशी या अन्य पशुधन के बीमार हो जाने पर उनका इलाज करने के बाद उन्हें स्वस्थ बनाए रखने का इंतजाम करना ज्यादा अच्छा है। पशुधन के लिए साफ सुथरा और हवादार घर स्थान, संतुलित खान पान और उचित देखभाल का इंतजाम करने पर उनके रोगग्रस्त होने का खतरा किसी हद तक टाला जा सकता है। रोगों का प्रकोप कमजोर मवेशियों पर ज्यादा होता है, उनकी खुराक ठीक रखने पर उनके भीतर रोग निरोधक क्षमता बढ़ती है। स्थान की सफाई होने से परजीवी से फैलने वाले रोगों और छूत की बीमारियों से मवेशियों की रक्षा करती है। सतर्क रहकर पशुधन की उचित देखरेख करने वाले पशुपालक बीमार पशु को झुंड से अलग करके अन्य पशु को बीमार होने से भी बचा सकते हैं। इसीलिए पशुपालकों और किसान बागवान भाई बहनों को कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है।
3: जी बिल्कुल, किसान भाइयों बात करें किन किन बातों का आपने ध्यान रखना है, तो उसमें पशुधन को प्रतिदिन ठीक समय पर भर पेट पौष्टिक भोजन चारा दाना दिया जाना चाहिए। इनकी खुराक में सूखा चारा के साथ साथ हरा चारा, खली, दाना व थोड़ा सा नमक शामिल करना जरूरी रहता है। साथ ही किसान भाइयों साफ बर्तन में ताजा पानी भरकर मवेशियों को आवश्यकता अनुसार पीने का मौका दें। मवेशी का स्थान साफ और ऊंची जगह पर बनाएं ताकि उसमें सूरज की रोशनी व हवा पहुंचने की पूरी पूरी गुंजाइश रहे। घर में हर मवेशी के लिए काफी जगह होनी चाहिए। स्थान की नियमित सफाई और समय समय पर रोगाणुनाशक दवाएं जैसे फिनाइल या दूसरी दवा के घोल से उसकी की धुलाई अवश्य करनी चाहिए और मवेशियों का दूसरे पशुधन के खिलाने की नाद ऊंची

0: जगह पर गाड़ी जानी चाहिए। नाद के नीचे कीचड़ ना जमने दें और घर स्थान से गोबर व पशु मूत्र जितना जल्दी हो सके खाद के गड्ढे में डालने का इंतजाम कर लेना चाहिए। और साथ ही किसान भाइयों, स्थान को प्रतिदिन साफ कर कूड़ा करकट खाद के गड्ढे में आपने डालना है।
1: बिल्कुल जी, इसके अलावा कुछ एक बातें आपको और ध्यान रखनी होगी, जैसे कि मवेशियों को प्रतिदिन टहलने फिरने का मौका दिया जाए, मवेशियों के शरीर की सफाई पर पूरा पूरा ध्यान दें, उनके साथ प्यार भरा व्यवहार करें। मवेशियों में फैलने वाले अधिकतर संक्रामक रोग स्थानिक होते हैं। ये बीमारियां एक बार जिस स्थान पर जिस समय फैलती है उसी स्थान पर और उसी समय बार बार फैला करती है, इसीलिए समय से पहले ही मवेशियों को टीका लगाने का इंतजाम करना बेहद जरूरी है। टीका पशुपालन विभाग की ओर से उपलब्ध रहने पर नाममात्र का शुल्क लेकर लगाया जाता है। खुरपका मुंहपका का टीका प्रत्येक वर्ष पशु स्वास्थ्य रक्षा पखवाड़ा के अंतर्गत मुफ्त में लगाया जाता है।
0: जी बिल्कुल यशपाल, और बात करें मवेशियों के प्रमुख रोग कौन कौन से हैं, तो मवेशियों में कई तरह के रोग फैलते हैं। इन रोगों को तीन वर्गों में बांटा जा सकता है, जिसमें पहला संक्रामक रोग या छूत रोग, दूसरा जो है वो सामान्य रोग या आम बीमारी जिसे हम कहते हैं, और तीसरा परजीवी जन्य रोग। संक्रामक रोग छूत की बीमारियों के बारे में बात करें तो संक्रामक रोग संपर्क या छुआछूत से एक मवेशी से अनेक मवेशियों में फैल जाते हैं। किसानों को इस बात का अनुभव है कि ये संक्रामक रोग आमतौर पर महामारी का रूप ले लेते हैं और संक्रामक रोग प्राय विषाणुओं द्वारा फैलाए जाते हैं, लेकिन अलग अलग रोग में इसके प्रसार के रास्ते अलग अलग होते हैं। बात करें मुंह खोर रोग में विषाणु पशु की लार से गिरते रहते हैं और पानी में घुसकर उसे दूषित बना देते हैं। इस पानी के पीने से पशु उसके शिकार हो जाते हैं। यदि गांव या पड़ोस के गांव में कोई संक्रामक रोग फैल जाए तो मवेशियों के बचाव के लिए कुछ उपाय करने जरूरी रहते हैं।
1: बिल्कुल जी, सबसे पहले रोग के फैलने की सूचना अपने हल्के के पशुधन सहायक या पशुपालन विभाग के पदाधिकारी को देनी चाहिए और इसकी रोकथाम का तुरंत इंतजाम करना चाहिए। अगर पड़ोस के गांव में बीमारी फैली है तो उस गांव से मवेशियों या पशुपालकों का आवागमन बंद कर देना चाहिए। सार्वजनिक तालाब या आहार में मवेशियों को पानी पिलाना बंद कर दें। सार्वजनिक जगहों पर पशुओं को भेजना तुरंत बंद कर देना चाहिए। रोगग्रस्त पशुओं को अन्य स्वस्थ पशुओं से अलग रखना चाहिए। संक्रामक रोग से भरे पशुओं को इधर उधर आपको नहीं फेंकना चाहिए। मृत पशु को आप 5 से 6 फुट गहरे गड्ढे में गहरा गड्ढा खोदकर चूने के साथ विधि पूर्वक उसको दबा दें। जिस स्थान पर बीमार पशु रखा या मरा हो उस स्थान को फिनाइल के घोल से अच्छी तरह से धो दें या वहां पर चूना आप छिड़क दें ताकि रोग के जीवाणु और विषाणु नष्ट हो जाए।
0: जी बिल्कुल, और साथ ही किसान भाइयों, गलघोंटू के बारे में अगर हम बात करें तो ये बीमारी गाय भैंस को ज्यादा परेशान करती है। भेड़ों व सूअरों को भी ये बीमारी लग जाती है। इसका प्रकोप ज्यादातर बरसात में देखा जा सकता है। इसके लक्षणों के बारे में बात करें तो इससे शरीर का तापमान बढ़ जाता है, पशु सुस्त हो जाता है और रोगी पशु का गला सूज जाता है, जिससे खाना निगलने में कठिनाई होती है, इसलिए पशु खाना पीना छोड़ देता है। किसान भाइयों, सूजन इससे गर्म रहती है और उसमें दर्द होता है। पशु को सांस लेने में तकलीफ होती है और किसी किसी पशु को कब्ज व किसी को पतला दस्त भी होने लगता है। बीमार पशु 6 से 24 घंटे के भीतर मर भी सकता है और पशु के मुंह से लार गिरती रहती है।
1: गलघोंटू रोग की रोकथाम के लिए आप क्या करें कि संक्रामक रोग से बचाव और उनकी रोकथाम के सभी तरीके अपनाना आवश्यक है। रोगी पशु का तुरंत इलाज कर दें। बरसात से पहले रोग निरोधक टीकाकरण आप अवश्य करवा लें। इसके मुफ्त टीकाकरण की व्यवस्था विभाग द्वारा की जाती है। अब बात करें जहरवाद यानी कि लंगड़ी ज्वर रोग के बारे में। ये रोग भी ज्यादातर बरसात के दिनों में फैलता है। इसकी विशेषता ये है कि ये खासकर 6 महीने से 18 महीने के स्वस्थ बछड़ों को ही अपना शिकार बनाता है। इसको सूजवा के नाम से भी पुकारा जाता है। इसके लक्षणों की बात करें तो इस रोग से ग्रस्त पशु का पिछला हिस्सा सूज जाता है, पशु लंगड़ाने लगता है, किसी किसी पशु का अगला पैर भी सूज जाता है। सूजन धीरे धीरे शरीर के दूसरे भागों में भी फैल जाती है। सूजन में काफी पीड़ा होती है और उसे दबाने पर कुड़कुड़ाहट की आवाज आती है। शरीर का तापमान 104 डिग्री से 106 डिग्री तक हो जाता है। बाद में सूजन सड़ जाती है और घाव भी बन जाता है। इसके उपाय के लिए आप क्या करें कि संक्रामक रोग से बचाव और उनकी रोकथाम के तरीके आप समय रहते अपनाएं। पशु चिकित्सक के परामर्श से रोगग्रस्त पशुओं का इलाज करें। बरसात से पहले स्वस्थ पशुओं को इस रोग का टीका भी अवश्य लगा दें।
0: जी बिल्कुल, और साथ ही किसान भाइयों, बात करें प्लीहा,

0: जिसे हम एंथ्रेक्स भी कहते हैं उसके बारे में, तो ये भी भयानक संक्रामक रोग है। इस रोग से ग्रस्त पशु की शीघ्र ही मृत्यु हो जाती है। इस रोग के शिकार मवेशी के अलावा भेड़, बकरी और घोड़े भी होते हैं। लक्षणों की अगर हम बात करें तो इससे तेज बुखार 106 डिग्री से 107 डिग्री तक पहुंच जाता है। मृत्यु के बाद नाक, पेशाब और गोबर के रास्ते खून बहने लगता है और ग्रस्त पशु के शरीर के विभिन्न अंगों में सूजन आ जाती है। प्लीहा काफी बढ़ जाती है और पेट फूल जाता है। इसके लिए किसान भाइयों, आप संक्रामक रोग की रोकथाम व उनसे बचाव के तरीके अपनाएं और पशु चिकित्सक की सेवाएं प्राप्त करें। ये रोग भी स्थानिक होता है, इसलिए समय रहते टीकाकरण करने से बीमार होने का खतरा नहीं रहता।
1: बिल्कुल जी, अब बात करें खुरपका या मुंहपका फुट एंड माउथ रोग के बारे में। ये रोग भी संक्रामक रोग है। इसका संक्रमण बहुत तेजी से होता है। यद्यपि इससे ग्रस्त पशु के मरने की संभावना कम रहती है, बल्कि इस रोग से पशुपालकों को काफी नुकसान होता है, क्योंकि पशु कमजोर हो जाता है, उसकी कार्य क्षमता और उत्पादन काफी दिनों के लिए कम हो जाती है। ये बीमारी गाय, बैल, भैंस के अलावा भेड़ों को भी अपना शिकार बनाती है। इसके लक्षणों की बात करें तो इसमें पशुओं को बुखार हो जाता है, भोजन में अरुचि पैदा हो जाती है, मुंह और खुर के पहले छोटे छोटे दाने निकलने लगते हैं और बाद में पककर घाव बन जाता है। इसके उपचार के लिए आप क्या करें? संक्रामक रोग की रोकथाम के लिए उनका उपाय करें। मुंह के छालों को फिटकरी के 2% घोल से आप साफ करें। पैरों के घावों को फिनाइल के पानी से धो दें। पैरों में तुलसी और नीम के पत्ते का लेप लगाना भी फायदेमंद हो सकता है। गांव में फुटपाथ बनाकर उसमें रोगग्रस्त पशुओं को गुजरने का मौका दें। घाव को मक्खी से बचाना बेहद जरूरी है। इसके अलावा पशुओं को साल में 2 बार 6 माह के भीतर रोग निरोधक टीके भी आप जरूर लगाएं।
0: जी बिल्कुल, और साथ ही किसान भाइयों, अगर हम बात करें दुधारू पशुओं में टीकाकरण के समय के बारे में, तो सबसे पहले खुरपका व मुंहपका रोग के लिए जो आपने टीका लगवाना है वो 4 माह के भीतर लगाना है। दूसरा टीका 2 से 4 सप्ताह के बीच में आपने लगाना है, यानी साल में 2 बार खुरपका व मुंहपका रोग के लिए आपने टीका लगवाना है। गलघोंटू की बात करें तो गलघोंटू का पहला टीका 6 माह के भीतर और साल में 1 बार वर्षा से पहले ये टीका आपने लगाना है। लंगड़ा बुखार के लिए आपको साल में 1 बार इसके लिए टीकाकरण करना जरूरी रहेगा और एंथ्रेक्स के लिए 4 माह से 4 माह के ऊपर और साल में 1 बार आपने एंथ्रेक्स का टीका जरूर लगवाना है।
1: बिल्कुल दिनेश जी, तो कार्यक्रम में काम की बातों के तहत आज हमने अपने किसान और बागवान भाई बहनों के साथ जानकारी साझा की दुधारू पशुओं में विभिन्न रोगों से बचाव हेतु टीकाकरण के महत्व के बारे में। तो हम गुजारिश करेंगे अपने किसान और बागवान भाई बहनों से

0: किसान और बागवान भाई बहनों, अभी आपने सुना ये पहाड़ी लोकगीत। अब कार्यक्रम में जानकारी के सिलसिले को फिर से जारी किया जाए, एक और जानकारी पूर्ण बातचीत आप सभी के साथ साझा की जाए,
1: जिसका विषय रहेगा उपजाऊ खेती कैसे बांझ बन रही है। बातचीत में भाग ले रहे हैं खेमचंद कश्यप और उनके साथ बातचीत कर रहे हैं यशपाल।
0: श्रोताओं नमस्कार, कार्यक्रम के संग में आप सभी का स्वागत है। आज के संग को लेकर हाजिर हूं मैं यशपाल। आज हमारे बीच मौजूद हैं सफल किसान श्री खेमचंद कश्यप जी, जो कि काफी वर्षों से खेती बाड़ी के व्यवसाय से जुड़े हैं। तो सबसे पहले खेमचंद कश्यप जी, आपका आकाशवाणी के स्टूडियो में और कार्यक्रम के संग में जुड़ने पर हम आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं।
2: धन्यवाद जनाब।
0: खेमचंद कश्यप जी, जिस तरह से कि आज आपसे हमारा चर्चा का विषय रहेगा, उपजाऊ खेती कैसे बांझ बन रही है, यानी कि हमारे किसान और बागवान भाई बहने जो हैं खेती तो करते हैं, उनकी जमीन भी उपजाऊ है, लेकिन इसके बावजूद भी वो किस तरह से अपनी फसल का मुनाफा नहीं कमा पा रहे हैं, उस विषय पर हम आपसे थोड़ी सी चर्चा करेंगे।
2: यशवाल जी, आपने बहुत ही अच्छा एक विषय चुना है और मुझे आमंत्रित किया है, आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। आज की खेती जो है, आधुनिक तकनीक होते हुए हम जो है अपनी खेती को छोड़ रहे हैं
0: जी,
2: इसके पीछे बहुत से कारण है, वो हम इस चर्चा में ही सम्मिलित कर लेंगे। इसमें सबसे बड़ी बात है कि एजुकेशन होते हुए भी हम कहीं ना कहीं अपनी खेती को पिछाड़ रहे हैं, बांझ बनवा रहे हैं।
0: बिल्कुल जी,
2: ठीक है जी। तो इसमें कहीं हम पीछे हैं और कहीं जंगली जानवरों का आतंक है
0: जी।
2: तो बहुत से कारण है, ये जो हमारी जो खेती जो है बांझ बन रही है, क्योंकि खेती हमारा मुख्य व्यवसाय है और जीविका का यही एक साधन है हमारे पास, कृषकों के पास। परंतु जो खेती करनी है, जो मेहनत करनी है, वो

0: किसानों ने करनी है।
1: बिल्कुल जी।
0: किसान कैसे जागरूक हो और वो मेहनत कश कैसे बने, सवाल ये हैं।
1: जी
0: आज के युग में जो है शिक्षित समाज खेती को छोड़ रहा है।
1: जी
0: और ये व्यवसाय एक ऐसा व्यवसाय है जो कि किसी ध्वस्त भाव से बाहर है।
1: बिल्कुल
0: किसी का दबाव नहीं है इसके पीछे।
1: बिल्कुल जी।
0: ठीक है, परंतु खेती को छोड़ रहे हैं।
1: बिल्कुल जी।
0: तो ये चीज है कि भी हम इसी विषय पर चर्चा करें कि भी हम खेती को ना छोड़े, क्योंकि ये हमारा एक जीविका का मुख्य साधन है।
1: बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। खेमचंद जी, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपसे यहाँ जानना चाहेंगे कि अक्सर जो कि हमारे बुजुर्ग थे, वो हम देखते हैं कि 50 के दशकों में ग्रामीण जो लोग थे कृषि पर आधारित रहते थे, लेकिन ये भी तो हम नहीं भूल सकते कि वे अशिक्षित भी थे, यानी कि ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं होते थे, है ना जी। तो आज जो शिक्षित समाज है जो कि कृषि के बारे में जागरूक भी है, लेकिन फिर भी वो कृषि को छोड़ रहा है।
0: यशपाल जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। इससे पहले अगर हम 50 की दशक की बात करें तो जितने भी हमारे सारे बड़े काम होते थे, शादी विवाह, बच्चों की शिक्षा दीक्षा या कोई भी अन्य कार्य है, वो सारे जो है कृषि पर आधारित थे।
1: बिल्कुल जी।
0: और उनके पास जो है शिक्षा का अभाव था।
1: जी।
0: बुजुर्गों के पास शिक्षा का अभाव था।
1: जी।
0: परंतु फिर भी वो जो हमारे जो बुजुर्ग लोग थे वो खेती का जो अन्न सब्जियां अधिकतर जो है अनाज को बेचा करते थे और दूध घी को बेचा करते थे। पशुपालन में वो किसी चीज का गुरेज नहीं करते थे, वो एक अपने पशु के लिए गौ माता मान करके दूध घी बेच करके अनाज बेच करके वो अपना पूरा गुजारा करते थे। इतना नहीं है कि वो बेचते थे, बेचने के साथ साथ में अगर कई बार ऐसा होता था कि हमारे गाँव में शादियां विवाह होते थे तो दाल चावल घी आदि जो है उधार दिया जाता था एक दूसरों के लिए। जब शादियां होती थी तो उधार जो है वापस दिया जाता था, उसी पर जो है उनका पूरा जीवन जो है निर्भर रहता था।
1: बिल्कुल।
0: परंतु उनके लिए जो है, उन बुजुर्गों के लिए जो है शिक्षा का इतना अभाव था कि वो वैज्ञानिक तकनीक नहीं जानते थे, परंतु वो परंपरागत खेती करते हुए भी एक अपना एक कृषि का व्यवसाय जो है जोश और खोश के साथ किया करते थे।
1: जो पशुधन की अगर हम बात करें, क्योंकि हमारा किसान और बागवान भाई बहन जो है वो आज के दौर में और पिछले दौर में भी खेती बाड़ी पे तो निर्भर नहीं था, इसके अलावा वो बाकी व्यवसाय भी अपनाता था।
0: बिल्कुल।
1: हम पशुधन की बात करें तो पशुधन में आज हमारा जो किसान भाई है वो कैसे पिछड़ रहा है, यानी कि पशुधन को तो अब कोई अपनाता ही नहीं।
0: यशपाल जी, आपने बहुत ही अच्छी बात कही। आज के युग में जो नए युवतियां और युवक जो हैं
1: जी,
0: वो पशुधन को पालना ही नहीं चाहता है।
1: जी।
0: पशु जो है आज गौ माता जो है हमारी सड़कों में घूम रही है, आवारा घूम रही है। ठंड से वो कितनी प्रभावित हो रही है, बारिश से वो कितनी प्रभावित हो रही है, कहाँ उनको भूखे मरना पड़ रहा है, कहाँ उनको प्यासा मरना है। ये हमारे जहन में ये बात होनी चाहिए कि अगर हम गौ माता की सेवा करते हैं तो हमारे परिवार के लिए उनका आशीर्वाद रहता है। परंतु आज हमारी गौ माता जो है दर दर भटक रही है। और यही चीज है कि आज का जो लिखा पढ़ा नौजवान है, जो बेटियां हैं आज, वो जो है पशुओं के गोबर से गुरेज कर रही है, ओबरे में जाने के लिए गुरेज कर रही है, गौमूत्र से ग्रेज कर रही है। आपको मैं एक चीज बताऊं कि अगर हमारे गौशाला में अगर कोई महिला पुरुष कोई भी सवेरे उठ कर जाए, जो वहां पर गौमूत्र की और गोबर की जो सुगंध है, उसे ना जाने हमारे शरीर के कितने विषाणु नष्ट होते हैं। ये चीज आज सोच नहीं रहे, सिर्फ ये चीज है कि जी हम गोबर नहीं उठाते। शिक्षा का ये उद्देश्य नहीं है कि हम किसी गौ माता को जो है दर दर भटका है या उस व्यवसाय को छोड़ दे और झूठे झूठे दूसरे के झूठ मरने के लिए तो हम कहीं होटलों में उसके लिए हमारे बच्चे जो आगे जा रहे हैं। परंतु जो हमारा एक व्यवसायिक है, जो और पशुपालन जो मुख्य व्यवसाय, जो हमारा दूध घी है, दूध घी से अगर हमारी मानसिकता अच्छी बनी रहती है, शरीर हमारा स्वस्थ बना रहता है, ताकतवर हम बनते हैं, तो हम हमारी भी तो कहीं कमी है यहाँ पर इसमें भी चढ़ने के लिए।
1: देखिए जी खेमचंद जी, एक बात मैं और भी इसमें जोड़ना चाहूंगा कि जहां तक बात है पशुधन की, तो कई तरह की बीमारियां जैसे चर्म रोग है या कई तरह के रोग है जो कि इन्हीं चीजों से ठीक होते हैं।
0: बिल्कुल होते हैं।
1: हम जब बात करें किसी भी तरह के रोग हो तो गौमूत्र जो है काफी कारगर सिद्ध होता है।
0: बिल्कुल होता है।
1: पशुधन को हम ज्यादा से ज्यादा अपनाएं। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर खेमचंद जी। आजकल हम देखते हैं कि किसानों को मंडियों की जो सुविधा है अपने घर द्वार पर ही बिल्कुल नजदीक मिल रही है।
0: यशपाल जी, आपको कहूं हमारे लिए सारी सुविधा प्रदान कर रखी है
1: जी।
0: हमारे को तो कहीं दूर जाने की जरूरत ही नहीं है
1: जी।
0: हर क्षेत्र में जहां हमारे नजदीक पड़ता है वहां पर हमारे लिए मंडी जो है सब्जी मंडी उपलब्ध है। बेचने की हमारे पास कोई दिक्कत नहीं है, परंतु उत्पादन हम कैसे करें, सवाल ये है।
1: बिल्कुल जी। खेमचंद जी, बढ़ते अगले सवाल की ओर। किसानों को देखिए, कई तरह के उपकरण हैं या दवाइयां हैं, लेकिन फिर भी किसान पीछे क्यों है?
0: सबसे बड़ा यशपाल जी, आज की डेट में अगर हम कारण देखें
1: जी,
0: तो जो हमारे हिमाचल प्रदेश में जो है
1: जी,
0: जंगली जानवर जो है, उन्होंने इतना बड़ा हमारे प्रदेश में एक हब बना दिया हुआ है कि इस कृषि छोड़ने के लिए जंगली जानवर भी एक मुख्य कारण है।
1: बिल्कुल जी। देखिए ना, आप बात कर रहे हैं खेमचंद जी कि जंगली जानवर इसके पीछे मुख्य कारण है। आपको क्या लगता है, जब आप अपने खेती बाड़ी का कामकाज करते हैं तो जंगली जानवर आपके खेतों को कितना नुकसान पहुंचाते हैं, आपको लगभग कितनी हानि हो जाती है जंगली जानवरों से?
0: देखिए

0: यशपाल जी, अगर हानि की आप बात करें तो जैसे ही हम जमीन में बीज डालते हैं
1: जी
0: तो दूसरे दिन या उसी दिन
1: जी
0: सुअर, बंदर,
1: जी
0: मोर,
1: जी
0: मुर्गे,
1: जी
0: ये चीज़ें जो है बीज को भी नहीं रहने देती है।
1: जी
0: ये आज की डेट में जो खेती छोड़ने का एक मुख्य कारण ये भी है कि हमारे जंगली जानवर जो है इतना उनका प्रभाव खेती पर हो गया है कि
1: जी
0: हम खेती छोड़ने के लिए मजबूर हो गए। मान लीजिए बीज ही नहीं रहेगा, अगर कुछ उग गया तो फिर उसके बाद वो सारी चीज़ें नष्ट कर देते। कारण आज हमें नज़र आ रहा है, ये आ रहा है कि भाई जो जंगली जानवर जो हमारी खेती को प्रभावित कर रहा है, किसान इतना मजबूर हो गया है कि जब उसको बीज के पैसे भी नहीं मिलते तो भाई
1: जी
0: इससे अच्छा वह हम कहीं मजदूरी कर ले।
1: बिल्कुल
0: ये भी
1: जी,
0: एक कारण लग
1: बिल्कुल
0: रहा है।
1: जी
0: बिल्कुल मुख्य कारण जो
1: जी
0: है यही लग रहा है। इसी विषय पर मैं आना चाहता था।
1: जी खेमचंद जी, आप कितना जागरूक है कि जंगली जानवर जो है जब हमारी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं तो क्या क्या सुविधाएं हैं कि जिनसे हम जंगली जानवरों के नुकसान से अपनी फसल को बचा सकते हैं, क्या आप वो साझा करना चाहेंगे?
0: अगर यशपाल जी हमारे इर्द गिर्द कहीं पेड़ पौधे हैं और हम ये बाड़बंदी करते हैं तो उससे जो है बंदर या लंगूर फिर भी क्रॉस हो जाता है।
1: जी
0: इसे हमने बड़े ध्यान से देखा है। रही बात इसकी कि भाई इसके लिए सुविधा प्रदान करवा रही है। अब मान लीजिए मेरे पास 4-6 खेत हैं,
1: जी
0: एक पूर्व में, एक पश्चिम में, एक उत्तर में, एक दक्षिण में,
1: बिल्कुल जी
0: छोटी छोटी जो होते हैं
1: बिल्कुल जी
0: वहां पर इसका जो कवर क्षेत्र जो है बहुत ही कठिन है और इसमें हम कहीं ना कहीं असफल हो रहे हैं।
1: जी आपको क्या लगता है खेमचंद जी कि जहाँ तक आपने बात की कि जंगली जानवरों से हम अपनी फसल की सुरक्षा कैसे करें, इसके लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे कि कुछ एक चीज़ें और भी हो सकती है जिससे कि हमारी फसल ज़्यादा से ज़्यादा बच सके?
0: बहुत अच्छा सवाल आपका। देखिए यशपाल जी, मेरा एक सुझाव है,
1: जी
0: वनों में जंगली जानवरों के लिए पार्क बनाएं,
1: जी
0: ठीक है?
1: जी
0: और पार्क बनाने से उनको उसमें कहीं ना कहीं फेंसिंग कर दे
1: बिल्कुल जी
0: और वो जंगली जानवर जो है उसी में ही रह जाए।
1: जी
0: और हम फार्मर जो है, किसान जो है, उससे जो उनके लिए जो दाना या उनके लिए जो भोजन की व्यवस्था है
1: जी
0: उस ढंग से वो करें कि भाई हम पार्क बनाकर, अगर हमारा जंगली जानवरों के लिए पार्क बनते हैं कहीं भी, उसमें एक तो फलदार पौधे लगने चाहिए,
1: जी
0: दूसरे हरे पत्तीदार पौधे उसमें लगने चाहिए। देख लीजिए कीमू एक ऐसी चीज़ है जंगली जानवर खाना पसंद करते हैं,
1: बिल्कुल जी
0: बींस एक ऐसी चीज़ है जिसको पत्तियाँ खाना पसंद करते हैं, ठीक है? और जी फेगड़ा है, गुलर प्रजातियाँ हैं, जामुन है, करौंदे हैं और कशमल है, बहुत सी ऐसी हमारे पास पौधे हैं जिससे कि जंगली जानवर जो है अपना पेट भर सकते हैं और हम भी अगर उनके लिए भोजन व्यवस्था करें,
1: जी
0: परंतु हमारी खेती अगर बच जाएगी तो एक तो देखिए अगर सवेरे से शाम तक हमारे को खेत में बैठना पड़ता है तो 500 रुपये की हमारी दिहाड़ी जाती है,
1: बिल्कुल जी
0: तो हो सकता है कि हमारे लिए इसका बहुत लाभकारी सिद्ध हो सकता है ये।
1: बिल्कुल जी
0: अब बात ये आती है कि भाई हम बंदरों की जो नसबंदी कर रहे हैं,
1: जी
0: परंतु क्या नसबंदी के बाद जंगली जानवर को नुकसान नहीं करेंगे?
1: जी
0: वो करेंगे,
1: बिल्कुल
0: जब
1: जी
0: तक वो उनका जीवन है वो करेंगे, परंतु वे मुझे कोई विकल्प नहीं लगा कि नसबंदी से हमारी फसल बच पाएगी। फार्मर भी उनके लिए अपना योगदान दे तो उनका जीवन भी सुरक्षित रह सकता है और हमारी खेती भी बच सकती है।
1: बिल्कुल जी खेमचंद जी, आपसे बात करते करते हम अंतिम पड़ाव पे पहुंच चुके हैं, तो इस चर्चा के जरिए हम आपसे जानना चाहेंगे कि उपजाऊ खेती कैसे बांझ बन रही है। इस विषय में आप मुख्य तौर पर अपने बाकी सभी जो प्रगतिशील किसान हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: देखिए मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि कुछ संघर्ष करें, जंगली जानवर के लिए इकट्ठे हो जाए।
1: जी
0: जंगली जानवर पहले भी होते थे परंतु अब बहुत ज़्यादा हो गए,
1: जी
0: परंतु पहले भी हम रखवाली करते थे, जुगाली करते थे। अगर हम कम्युनिटी बनाए, गांव में अपनी कम्युनिटी बनाए
1: जी
0: और एक गांव में अगर हम 2-3, 4-4 फार्मरों को कहीं, आदमियों को कहीं उनकी जुगाली के लिए रखें तो कुछ तो हमारा उस फसल में जो है बढ़ोतरी हो सकती है।
1: जी
0: अगर हम ये सोचेंगे जी जंगली जानवर को तो आने दीजिए, इस साल मैंने नहीं खेती की, अगले साल अगले ने नहीं खेती करनी, तो इस
1: जी
0: तरह से तो वो हैबिचुअल बन जाएंगे
1: बिल्कुल
0: और
1: जी
0: आदी बन जाएंगे और वो गांव से बाहर नहीं जाएंगे,
1: बिल्कुल
0: तो
1: जी
0: हमें जुगाली की भी कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी
1: जी
0: और खेती को जो है हमारा एक मुख्य व्यवसाय बनाना है और यही हमारा एक जीविका का साधन है।
1: बिल्कुल जी तो खेमचंद जी, आप आकाशवाणी के स्टूडियो आए और आपने हमसे उपजाऊ खेती कैसे बांझ बन रही है इस विषय पर चर्चा की। आपका एक बार फिर से आकाशवाणी के स्टूडियो आने के लिए और कार्यक्रम के संक में हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद यशवाल जी।
2: किसान भाइयों, अभी आपने सुनी जानकारीपूर्ण बातचीत जिसका विषय था उपजाऊ खेती कैसे बांझ बन रही है। बातचीत में भाग ले रहे थे खेमचंद कश्यप और उनके साथ बातचीत कर रहे थे यशपाल।
1: अब इस जानकारी के बाद कार्यक्रम में फिर से समय हो चला है एक और पहाड़ी गीत सुनाने का, तो आइए सुनते हैं अपने किसान और बागवान भाई बहनों के साथ समूह स्वरों में ये पहाड़ी लोकगीत।

0: किसान भाइयों, समूह स्वरों में ये सुना आपने लोकगीत। अब अपने किसान और बागवान भाई बहनों को जानकारी देंगे कल के कुछ मुख्य आकर्षणों के बारे में।
1: कल काम की बातों के तहत विषय रहेगा आलू के रोग और उनके उपचार के बारे में, साथ ही साथ पहाड़ी लोकगीतों के साथ भी मनोरंजन करवाते चलेंगे। एक और जानकारी पूर्ण बातचीत भी आप सभी के साथ साझा की जाएगी, जिसका विषय रहेगा शुद्ध एवं स्वच्छ दूध उत्पादन। इस संबंध में हमें ज्यादा जानकारी देंगे डॉक्टर ऐश्वर्या बाल्टू और उनसे जानकारी हासिल करेंगे दिनेश।
0: तो यशपाल जी, इसी के साथ अब कृषि जगत कार्यक्रम का समय भी संपन्न हो चला है। सभी श्रोताओं से अनुमति चाहेंगे। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता दीपक कुमार।
2: कृषि जगत कार्यक्रम अभी आपने सुना। आप सुन रहे हैं FM शिमला का प्रसारण। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।

0: मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के साथ साथ एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप और रेडियो की डीटीएच सेवा पर भी सुना जा सकता है।
1: चुनाव सिर्फ एक शब्द नहीं, ये है सच्चे लोकतंत्र की नींव, और मतदान है एक जागरूक नागरिक की पहचान, जिसे इस्तेमाल कर वो तय करते हैं अपने क्षेत्र, राज्य और देश की दशा व दिशा।
2: तो आइए अपनी जिम्मेदारी निभाएं, आगामी पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़कर भाग लें और गांव के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें।
1: आपका एक एक वोट तय करेगा पंचायत का भविष्य। तो निर्धारित तिथि को अपने नजदीकी मतदान केंद्र पर जाकर सोच समझ कर और बिना किसी प्रभाव के मतदान जरूर करें, क्योंकि ये सिर्फ आपकी जिम्मेदारी ही नहीं अधिकार है।
2: राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न सरकारी विभागों के 51,000 से अधिक चयनित कर्मचारियों को सौंपे नियुक्ति पत्र। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने प्रदेश की समृद्ध बोलियों और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने पर दिया बल। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, प्रदेश सरकार चिट्टा मुक्त हिमाचल के संकल्प को जन आंदोलन का स्वरूप देने के लिए प्रतिबद्ध। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए तैयारियां पूरी। पहले चरण का चुनाव 26 मई को और आदर्श चुनाव आचार संहिता के बीच प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में लिए फैसलों की भाजपा ने चुनाव आयोग से की शिकायत। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकारी नौकरियां नागरिकों के जीवन को बेहतर और आसान बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश ने अपने कर्मयोगियों पर भरोसा जताया और अब ये उनकी जिम्मेदारी है कि वे अपनी लगन, आचरण और रोजमर्रा के कामों से उस भरोसे का मान रखें और उसे और मजबूत करें।
1: कर्मयोगी प्रारंभ जैसे मॉड्यूल से आपको अपनी जिम्मेदारियां समझने में बहुत सहूलियत होगी। मेरा आपसे आग्रह है कि इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। आज भारत का युवा दुनिया के हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रहा है। यही स्पिरिट, यही ऊर्जा पब्लिक सर्विस में भी दिखाई देनी चाहिए। विकसित भारत ऐसे ही युवाओं के प्रयास से बनेगा जो अपने काम को देश सेवा का माध्यम मानते हैं।
0: आज 19वें रोजगार मेले में सरकार के अलग अलग विभागों और संगठनों में चयनित 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे गए। इस बीच भाजपा सांसद व पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि युवा रोजगार सृजन में केंद्र की मोदी सरकार ने 12 सालों में नया इतिहास रचा है। अनुराग ठाकुर ने आज

0: कहा कि रोजगार मेला युवा रोजगार के प्रति मोदी सरकार की बेजोड़ प्रतिबद्धता है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार का कार्यकाल युवाओं को रोजगार, सम्मान और आत्मनिर्भरता देने वाली सरकार के रूप में याद किया जाएगा। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने प्रदेश की समृद्ध बोलियों और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने की आवश्यकता पर बल दिया है। राज्यपाल ने आज लोक भवन शिमला में उनसे भेंट करने आए वरिष्ठ लेखक डॉक्टर ओपी शर्मा से बातचीत में कहा कि प्रदेश की विभिन्न स्थानीय बोलियां यहां की पहचान, परंपराओं और लोगों की सामूहिक संस्कृति को प्रदर्शित करती हैं। इन बोलियों का साहित्यिक और लिखित माध्यम से संरक्षित किया जाना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियाँ भी अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ी रहें। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश सरकार चिट्टा मुक्त हिमाचल के संकल्प को जन आंदोलन का स्वरूप देने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने आज शिमला में कहा कि सरकार समाज के प्रत्येक वर्ग की भागीदारी से इस चुनौती का प्रभावी समाधान सुनिश्चित करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार जहां अपराधियों पर कानूनी शिकंजा कस रही है, वहीं नशे से प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए भी कारगर कदम उठाए जा रहे हैं। प्रदेश सरकार के चिट्टा मुक्त अभियान के साथ अभी तक राज्य में 2,34,000 से अधिक लोग जुड़ चुके हैं। हिमाचल प्रदेश पुलिस चिट्टे के खिलाफ 5 जून को शिमला में एंटी चिट्टा व स्वच्छ पर्यावरण जागरूकता मिनी मैराथन दौड़ का आयोजन करेगी। प्रदेश पुलिस महानिदेशक अशोक तिवारी ने शिमला में कहा कि इस दौड़ का उद्देश्य विशेष रूप से युवाओं और आमजन को नशे के विरुद्ध एकजुट करना और उन्हें पर्यावरण संरक्षण, फिटनेस और सामाजिक जिम्मेदारी के प्रति जागरूक करना है। 5 जून को ही विश्व पर्यावरण दिवस भी है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज 91 पैसे प्रति लीटर तक की वृद्धि हुई है। पिछले 10 दिनों में तेल के मूल्यों में तीसरी बार वृद्धि हुई है। ये वृद्धि ईरान संघर्ष और हॉर्मूज में व्यवधान के बाद वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल के बीच हुई है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि देश में पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता है और आपूर्ति स्थिर बनी हुई है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला और एक निजी कंपनी कॉस्मो फेराइट्स लिमिटेड के बीच आज एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। ये MOU ग्रीन एनर्जी, एडवांस मटेरियल्स और पर्यावरण अनुकूल तकनीकों के क्षेत्र में शोध और औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देगा। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर महावीर सिंह ने इसे हिमालयी क्षेत्र में ग्रीन टेक्नोलॉजी शोध की दिशा में बड़ा कदम बताया है।
1: हो रहा है हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में और कॉस्मो फेराइट के बीच, ये एक हिस्टोरिकल है, एक रियल एकेडमिया इंडस्ट्री की कोलैबोरेशन हो रही है MOU के माध्यम से, क्योंकि कॉस्मो फेराइट एक ऐसा चुंबकीय पदार्थ है, मैग्नेटिक मटेरियल है जो कि एनवायरमेंट फ्रेंडली है। तो जैसे कि हमारा ग्रीन एनर्जी सेंटर है यहाँ विश्वविद्यालय में, उस दिशा में ये जो MOU बहुत कारगर होगा।
0: ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज़ को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। राज्यसभा सांसद प्रोफेसर सिकंदर कुमार ने विपक्ष द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ की गई अभद्र टिप्पणी को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है। उन्होंने इस टिप्पणी के समर्थन के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की भी आलोचना की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों के प्रयोग से स्पष्ट हो गया है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। प्रोफेसर सिकंदर ने कहा कि विपक्ष की अभद्र टिप्पणी से लोकतांत्रिक परंपराओं पर गहरा आघात हुआ है। प्रदेश में 3 चरणों में 26, 28 व 30 मई को होने वाले पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों को लेकर चुनाव प्रचार पूरे जोरों पर है। इस बीच राज्य चुनाव आयोग ने पंचायती राज चुनावों के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इन 3 चरणों में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के विभिन्न पदों के लिए मतदान होगा। चुनाव आयोग ने पूरे प्रदेश में कुल 21,678 मतदान केंद्र स्थापित किए हैं। वहीं चुनाव ड्यूटी में करीब 35,000 कर्मचारियों की तैनाती की गई है। प्रदेश भाजपा ने राज्य सरकार द्वारा बीते रोज मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए निर्णयों की राज्य चुनाव आयोग से शिकायत की है। इस संबंध में आज भाजपा के चुनाव प्रकोष्ठ के संयोजक JC शर्मा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से मिला और मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए निर्णयों को चुनाव आचार संहिता की भावना के विपरीत करार दिया। प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग से इस मामले में तुरंत सरकार के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग की। प्रतिनिधिमंडल में भाजपा शिमला जिला अध्यक्ष केशव चौहान भी शामिल थे। प्रदेश भाजपा मीडिया संयोजक कर्ण नंदा ने आरोप लगाया है कि प्रदेश सरकार

0: के जन विरोधी फैसलों के कारण हिमाचल देश का सबसे महंगा राज्य बन गया है। करण नंदा ने आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता में कहा कि कांग्रेस 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने के वायदे पर सत्ता में आई थी, लेकिन अब पहले से मिल रही 125 यूनिट मुफ्त बिजली को बंद कर दिया गया है। यही नहीं, बिजली के दाम लगभग 5.5 रुपये प्रति यूनिट वसूले जा रहे हैं। उन्होंने सरकार से इस बढ़ोतरी को तुरंत वापस लेने की मांग की।
1: सरकार अपने जन विरोधी निर्णय लेने में पीछे नहीं है और एक के बाद एक प्रदेश में बिजली बिलों के झटके यह कांग्रेस सरकार आम जनता को दे रही है। सरकार जब सत्ता में आई प्रदेश में यह लोग 300 यूनिट बिजली देने की बात की थी और वो भी मुफ्त की। हिमाचल प्रदेश में मुफ्त बिजली तो गॉन, पर एक यूनिट बिजली भी अगर किसी की चलती है तो उस पर भी पैसा देना पड़ेगा। अगर 0 से 125 यूनिट जो बिजली मुफ्त मिल रही थी, अब उसके ऊपर 5.44 रुपए वो प्रति यूनिट के हिसाब से बिल आ रहा है।
0: प्रदेशवासियों को एक बार फिर जोरदार गर्मी का सामना करना पड़ेगा। मौसम विभाग ने 26 व 27 मई को ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, सोलन और सिरमौर सहित राज्य के 6 जिलों के अलग अलग स्थानों पर हीट वेव चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमानों के अनुसार 25 मई तक राज्य के लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलती रहेगी। विभाग ने इस दौरान प्रदेश के शिमला सहित मध्यम व ऊंचाई वाले अलग अलग स्थानों पर वर्षा और बर्फबारी की संभावना जताई है। इस बीच बीते रोज राज्य के अधिकांश स्थानों पर हुई वर्षा और अधिक ऊंचाई वाले कुछ स्थानों पर बर्फबारी से प्रदेशवासियों को चिलचिलाती गर्मी से हल्की राहत मिली है। आज भी राजधानी शिमला और जिला के ऊपरी इलाकों में हल्की वर्षा हुई। इस दौरान कुमारसेन और कोटगढ़ के कुछ क्षेत्रों में ओलावृष्टि की भी सूचना है। राज्य पथ परिवहन निगम के कर्मचारियों में समय पर वेतन न मिलने से नाराजगी बढ़ती जा रही है। सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन में आज निगम के कर्मचारियों ने गेट मीटिंग कर सरकार और निगम प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की। इस मौके पर चालक परिचालक यूनियन के उपाध्यक्ष धर्मेंद्र शर्मा ने कहा कि अगर 1 जून तक निगम के कर्मचारियों के बैंक खातों में वेतन नहीं आया तो कर्मचारी हड़ताल पर जाने के लिए मजबूर होंगे।

0: बर्फबारी से प्रदेशवासियों को चिलचिलाती गर्मी से हल्की राहत मिली है। आज भी राजधानी शिमला और जिला के ऊपरी इलाकों में हल्की वर्षा हुई। इस दौरान कुमारसेन और कोटगढ़ के कुछ क्षेत्रों में ओलावृष्टि की भी सूचना है। राज्य पथ परिवहन निगम के कर्मचारियों में समय पर वेतन न मिलने से नाराजगी बढ़ती जा रही है। सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन में आज निगम के कर्मचारियों ने गेट मीटिंग कर सरकार और निगम प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की। इस मौके पर चालक परिचालक यूनियन के उपाध्यक्ष धर्मेंद्र शर्मा ने कहा कि अगर 1 जून तक निगम के कर्मचारियों के बैंक खातों में वेतन नहीं आया तो कर्मचारी हड़ताल पर जाने के लिए मजबूर होंगे। वर्कशॉप कर्मचारियों ने भी वेतन न मिलने पर टूल डाउन की चेतावनी दी है।
1: अन्य कर्मचारियों की तरह एचआरटीसी का कर्मचारी भी चाहता है कि उन्हें भी 1 तारीख को सैलरी मिले, लेकिन क्या कर्मचारी को कभी समय से वेतन नहीं मिल रहा है, जिसके लिए हिमाचल पथ परिवहन निगम के कर्मचारियों ने इकट्ठा होकर ये निर्णय लिया है कि यदि 1 तारीख साय 5 बजे तक कर्मचारियों का वेतन उनके खातों में नहीं डाला गया तो रात 12 बजे से सभी लोग जो है अपना कार्य बंद कर देंगे और जब तक हमारी सैलरी हमारे खातों में नहीं डल जाती तब तक हम कार्य नहीं करेंगे।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न सरकारी विभागों के 51,000 से अधिक चयनित कर्मचारियों को सौंपे नियुक्ति पत्र। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने प्रदेश की समृद्ध बोलियों और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने पर दिया बल। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा प्रदेश सरकार चिट्टा मुक्त हिमाचल के संकल्प को जन आंदोलन का स्वरूप देने के लिए प्रतिबद्ध। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए तैयारियां पूरी, पहले चरण का चुनाव 26 मई को और आदर्श चुनाव आचार संहिता के बीच प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में लिए फैसलों की भाजपा ने चुनाव आयोग से की शिकायत। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के साथ साथ FM शिमला 103.7 MHz पर भी प्रसारित किया जा रहा था। कृपया हमारी अगली घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। आइए सुनते हैं देश गान।

0: आकाशवाणी शिमला से अभी आप सुन रहे थे देश गान। कृपया हमारी अगली घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। मीडियम वेव 387.6।
1: सुबह हो या शाम, आपके घर आंगन में महकती एक आवाज 103.7 मेगाहर्ट्ज़ FM शिमला। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 103.7 मेगाहर्ट्ज़ FM शिमला।

103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम शिमला का प्रसारण। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एफएम शिमला पर। हमारी स्टूडियोज़ की घड़ी में 8 बजे हैं एफएम शिमला पर। वक्त है भूले बिसरे गीत कार्यक्रम का। रिश्ते बनते रहें इतना ही काफ़ी है, सब हंसते रहें इतना ही काफ़ी है, हर कोई हर वक्त साथ नहीं रह सकता, याद एक दूसरे को करते रहें इतना ही काफ़ी है। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में लीजिए सुनिए दिल एक मंदिर फिल्म का गीत। गीत के बोल शैलेंद्र के, संगीत शंकर जयकिशन का।

0: हे भगवान, रिंकी को सांप ने काट लिया।
1: सांप ने? जल्दी घाव को धो।
2: अरे इसको तांत्रिक के पास ले चलो।
3: नहीं नहीं, इसको काटो।
2: अरे नहीं, इसको हिलाते रहो।
4: अरे घबराने की कोई बात नहीं, 70% सांप जहरीले नहीं होते।
5: फिर भी जहरीले सांप के घाव को ना धोए, ना काटे, ना चूसे, ना हिलाए, तुरंत 108 नंबर पर एम्बुलेंस सहायता के लिए संपर्क करें।
0: सांप को ढूंढने या मारने में या तांत्रिक के पास जाने में समय ना गवाएं। अस्पताल पहुंचने में देरी जानलेवा हो सकती है। याद रखें, अगर सुबह उठते ही दिल मचले, उल्टी हो, पेट में दर्द हो, तो ये क्रेट सांप के काटने से ही हो सकता है, जिसके काटने के निशान कई बार दिखाई नहीं देते।
5: सावधान रहे, सतर्क रहे। हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी।
6: गांव की पहचान होती है उसकी मजबूत पंचायत से, और पंचायत मजबूत बनती है आपके एक वोट से।
7: क्योंकि ईमानदारी और बिना किसी के प्रभाव में आए दिए गए आपके वोट ही तय होते हैं गांव, और बनती है सड़क, पानी, स्वच्छता और रोजगार संबंधी नीतियाँ।
6: इसीलिए 26 मई, 28 मई और 30 मई को होने वाले पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर अपनी भागीदारी निभाएं।
7: अपने परिवार और गांव वालों को भी जागरूक बनाएं और 100% मतदान के संकल्प को हासिल करने का लक्ष्य बनाएं।
6: राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी।
8: एफएम शिमला पर आप सुन रहे हैं भूले बिसरे गीत कार्यक्रम। लीजिए सुनिए गीता दत्त की आवाज में कागज के फूल फिल्म का गीत, गीत के बोल कैफी आजमी के, संगीत एसटी बर्मन का।

0: चुनाव सिर्फ एक शब्द नहीं, ये है सच्चे लोकतंत्र की नींव, और मतदान है एक जागरूक नागरिक की पहचान, जिसे इस्तेमाल कर वो तय करते हैं अपने क्षेत्र, राज्य और देश की दशा व दिशा।
1: तो आइए अपनी जिम्मेदारी निभाएं, आगामी पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़ कर भाग लें और गांव के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें।
0: आपका एक एक वोट तय करेगा पंचायत का भविष्य। तो निर्धारित तिथि को अपने नजदीकी मतदान केंद्र पर जाकर सोच समझ कर और बिना किसी प्रभाव के मतदान जरूर करें, क्योंकि ये सिर्फ आपकी जिम्मेदारी ही नहीं अधिकार है।
1: राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: FM शिमला पर आप सुन रहे हैं भूले बिसरे गीत कार्यक्रम। लीजिए सुनिए लता मंगेशकर की आवाज़ में जिस देश में गंगा बहती है फिल्म का गीत, गीत के बोल शैलेंद्र के, संगीत शंकर जयकिशन का।

0: आपका गांव है आपका गर्व, इसको विकसित बनाने के लिए आइए मिलके मनाएं लोकतंत्र का पर्व।
1: हो चुकी है देवभूमि हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव की घोषणा। ये मतदान 3 चरणों में 26, 28 और 30 मई को होगा। ऐसे में आए एक सच्चा नागरिक बनकर मिलकर निभाएं जिम्मेदारी और भारी संख्या में मतदान देकर दिखाएं अपनी भागीदारी।
0: आपका हर एक कीमती वोट आपके गाँव की दशा और दिशा तय करेगा, तो अपने मताधिकार का प्रयोग करना ना भूलें। राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: आइए अब आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी की आवाज में दिल अपना प्रीत पराई फिल्म का गीत। गीत के बोल शैलेंद्र के, संगीत शंकर जयकिशन का।

0: हमारा गांव है हमारी पहचान, हमारा गांव है हमारा अभिमान। आइए मिलकर दें इसके विकास में अपना योगदान।
1: हम सब ने ठाना है कि 100% मतदान के लक्ष्य को पाना है।
0: पंचायत चुनाव आ रहे हैं, जहां आपका हर ईमानदारी से दिया गया वोट तय करता है गांव की दशा और दिशा, साथ ही बनता है गांव के विकास का आधार।
1: तो 26, 28 और 30 मई को होने वाले पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले और अपने परिवार और आस पास के हर वोटर को मतदान के लिए प्रेरित करे।
0: राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी।
2: FM चिमला पर आप सुन रहे हैं भूले बिसरे गीत कार्यक्रम। लीजिए सुनिए तलत महमूद की आवाज़ में बहाना फिल्म का ये गीत।

0: हिमाचल के युवाओं, अब सिर्फ सोशल मीडिया पर ओपिनियन देने का नहीं, वोट देने का भी वक्त आ गया है।
1: इस पंचायत इलेक्शन में 50 लाख से ज्यादा वोटर्स अपने मत का अधिकार इस्तेमाल करेंगे और हजारों फर्स्ट टाइम वोटर्स भी बनेंगे इस बदलाव का हिस्सा। 26 मई, 28 मई और 30 मई, याद रखिए ये तारीखें।
0: आपकी एक वोट आपके गाँव की सोच, विकास और लीडरशिप को तय करेगी। तो निकलिए घर से और बनिए जिम्मेदार नागरिक। पंचायत चुनाव 2026, वोट जरूर करें।
2: लीजिए सुनिए मुकेश और लता मंगेशकर की आवाजों में पूर्णिमा फिल्म का ये गीत।

0: भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में आज बस इतना ही। आप यूं ही सुनते रहिए एफएम शिमला का प्रसारण।
1: हिमाचल में फिर से सज गया है लोकतंत्र का महापर्व, पंचायत चुनाव 2026।
2: 26, 28 और 30 मई को तीन चरणों में होने जा रहे हैं पंचायत इलेक्शंस, जहां आपकी एक वोट तय करेगी आपके गांव का कल।
1: सड़क, पानी, सफाई, रोजगार और गांव के विकास से जुड़े फैसलों में आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है।
2: इस बार बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए और चुनिएगा ईमानदार, योग्य और जिम्मेदार प्रतिनिधि। हिमाचल पंचायत इलेक्शंस 2026, मजबूत पंचायत, मजबूत हिमाचल।
0: एक सौ 3.7 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं एफएम शिमला का प्रसारण। 8:30 हुए हैं। लीजिए पेश है फिल्म संगीत। लीजिए सुनिए बंटवारा फिल्म का गीत। आवाजें अनुराधा पौडवाल, अलका याग्निक और कविता कृष्णमूर्ति की हैं।

0: गांव की पहचान होती है उसकी मजबूत पंचायत से, और पंचायत मजबूत बनती है आपके एक वोट से।
1: क्योंकि ईमानदारी और बिना किसी के प्रभाव में आए दिए गए आपके वोट ही तय होते हैं गांव, और बनती है सड़क, पानी, स्वच्छता और रोजगार संबंधी नीतियाँ।
0: इसीलिए 26 मई, 28 मई और 30 मई को होने वाले पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर अपनी भागीदारी निभाएं।
1: अपने परिवार और गांव वालों को भी जागरूक बनाएं और 100% मतदान के संकल्प को हासिल करने का लक्ष्य बनाएं।
0: राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी।

फिल्म संगीत में आज बस इतना ही। आप सुनते रहिए FM शिमला का प्रसारण। 8:45 होने को हैं अब। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे समाचार संध्या और रात्रि 9 बजे न्यूज़ @9।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार बल। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवाद और कूटनीति के माध्यम से संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए भारत के निरंतर समर्थन की पुष्टि की। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को अमेरिका के दृष्टिकोण से हिंद प्रशांत क्षेत्र की आधारशिला बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है। महाराष्ट्र के शिरडी में तोप के गोले बनाने के संयंत्र का भी उद्घाटन किया। केंद्र सरकार ने नई दिल्ली के जिमखाना क्लब को रक्षा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए अगले महीने की 5 तारीख तक अपना परिसर सौंपने को कहा। चीन के कोयला खदान में विस्फोट में 90 लोगों की मौत और भारतीय पहलवान सूरज वशिष्ठ और सागर सिंह ने वियतनाम में आयोजित एशियाई अंडर-23 कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में लगातार हो रही प्रगति, क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज दिल्ली में सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत और अमेरिका विश्व कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। इस बैठक के दौरान विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा कि अमरीकी विदेश मंत्री ने श्री मोदी को रक्षा, रणनीतिक तकनीकों, व्यापार तथा निवेश, ऊर्जा सुरक्षा, कनेक्टिविटी, शिक्षा और लोगों के बीच संबंधों सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में लगातार हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री मार्को रूबियो ने पश्चिम एशिया की स्थिति सहित विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अमेरिका का दृष्टिकोण साझा किया। श्री मोदी ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की पुष्टि की और बातचीत तथा कूटनीति के माध्यम से संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान की अपनी अपील दोहराई। श्री मार्को रूबियो इस महीने की 26 तारीख को होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है, उसमें भारत की भूमिका सबसे अहम है। नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास की सपोर्ट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में $20 अरब का निवेश किया है।
1: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में $20 अरब से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
0: श्री रूबियो ने कहा कि उनकी इस यात्रा से दोनों देशों के आपसी संबंध और मजबूत होंगे तथा उनमें और अधिक प्रगति होगी।
1: इस रिश्ते की बुनियाद राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच का आपसी संबंध है। ये एक निजी रिश्ता है। इसकी शुरुआत पहले कार्यकाल के दौरान हुई थी, जब राष्ट्रपति ट्रंप को भारत आने का मौका मिला था। ये रिश्ता दूसरे कार्यकाल में भी कायम रहा। आप उन दोनों के बीच के जुड़ाव को साफ साफ देख सकते हैं और

0: लगता है ये बेहद अहम है।
1: विदेश मंत्री रूबियो ने विश्वास व्यक्त किया कि भारत और अमेरिका के बीच संबंधों को और अधिक मजबूत बनाने के लिए दोनों देशों की ओर से आने वाले समय में कई और रोमांचक तथा नई घोषणाएं की जाएंगी। श्री रूबियो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दो ऐसे बेहद गंभीर नेता बताया जिनका पूरा ध्यान दीर्घकालिक लक्ष्यों पर केंद्रित है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज महाराष्ट्र के शिरडी स्थित सावली विहिर औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित तोप के गोले बनाने वाले संयंत्र का उद्घाटन किया। इस परियोजना को निबे ग्रुप ने विकसित किया है। इस दौरान श्री सिंह ने कहा कि मेक इन इंडिया पहल के माध्यम से देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है।
3: हमने यह समझा, सेल्फ रिलायंट इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के लिए प्राइवेट सेक्टर की एनर्जी का उपयोग आवश्यक है। इसलिए पॉलिसी रिलेटेड रिफॉर्म्स, नीतिगत सुधार भी किए गए। FDI को, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को लिबरलाइज किया गया, पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट लाई गई। हम लोगों ने एक लंबी लिस्ट मोर देन 5000 आइटम्स की तैयार की है। इस पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट में आइटम्स हैं, हम उनको निर्धारित समय के अंदर हम भारत की धरती पर बनाएंगे, हम दुनिया के किसी देश से उसको इम्पोर्ट नहीं करेंगे।
2: श्री सिंह ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी लगभग 30-35% है, जिसे भविष्य में बढ़ाकर 50% किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवा विकसित भारत की ओर अग्रसर होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने आज वर्चुअल माध्यम से 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए ये बात कही।
4: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
2: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। रोजगार मेले में आज सरकार के अलग अलग विभागों और संगठनों में चयनित 51,000 से भी अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार का मुख्य प्रयास भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करना रहा है। नई दिल्ली में 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि नए भर्ती हुए लोग वर्ष 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देंगे।
5: विकसित भारत 2047, जब उस गोल, उस विजन को सामने रखते हैं तो हमारा काम भी बड़ा सुगम हो जाएगा। और हिम्मत से काम करें, अच्छा काम करें, बदलाव में पहल करें। जहां जहां कोई चीज में हमारे नई सोच है, नए आइडियाज हैं, अगर हम सब ने नई नई टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट किया, हम भी अपने आप को रीट्रेन करें, रीस्किल करें, अपग्रेड करें हमारी नॉलेज और आगे बढ़ने के लिए।

0: कंटिन्यूअस लर्निंग शुड बी अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ।
1: श्री गोयल ने कहा कि वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत में बुनियादी अर्थव्यवस्था मजबूत और निर्यात में जबरदस्त वृद्धि बनी हुई है। उन्होंने कहा कि अप्रैल के बाद मई माह में भी निर्यात वृद्धि जारी रही, जो वैश्विक प्रतिकूलताओं के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था के लचीलेपन को दर्शाती है। नई दिल्ली में आज श्री गोयल ने कहा कि सरकार ने किसानों को बढ़ती लागत से बचाने के लिए उर्वरकों की बढ़ी कीमतों का बोझ स्वयं वहन किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि ऑयल इंडिया लिमिटेड ने राजस्थान के दांडेवाला फील्ड में एक नए

0: लगभग 25,000 मानक घन मीटर प्रतिदिन की दर से प्राकृतिक गैस का प्रवाह होना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि इससे घरेलू ऊर्जा उत्पादन को मजबूत करने में सहायता मिलेगी। सरकार ने जन परामर्श के लिए विकसित भारत जीरामजी अधिनियम 2025 के अंतर्गत मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: विकसित भारत जीरामजी एक्ट ने 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह ली है। नए कानून के तहत अब एक वित्तीय वर्ष में रोजगार की गारंटी 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। मंत्रालय के अनुसार इस कानून के मसौदा नियम धारा 33 और अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत तैयार किए गए हैं। मंत्रालय ने बताया कि मसौदा नियमों को जनता से सुझाव और राय लेने के लिए सार्वजनिक किया गया है। इनमें संक्रमण प्रावधान नियम, राष्ट्रीय स्तर संचालन समिति नियम, केंद्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद नियम, प्रशासनिक खर्च नियम और शिकायत निवारण नियम शामिल हैं। नए कानून में मजदूरी का भुगतान समय पर पारदर्शी और जवाबदेही के साथ करने पर विशेष जोर दिया गया है। इसके अलावा तय समय के भीतर काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान किया गया है। वीबीजी रामजी एक्ट 2025 को इस महीने की 11 तारीख को अधिसूचित किया गया था और यह इस साल 1 जुलाई से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। केंद्र ने रक्षा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए भूमि की आवश्यकता के मद्देनजर नई दिल्ली स्थित जिमखाना क्लब को 5 जून तक परिसर खाली करने का निर्देश दिया है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अधीन भूमि और विकास कार्यालय के आदेश में कहा गया है कि ये भूमि तत्काल संस्थागत आवश्यकताओं, शासन अवसंरचना और जनहित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने दिल्ली के जामिया नगर में एक दलित महिला के कथित अपहरण, सामूहिक दुष्कर्म और जबरन धर्म परिवर्तन से संबंधित मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने इस संदर्भ में दिल्ली पुलिस आयुक्त से 7 दिन के भीतर विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है। चीन के शांक्सी प्रांत में एक कोयला खदान में गैस विस्फोट में मरने वालों की संख्या बढ़कर 90 हो गई है। ये विस्फोट कल किंयुआन काउंटी की लियू शेन्यू कोयला खदान में हुआ। अब तक 201 खनिकों को बचाया जा चुका है। चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने व्यापक बचाव अभियान और घायलों के उपचार और दुर्घटना के कारणों की जाँच का आदेश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। भारतीय सूचना सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी त्रिलोकीनाथ का आज दोपहर निधन हो गया। वे 79 वर्ष के थे। वे कुछ समय से बीमार थे। श्री त्रिलोकीनाथ ने आकाशवाणी के हिंदी समाचार कक्ष में संपादक के रूप में वर्षों तक अपनी सेवाएं दी। वियतनाम के दानांग में आज एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान सूरज वशिष्ठ और सागर सिंह ने रजत पदक अपने नाम किए। 60 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में सूरज वशिष्ठ को एबेक एतबेकोव से, वहीं 67 किलोग्राम वर्ग में सागर सिंह को एतजान खलमा खानऊ से हार का सामना करना पड़ा। लखनऊ में आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से जारी है। ताज़ा समाचार मिलने तक लखनऊ ने 17वें ओवर में 4 विकेट पर 158 रन बना लिए हैं। मौसम विज्ञान विभाग ने कल पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में लू से लेकर भीषण लू की स्थिति का रेड अलर्ट जारी किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवाद और कूटनीति के माध्यम से संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए भारत के निरंतर समर्थन की पुष्टि की। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को अमेरिका के दृष्टिकोण से हिंद प्रशांत क्षेत्र की आधारशिला बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है। महाराष्ट्र के शिरडी में तोप के गोले बनाने के संयंत्र का उद्घाटन किया। केंद्र सरकार ने नई दिल्ली के जिमखाना क्लब को रक्षा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए

0: Defense infrastructure. 90 people killed in a coal mine explosion in China, and Indian grappler Suraj Vashisht and Sagar Singh clinched silver medals at Asian Under 23 Wrestling Championships in Vietnam. That is all in the news at 9. Good night.
1: एक सौ तीन दशमलव सात मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम शिमला का प्रसारण। एक बार फिर से स्वागत आप सभी का एफएम शिमला पर। रात्रि के 9:15 हुए हैं। एफएम शिमला पर वक्त है एक फिल्म से कार्यक्रम का। आज हम आपको झुक गया आसमान फिल्म के गीत सुनवाएंगे। ये फिल्म 1968 में बनी एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है। इसका निर्देशन लेख टंडन ने किया है। फिल्म में राजेंद्र कुमार, सायरा बानो, राजेंद्र नाथ और प्रेम चोपड़ा ने अभिनय किया है।

0: चुनाव सिर्फ एक शब्द नहीं, ये है सच्चे लोकतंत्र की नींव, और मतदान है एक जागरूक नागरिक की पहचान, जिसे इस्तेमाल कर वो तय करते हैं अपने क्षेत्र, राज्य और देश की दशा व दिशा।
1: तो आइए अपनी जिम्मेदारी निभाएं, आगामी पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़ कर भाग लें और गांव के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें।
0: आपका एक एक वोट तय करेगा पंचायत का भविष्य। निर्धारित

0: को अपने नजदीकी मतदान केंद्र पर जाकर सोच समझ कर और बिना किसी प्रभाव के मतदान जरूर करें, क्योंकि ये सिर्फ आपकी जिम्मेदारी ही नहीं अधिकार है।
1: राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

एफएम शिमला पर आप सुन रहे हैं एक फिल्म से कार्यक्रम, और आज हम आपको झुक गया आसमान फिल्म के गीत सुनवा रहे हैं। फिल्म की कहानी कुछ इस तरह से शुरू होती है। संजय यानी राजेंद्र कुमार एक सीधे साधे और खुश मिजाज युवक की कहानी है। संजय अपनी ज़िंदगी में हमेशा दूसरों की मदद करता है। एक दिन संजय की मुलाकात प्रिया यानी सायरा बानो से होती है। पहली मुलाकात में ही दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। धीरे धीरे ये रिश्ता गहरा होता जाता है और दोनों एक दूसरे के बिना जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर पाते। लेकिन तभी कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। एक दुर्घटना में संजय की मौत हो जाती है। संजय की आत्मा यमलोक पहुंचती है, जहां उसे पता चलता है कि गलती से उसकी जान ली गई है। यमदूत किसी और व्यक्ति को लेने आए थे और गलती से संजय को ले गए हैं।

यमराज को अपनी भूल का एहसास होता है और वे संजय को दोबारा धरती पर भेजने का फैसला करते हैं, लेकिन संजय के शरीर का अंतिम संस्कार हो चुका होता है। अब उसकी आत्मा अपने पुराने शरीर में वापस नहीं जा सकती। संजय को एक दूसरे व्यक्ति और उसके हमशक्ल एवं अपराधी तरुण के शरीर में भेजा जाता है, लेकिन दिल और आत्मा वही पुरानी होती है। धरती पर लौटने के बाद सबसे बड़ी चुनौती ये होती है कि वो अपने परिवार और अपनी प्रेमिका को कैसे यकीन दिलाए कि वही असली संजय है।

इस फिल्म में प्यार है, जुदाई है, भावनाएं हैं और एक खूबसूरत संदेश कि इंसानियत और सच्चा प्रेम हमेशा जीतता है। राजेंद्र कुमार ने अपने गंभीर और भावुक अभिनय से किरदार को जीवंत बना दिया। वहीं सायरा बानो की मासूम अदाएं दर्शकों को खूब पसंद आईं।

0: एक फिल्म से कार्यक्रम में आज बस इतना ही। आप यूं ही सुनते रहिए FM शिमला का प्रसारण।
1: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं एफएम शिमला का प्रसारण। 9:30 हुए हैं। एफएम शिमला पर वक्त है दिल की आवाज़ भी सुन कार्यक्रम का। इस कार्यक्रम में आज हम आपको फिल्मी गीत सुनवाएंगे। कार्यक्रम में लीजिए सुनिए लता मंगेशकर और आशा भोसले की आवाज़ों में उत्सव फिल्म का ये गीत।

FM शिमला पर आप सुन रहे हैं दिल की आवाज़ भी सुन कार्यक्रम। लीजिए सुनिए बड़े घर की बेटी फिल्म का गीत। आवाज़ें मोहम्मद अजीज़ और अनुराधा पौडवाल की हैं। गीत के बोल संतोष आनंद के, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

लीजिए सुनिए सुरेश वाडकर और आशा भोसले की आवाज़ों में ईमानदार फिल्म का गीत। गीत के बोल प्रकाश मेहरा के, संगीत कल्याण जी आनंद जी का।

कार्यक्रम के आखिर में लीजिए सुनिए आवारगी फिल्म का गीत। आवाज़ें लता मंगेशकर और मोहम्मद अजीज़ की हैं। गीत के बोल आनंद बख्शी के, संगीत अनु मलिक का।

0: दिल की आवाज़ भी सुन कार्यक्रम में आज बस इतना ही। आप सुनते रहिए FM शिमला का प्रसारण।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

थी तबीयत की सादगी, लेकिन बड़े खुलूस से हम लौट आए हैं। लीजिए सुनिए गुलाम अली की आवाज़ में ये गज़ल।

103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम शिमला का प्रसारण। रात्रि के 10 बजे हैं, लीजिए पेश है गज़लें। महशर में

हिलने ना पाएं होंठ और कह जाएं बहुत कुछ, आंखों में आंखें डालकर हर बात कीजिए, एक बार फिर अकेले में मुलाकात कीजिए। लीजिए सुनिए चंदनदास की आवाज़ में ये गज़ल।

महक रही है ज़मीं चांदनी के फूलों से, शायद खुदा भी किसी की मोहब्बत पे मुस्कुराया है। बहुत अजीज़ हमें है मगर फिर भी पराया है। लीजिए सुनिए मोहम्मद वकील की आवाज़ में ये गज़ल।

गजलें अभी आपने सुनी। एक 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम शिमला का प्रसारण। रात्रि के 10:30 हुए हैं। एफएम शिमला पर वक्त है सदाबहार नगमे कार्यक्रम का। कार्यक्रम में लीजिए सुनिए लता मंगेशकर की आवाज़ में लोफर फिल्म का गीत, गीत के बोल आनंद बख्शी के, संगीत

एफएम शिमला पर आप सुन रहे हैं सदाबहार नगमे कार्यक्रम। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में लीजिए सुनिए आप तो ऐसे ना थे फिल्म का ये गीत। गीत के बोल निदा फाजली के हैं, संगीत उषा खन्ना का।

0: किशोर कुमार और साथियों की आवाज़ों में लीजिए सुनिए ड्रीम गर्ल फिल्म का गीत। गीत के बोल आनंद बख्शी की, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।
1: होठों पे रंगत है, दिल में मोहब्बत है, क्या जिसमें औरत है, बस जन्नत ही जन्नत है।

लीजिए सुनिए सीता और गीता फिल्म का गीत, आवाज़ें आशा भोसले और मन्ना डे की हैं, गीत के बोल आनंद बख्शी की, संगीत राहुल देव बर्मन का।

सदाबहार नगमे कार्यक्रम में आज बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए FM शिमला का प्रसारण। रात्रि के 11 बजने को हैं। अब आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार।

0: सुरक्षा, कनेक्टिविटी, शिक्षा और लोगों के बीच संबंधों सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में लगातार हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री रूबियो ने पश्चिम एशिया की स्थिति सहित विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अमेरिका का दृष्टिकोण साझा किया। श्री मोदी ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की पुष्टि की और बातचीत तथा कूटनीति के माध्यम से संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान की अपील दोहराई। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है उसमें भारत की भूमिका सबसे अहम है। नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास स्पॉट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में $20 अरब का निवेश किया है।
1: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में $20 अरब से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
0: श्री रूबियो ने कहा कि उनकी इस यात्रा से दोनों देशों के आपसी संबंध और मजबूत होंगे तथा उनमें और अधिक प्रगति होगी।
1: इस रिश्ते की बुनियाद राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच का आपसी संबंध है। ये एक निजी रिश्ता है। इसकी शुरुआत पहले कार्यकाल के दौरान हुई थी जब राष्ट्रपति ट्रंप को भारत आने का मौका मिला था। ये रिश्ता दूसरे कार्यकाल में भी कायम रहा। आप उन दोनों के बीच के जुड़ाव को साफ साफ देख सकते हैं और मुझे लगता है ये बेहद अहम है।
0: भारत ने पैक्स सिलिका समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत के युवा एक विकसित भारत की ओर अग्रसर होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आज वर्चुअल माध्यम से 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज महाराष्ट्र के शिरडी स्थित सावली विहिर औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित तोप के गोले बनाने वाले संयंत्र का उद्घाटन किया। इस परियोजना को निबे ग्रुप ने विकसित किया है। इस दौरान श्री सिंह ने कहा कि मेक इन इंडिया पहल के माध्यम से देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है। केंद्र ने रक्षा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए भूमि की आवश्यकता के मद्देनजर नई दिल्ली स्थित जिमखाना क्लब को 5 जून तक परिसर खाली करने का निर्देश दिया है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अधीन भूमि और विकास कार्यालय के आदेश में कहा गया कि ये भूमि तत्काल संस्थागत आवश्यकताओं, शासन अवसंरचना और जनहित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक है। चीन के शांस्की प्रांत में एक कोयला खदान में गैस विस्फोट में मरने वालों की संख्या 90 हो गई है। यह विस्फोट कल क्यूआन काउंटी की लियुशेन्यू कोयला खदान में हुआ। अब तक 201 खनिकों को बचाया जा चुका है। चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने व्यापक बचाव अभियान और घायलों के उपचार और दुर्घटना के कारणों की जांच के आदेश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस हादसे में हुई जानमान की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया। श्री मोदी ने भारत की ओर से राष्ट्रपति शी जिनफिंग और चीन की जनता के प्रति संवेदना व्यक्त की। वियतनाम के दा नांग में आज एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान सूरज वशिष्ठ और सागर सिंह ने रजत पदक अपने नाम किए। 60 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में सूरज वशिष्ठ को एबेक एक्टोव से, वहीं 67 किलोग्राम वर्ग में सागर सिंह को एतजान खालमा से हार का सामना करना पड़ा। प्रतियोगिता में कुमार सचिन ने 77 किलोग्राम भार वर्ग और रोहित ने 97 किलोग्राम भार वर्ग के कांस्य पदक के मुकाबले जीतकर कांस्य पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज भारत अमेरिका व्यापार वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में लगातार हो रही प्रगति, क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत और अमेरिका वैश्विक भलाई के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। इस बैठक के दौरान विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा कि अमेरिका के विदेश मंत्री ने श्री मोदी को रक्षा, रणनीतिक तकनीकों, व्यापार तथा निवेश, ऊर्जा